FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की नवी तिथि, तदनुसार 31 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारा आज का प्रसारण अब प्रारंभ होता है।

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों की शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा

0: समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों के नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिकतुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्फू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थेरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। अजरबैजान में के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण अभी दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। समय श्रोताओं, भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। पहले देश फिर हम, आइए करें नमन वंदन अपनी मातृभूमि का, इस भारत भूमि का। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत समूह स्वरों में देश वंदना के साथ।

समूसरों में देश वंदन के पश्चात आइए करते हैं आराधना ईश्वर की। सुनते हैं ये कबीर भजन, स्वर हैं जगजीत सिंह के।

जिनके मस्तक में है चंद्र सुशोभित और जटाओं में गंगाधार, करुणा त्याग और वैराग्य के वे हैं महान आधार। आराधना की अगली प्रस्तुति में आइए श्रोताओं सुनते हैं अनूप जलोटा और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना।

आराधना की अगली प्रस्तुति में आइए श्रोताओं सुनते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा की ये कृति। स्वर हैं भीमसेन जोशी और साथियों के।

0: लता मंगेशकर और साथियों के गाए इस कबीर रचना के साथ ही हमारी आज की आराधना यही संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। खेती की बात में आई श्रोताओं सुनते हैं ये सामयिक सुझाव। विषय है गेंदा फूल में रोग नियंत्रण। वाचन स्वर रुपेश कंवर का है।
1: राम राम, जय जोहर। मैं हूँ अपन के रेडियो संगवारी पंचू भाई रुपेश कुमार कंवर। बरसात के सीजन चला थे संगवारी हो, बरसात के सीजन में हमारे किसान भाई मन खेती किसानी के संगे संग आनी बानी के बूता काम करते, और आए दिन अपन यही कथन कि जितके ज़्यादा हो अमन खेती किसानी के माध्यम से और अक्तिया बूता काम करी, ताकि हमारे गठरी में हर हमेशा 2-4 रुपया माढ़े चढ़े। अभी बेरा के बात करें किसान भाई हो, तो हमारे कतेक किसान भाई मन जब नंदिया के तीर में बसे हवा और जब उनका टीकरा हवा है, ओमन टीकरा में अभी बेरा गेंदा फूल के खेती करके अवैया बेरा में दोहरा दोहरा आमदनी उमन कमाबेच करी। संगवारी हो, आज खेती की बात में अपन कर गोड़ बात करबो, गेंदा फूल के रोग नियंत्रण हमन कैसे करी। अपन जानते हवा संगवारी हो, बरसात के बेरा में कहीं कहीं जोन भी हमन फसल अपनाथन उमा कई प्रकार के रोग व्याधि कीट लगे के संभावना बने रहते। बेरा रहत अगर हमन कीट के नियंत्रण या रोग के नियंत्रण अगर पावतन, तो जो फसल में नुकसान हुआ थे 40 से 50% वो नुकसान हमन बचा सकत हन। बरसात के बेरा में ये बात के और ज़्यादा चेत करे के आवश्यकता होते संगवारी हूँ को, हमन अगर फूल के खेती करतन तो वहाँ विशेष करके हमला नियंत्रण निगरानी करना चाहिए, काबर की लगातार पानी गिरा थे संगवारी हो, जहाँ जल के भराव हो ही वहाँ हमार गेंदा फूल के नुकसान होके संभावना बने रहते। प्रयास रहे पानी निकासी की उचित व्यवस्था बनाई, संगे संग नाली बनाई, ताकि वहाँ पानी के ठहराव बिल्कुल झन होए। संगवारी हो, गेंदा फूल में कई प्रकार के रोग कीट लगते, जे सबले ज़्यादा हमार गेंदा फूल ला नुकसान पहुँचाते। उकठा रोग है, जड़ गलन है, ये सबसे ज़्यादा हमार जो फसल हवा है गेंदा फूल के वाला ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करे के प्रयास करते। बचाव बेड बना, जिसे बचाव की बात करी संगवारी हूँ, तो गेंदा फूल की खेती करत हन तो हमारा बेड बना के अगर खेती करत हन तो हम कहीं ना कहीं हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमन ये रोग है ओकर से हमन बचा सकत हन। टाइकोडर्मा 5 किलोग्राम अगर माटी में मिला के खेती करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो बीमारी हुआ थे, कीड़ा लगे थे, वो लगे के संभावना बहुत कम रहते हैं। इलाज की बात करी संगवारी हो, कापर ऑक्सोक्राइड 3 ग्राम लीटर छिड़काव करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उकठा रोग है, जड़ गलन है, ओकर से हमन निदान पा सकत। माहो थ्रिप्स संगवारी हो, कहीं ना कहीं हमारे जो फसल हवा है गेंदा फूल के वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते। इमिडाक्लोपीड 0.3 ml पानी में मिला के अगर छिड़काव करत हन तो कहीं न कहीं हमन जो फसल हवा है ओकर से हमन जो रोग लगे है ओकर से हमन निदान पा सकत हन। लाल मकड़ी प्रोपार गाइड 1 ml पानी में मिला के अगर स्प्रे करत हन तो लाल मकड़ी है ओकर से हमन निदान पा सकत। तोड़ाई और कमाई की बात करी किसान भाइयों, तो रोपाई के 50 से 60 दिन बाद हमन अगर हमन 2 से 3 दिन में तोड़ाई करत हन, 3 से 4 महीने तक आसानी से कर हमन गेंदा फूल के आमदनी कमा सकत हन। उपज की बात करी किसान भाइयों, अफ्रीकन गोंदा के 120 से 150 कुंटल प्रति एकड़ पाछू हम प्राप्त कर सकत हन। देसी किस्म जो हवा 80 से 100 कुंटल एकड़ पाछू हमन अच्छे से हमन एकर आमदनी कमा सकत हन। कई बार ऐसे होते कि हमन गोंदा फूल के खेती करथन और हमारे ड्रिप पद्धति अगर नहीं अपनावाथन तो ओकरो माध्यम से भी कई प्रकार के रोग व्याधि घलो आते हैं। एक खातिर आए दिन अपन यही कथन कि हमें पानी भी बचाना हवा, तो ड्रिप पद्धति के माध्यम से अगर हमन गोंदा फूल के खेती करथन तो वह बीमारी आके बहुत कम संभावना बने रहते हैं। संगवारी हो, गोंदा फूल में कोनो प्रकार के रोग व्याधि कीड़ा आते तो हमन का करी कि जो उद्यान विभाग के उद्यानिकी विस्तार अधिकारी हवे उनका कर हमें संपर्क करना चाहिए और बताना चाहिए कि अभी बेरा हमार खेत में जो गोंदा लगाए हैं वो मानी मानी के रोग व्याधि आते हैं, निदान हमन कौन प्रकार से करी। संगवारी हो, कहीं ना कहीं अगर हमन बेरा रहत जो रोग व्याधि आए कीड़ा है ओकर से अगर निदान पावतन तो जो फसल में नुकसान हुआ थे 40 से 50% नुकसान हमन बचा सकत हन, और कहीं न कहीं अवैया बेरा में गोंदा फूल के खेती के माध्यम से हमन दोहरा से दोहरा आमदनी कमा सकत हन। राम राम, जय जोहार।
0: गेंदा फूल में रोग नियंत्रण।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:35 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं तुलसीकृत श्री रामचरित मानस गायन। गायक कलाकार हैं वाणी जयराम, ए हरिहरण और साथी। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

लक्ष्मण को वन जाने की सहर्ष अनुमति देते हुए माता सुमित्रा ने कहा, हे पुत्र, वन में तुम्हें सभी सुख प्राप्त होंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ पिता माता सरीखे श्री राम और सीता का निवास होगा। तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र वन में किसी प्रकार का क्लेश न पावे, यही मेरा उपदेश है। श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता वहां पहुंचे जहां राजा दशरथ मूर्छित प्राय अवस्था में पड़े थे। श्री राम पधारे हैं इस मधुर वचन के साथ मंत्री सुमंत्र ने राजा को उठाकर बिठाया। दो दो पुत्रों के साथ सीता को वन जाने के लिए तैयार देखकर वो अत्यंत व्याकुल हो गए। अकुलाहट तथा स्नेहवश वे बार बार पुत्रों को हृदय से लगाते हैं। उनकी वाणी मौन है क्योंकि मर्मस्थल पर आघात लगने का दुख दारुण है। श्री राम बोले, हे तात, प्रेम के कारण कर्तव्य में चूक जाने से यश जाता रहेगा। मुझे आशीर्वाद और विदा दीजिए। राजा दशरथ ने ये सुनकर बांह पकड़ श्री राम को अपने पास बिठा लिया। बोले, हे तात, मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। वेद वाणी है कि कर्मों के अनुसार ईश्वर विचार कर फल देता है, किंतु आज तो ठीक इसके विपरीत हो रहा है। अपराध कोई करे और उसका दंड किसी और को भुगतना पड़े, भगवान, ये तेरी कैसी लीला है।

तुलसीकृत श्री रामचरितमानस गायन का प्रसारण अभी किया जा रहा था। गायक कलाकार थे वाणी जयराम, ए हरिहरण और साथी। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। समय श्रोताओं, कार्यक्रम नौ विहान का।

कार्यक्रम नवविहान के आज के संक में हम चर्चा करने जा रहे हैं केंद्र सरकार की किसान कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस उद्देश्य के साथ ही जुलाई 2015 से आरंभ इस योजना में हर खेत को पानी पहुंचाना, जल की उपयोग दक्षता बढ़ाना जैसे लक्ष्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY सूक्ष्म सिंचाई में मदद करती है, यानी पानी की बचत के लिए ड्रिप या टपक और स्प्रिंकलर यानी फुहारा पद्धति को अपनाती है और पात्र कृषकों को सब्सिडी भी दिया जाता है। श्रोताओं, इसमें मानसून पर किसानों की निर्भरता कम करना और सिंचाई दायरे को बढ़ाने के लिए वर्षा जल संचयन, पुराने जल स्रोतों का पुनरुद्धार किया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का क्रियान्वयन प्रत्यक्ष और सटीक हो, इसके लिए राज्य सरकार की एजेंसी या विभाग के माध्यम से भारत सरकार निरंतर सहायता प्रदान करती है। इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई कोष की स्थापना की गई है। सूक्ष्म सिंचाई वो उन्नत तकनीक है जो सीधे जड़ों तक पानी पहुंचाकर पानी की बर्बादी को कम करती है और मिट्टी की नमी, उत्पादकता, जलवायु अनुशीलता में सुधार करती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने पानी की संवहनी प्रबंध और सिंचाई के दायरे को बढ़ाकर भारत के कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया है। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल और वाटरशेड डेवलपमेंट के जरिए पानी के सही इस्तेमाल को बढ़ावा देती है ये योजना। PMKSY से देश भर के लाखों किसानों को लाभ पहुंचा है, जिनमें छोटे और सीमांत किसान भी शामिल हैं। इस योजना ने सिंचाई क्षमता बढ़ाई है, ग्रामीण आजीविका में सुधार किया है और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दिया है। श्रोताओं, ये तो थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी। विस्तृत जानकारी के लिए अपने नजदीक कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ ही कार्यक्रम नवविहान के इस अंक को देते हैं यही विराम।

उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आई श्रोताओं, हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

गांधी चर्चा सुनिए सुबह 7:20 पर। आज का प्रसंग होगा निष्काम कर्म योगी। सुबह 8:30 पर रायपुर से रिले करेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए। गूंजे स्वर गांव के छत्तीसगढ़ी लोक संगीत में आज सुनिए मोरध्वज राजा का किस्सा। कलाकार होंगे ईश्वरगिरी गोस्वामी, गुलाबगिरी और साथी। साथ ही राज भजन प्रस्तुत करेंगे कमलेंद्र मरावी, सुखराम सिधार, त्रिभुवन सिंह, प्रीतम मरावी और साथी। समय होगा सुबह 10:00। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का प्रसारण अपने दैनिक समय 7:05 पर होगा। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से हम लेकर आएंगे सुबह 7:30 पर और कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण होगा दिन में 10:30 से। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी सुनिए दिन में 11:00। शेष समय शाम 5:00 तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा।

युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा जगत का प्रसारण होगा शाम 5:35 पर। इसमें चर्चा करेंगे मुंशी प्रेमचंद का रचना संचार पर और साहित्य से कैसे जुड़ी विषय पर। साथ ही क्रम होगा समसामयिकी और सवाल जवाब भी और गीत संगीत भी होंगे।

ग्राम सभा का प्रसारण होगा शाम 7:20 पर। फोन इन कार्यक्रम में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे जानकारी देंगे शरीर में शामिल होने वाले तिल व मसों का कैंसर में परिवर्तित होने वाले लक्षणों की पहचान और निदान के उपाय के विषय में। फोन इन कार्यक्रम का संचालन करेंगे जित्तू भैया। साथ ही मंडी मौसम की जानकारी और सामयिक सुझाव भी साझा किया जाएगा। समय होगा 7:30 से रात्रि 8 बजे तक। संसद समीक्षा सुनिए रात 8 बजे। इसका अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। चित्रपट संगीत का आनंद लिया जा सकेगा शाम 5:05 पर। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने हम लेकर आएंगे शाम 6:20 से और संध्या 7 बजे से भी। कार्यक्रम रजनीगंधा की खुशबू बिखरेगी रात 8:15 पर। आज रात 10 बजे दिल्ली से रिले करेंगे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों के साथ ही रात्रि 11:10 पर हमारा आज का प्रसारण संपन्न हुआ। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर।

प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ पलों में संस्कृत में और ठीक 7 बजे हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: क्रीडासु भारतीय भारोत्तोलकः लवप्रीत सिंहः पुरुषाणां दशाधिकैकशत किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवान्। अपरञ्च भारतीय क्रीडिका सीमा कालीरमन महिलानां डिस्कस थ्रो इत्येतस्यां प्रतिस्पर्धायां कांस्य पदकं प्राप्तवती। ग्लास्गो नगरे अष्टम दिवसस्य समाप्तौ ऑस्ट्रेलिया देशः दशाधिकैकशत पदकैः पदकतालिकायां शीर्षस्थाने वर्तते। भारतं तु सप्तदश पदकैः सह दशम स्थानम् अधितिष्ठति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर समस्या है और पिछली सरकारों के दौरान भी देश के विभिन्न भागों से ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट मिली। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर आवश्यक हो गया है। संसद ने इस उद्देश्य से कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
2: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
1: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लुकतुब दोरजी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के तहत निर्मित थिम्पू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मिथेन

0: गैस विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाले लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलिरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सिल्वा प्रभु थिरुमानन ने भी फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: संस्कृत और हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण अभी दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

0: आज सुबह।
1: हर सुबह सूरज ये संदेश सुनाता है, अंधियारा चाहे कितना भी हो उजाला जरूर आता है। इस खुशनुमा सुबह में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हमारे सभी सुधीर श्रोताओं का। कार्यक्रम के आज की संक में आपके साथ हूं मैं महावीर वर्गा। कीजिए स्वीकार हमारा स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रचनाकारों की कल्पनाशीलता अनंत आकाश के समान होती है। सिर्फ काल्पनिक कथाएं ही नहीं बल्कि यथार्थ और समाज की घटनाओं का सजीव चित्रण अपने शब्दों के माध्यम से कहानी, उपन्यास, नाटकों में उतार देते हैं। आज की तारीख 31 जुलाई ऐसे ही प्रख्यात रचनाकार धनपत राय श्रीवास्तव की जन्मतिथि है, जिन्हें साहित्य जगत में हम मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं और पढ़ते आ रहे हैं। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कथाकार, विचारक थे। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, पूस की रात, कफन, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, ईदगाह, नमक का दरोगा जैसी कृतियां समाज को सौंप गए। साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी प्रेमचंद ने किया। पेशे से अध्यापक, लेखक और फिर पत्रकार बनकर साहित्य सेवा करते रहे। सन 1908 में कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। देश प्रेम से ओतप्रोत इस संग्रह को तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित करके सभी प्रतियां जब्त कर ली। साथ ही ये चेतावनी दी कि वे लेखन नहीं करेंगे। और फिर क्या, धनपत राय श्रीवास्तव अपना नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे और बन गए मुंशी प्रेमचंद। इनकी रचनाओं पर फिल्में बनी, दूरदर्शन पर धारावाहिक सहित नाटक मंचन किया जाता रहा है। इनकी कृति गोदान पर फिल्म बनी सन 1963 में, जिसका ये गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि ये गीत आज की तारीख और दो प्रसिद्ध कलाकारों से कैसे जुड़ा हुआ है। पहले गीत सुनते हैं।
2: त्रिपुरा के पतवा सर थे डोले मनवा कि ही यारा में उठत हिलो। अरे पुरवा के झोंकवा में

ये था फिल्म गोदान का गीत जिसे स्वर दिया था मोहम्मद रफ़ी ने। और श्रोताओं, आज की तारीख 31 जुलाई पुण्यतिथि है महान गायक सम्राट मोहम्मद रफ़ी की। मखमली आवाज़ के धनी हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठ गायकों में से एक थे। अपनी आवाज़ की मधुरता के लिए अपने समकालीन पार्श्व गायकों के बीच अलग और विशिष्ट जगह बनाई मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म गोदान का ये गीत, गोदान उपन्यास को लिखा मुंशी प्रेमचंद ने और उसके गीत में आवाज दी मोहम्मद रफ़ी ने। हिंदी गीतों के अतिरिक्त गजल, भजन, कव्वाली, देशभक्ति गीत और अन्य भाषाओं में भी गीत गाए, जिसमें पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कोंकणी शामिल हैं। फिल्म घर द्वार के लिए छत्तीसगढ़ी में भी गीतों के लिए अपनी आवाज़ दी मोहम्मद रफ़ी ने। इनकी पुण्यतिथि पर हम इन्हें स्मरण करते हैं और करते हैं नमन। आज फिल्म संगीत के कार्यक्रम यादों के झरोखों से में मोहम्मद रफ़ी के गाए कुछ चुनिंदा गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 7:30 पर। फिलहाल कार्यक्रम आसुआ में सुनते हैं कुछ संदेश।

0: मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
2: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: आपकी रक्षा में पूरी।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।
5: जी श्रोताओं, आज शुक्रवार है और आज सुबह 8:30 पर हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए। फिलहाल अभी वक्त हो चला है ट्रैफिक अपडेट्स आप बिलासपुर जानने का, आइए सुनते हैं।
6: नमस्कार, ट्रैफिक अपडेट्स आप बिलासपुर कार्यक्रम में नए संदेशों के साथ, नई सूचनाओं के साथ, मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले की प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग या मुख्य जिला मार्ग सहित शहर के प्रत्येक चौक चौराहों से लेकर गांव गांव में भी यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। आप सभी से अनुरोध है, सुगम एवं सुरक्षित यातायात के लिए हमेशा यातायात नियमों के अनुसार ही चलें। मित्रों, आज की स्थिति में जब सभी सड़कों में तमाम प्रकार के वाहनों की भरमार है, ऐसे में सड़क में सुरक्षित चल पाना एक चुनौती से कम नहीं है। भाग दौड़ के परिवेश में सबको जल्दी है, इसलिए कोई धीरे नहीं चलना चाहता, सभी में धैर्य का अभाव है। ऐसे में तनिक भी चूक बड़ी से बड़ी सड़क दुर्घटना का कारण बनती है, किंतु यदि हम इन बहुत छोटी छोटी सावधानियों को अपना कर चलें तो बड़ी से बड़ी सड़क दुर्घटना से भी बच सकते हैं। जैसे प्रायः सभी सड़क दुर्घटनाओं का मूल कारण वाहनों का तेज रफ्तार होना पाया गया है, अतः अपने वाहनों को बेतहाशा कभी न भगाएं, सीमित वेग में चलिए, सुरक्षित घर भी पहुंचिए। इसी प्रकार विभिन्न चौक चौराहों में लगे यातायात संकेतों का 100% पालन कीजिए। प्रायः देखा जाता है लोग चौक में रेड सिग्नल में रुकते तो हैं, किंतु रेड से ग्रीन सिग्नल होने के 5-7 सेकंड पूर्व ही आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ही हरा सिग्नल से लाल सिग्नल होने के 5-7 सेकंड बाद भी लोग आगे बढ़ते रहते हैं। यही कारण है कि सिग्नल जंप के अंतर्गत ₹2,000 का चालान आता है, तब अपनी गति का एहसास होता है, क्योंकि कैमरा 1 सेकंड की भी छूट नहीं देता। वैसे ही लोग शॉर्टकट के चक्कर में कई स्थानों में गलत दिशा में चले जाते हैं, इसे भी यातायात का कैमरा बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। फौरन आपकी साफ सुथरी फोटो के साथ ₹2,000 का चालान आपके घर भेजने में कोई देर नहीं करता, इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि जाने अनजाने यही गलती दूसरी बार भी हो गई तो अगला चालान ₹5,000 का होगा, अर्थात 2 चालान ₹7,000 का। सतर्क रहिए, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
5: श्रोताओं, ये था आज का ट्रैफिक अपडेट्स आप बिलासपुर। इसे आप एक बार फिर सुन सकते हैं दिन में 10:55 पर।

इन संदेशों के साथ ही श्रोताओं, घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि कार्यक्रम आज सुबह के समापन का वक्त हो चला है। आज आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ आज सुबह के संघ से दे अनुमति अपने साथी महावीर वर्गा को नमस्कार।

प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं गांधी चर्चा। आज का प्रसंग है निष्काम कर्मयोगी।

गांधी चर्चा सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, नित्य प्रति के जीवन को नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप बनाने पर जो बल टॉलस्टॉय ने गांधी जी को दिया था, उससे उन्हें अपने में सुधार के प्रयास को समर्थन मिला। शायद ही कुछ लोगों ने इतना कम पढ़कर उससे इतना लाभ उठाया हो। पुस्तकें उनके लिए घड़ी भर का मन बहलाव नहीं, अनुभवों का संचित कोष होती थी। पुस्तकों के विचारों से सहमत होते तो उन्हें आत्मसात कर लेते और उसके अनुसार आचरण भी करते, असहमत होते तो उन्हें छोड़ देते। रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से वे इतने प्रभावित हुए कि नेटाल की राजधानी छोड़कर जुलूलैंड के जंगल में जा बसे, स्वेच्छा से गरीबी को गले लगाया और अक्षरशः पसीने की कमाई खाने लगे। गांधी जी को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली पुस्तकों में टॉलस्टॉय की पुस्तकें भी थी। आंख मूंद कर अनुकरण करने का तो उनका स्वभाव ही नहीं था, लेकिन ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि टॉलस्टॉय की कृतियों के अध्ययन से ही उनके अपरिपक्व विचारों को प्रौढ़ता मिली। आधुनिक राज्य की संगठित या प्रक्षण हिंसा, नागरिक सविनय अवज्ञा अथवा सहयोग के अधिकार संबंधी अपने विचारों का समर्थन गांधी जी को टॉलस्टॉय की पुस्तकों में मिला। आधुनिक सभ्यता और औद्योगीकरण से लेकर यौन संबंधों और शिक्षा आदि अनेक विषयों पर टॉलस्टॉय की मीमांसा से गांधी जी सहज ही सहमत थे। दोनों में हुए पत्र व्यवहार से ये बात स्पष्ट होती है कि जीवन की देहरी पर खड़े युवा गांधी में टॉलस्टॉय के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता थी। वयोवृद्ध टॉलस्टॉय गांधी जी के विचारों से विस्मित और प्रफुल्लित हुए। टॉलस्टॉय ने गांधी जी को लिखा था कि और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ट्रांसवाल में तुम्हारा कार्य संसार में आजकल होने वाले कार्यों में सबसे अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है, और उसमें न केवल ईसाई राष्ट्र किंतु पूर्ण संसार के सभी राष्ट्र निसंदेह भाग लेंगे। ईसाई और इस्लाम धर्मों की पुस्तकें तो दक्षिण अफ्रीका में आसानी से मिल जाती थी, लेकिन हिंदू धर्म की पुस्तकें उन्हें भारत से मंगानी पड़ती थी। धार्मिक विषयों पर वे अपने मित्र रायचंद भाई के साथ पत्र व्यवहार भी करते थे। गांधी जी के क्वेकर मित्र ये समझते थे कि वे ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले हैं, लेकिन रायचंद भाई के प्रभाव से ही अंतिम रूप से उनकी श्रद्धा हिंदू धर्म में दृढ़ हो गई। धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन, धर्म ग्रंथों के पाठ और विद्वानों के सत्संग और पत्र व्यवहार से गांधी जी इस नतीजे पर पहुंचे कि सत्य बुद्धि से उतना ग्राह्य नहीं है जितना हृदय से और अक्षरशः आचरण में पालन किया जाना ही सत्य में विश्वास का प्रमाण है। गांधी चर्चा में हम और बातें करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं एक बापू का प्रिय भजन।

गांधी जी जब नेटाल की राजधानी छोड़कर जुलूलैंड के जंगल में जा बसे थे, इन्हीं दिनों गांधी जी के जीवन पद्धति में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। भगवत गीता से, जिसे उन्होंने अपना आध्यात्मिक कोष कहा था, उन्होंने अपरिग्रह के आदर्श को आत्मसात किया, जिससे वो स्वेच्छा से गरीबी के मार्ग पर चल पड़े। दूसरा आदर्श था निष्काम कर्म, जिससे उन्हें सार्वजनिक जीवन के लिए आवश्यक अद्भुत सहन शक्ति प्राप्त हुई। एक धर्मार्थ चिकित्सालय में नुस्खों से दवाइयां बनाने और वितरित करने का भार उठाकर उन्होंने अपने को इस काम के लिए प्रशिक्षित किया, जिससे कि वो उन गिरमिटिया मजदूरों की सेवा कर सके जो दक्षिण अफ्रीका के सबसे करीब भारतीय थे। डरबन के निकट फोनिक्स में और जोहान्सबर्ग के निकट टालस्टाय फार्म पर उन्होंने छोटी छोटी ऐसी बस्तियां बनाई जहां स्वयं वो और उनके आदर्शों को अपनाने वाले लोग नगरों की गर्मी और धूल और आदमी के लोभ और द्वेष से दूर हटकर शांति पा सकें। गांधी जी के उस काल का व्यक्तित्व चित्रण उनके पहले जीवनी लेखक जोहान्सबर्ग के श्रद्धेय जोसेफ जे डोक ने अपनी पुस्तक में किया है। वे लिखते हैं, एक छोटा दुबला पतला पर फुर्तीला व्यक्ति मेरे सामने खड़ा था और मेरी ओर देखने वाले उस व्यक्ति के चेहरे से सुसंस्कृति और उत्साह की झलक मिलती थी। उसकी त्वचा का रंग सांवला और आंखें काली थीं, लेकिन उसके चेहरे को आलोकित करने वाली मुस्कुराहट और उसकी सीधी निर्भय दृष्टि सामने वाले के दिल को बरबस जीत ले रही थी। उसकी उम्र के बारे में मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। वो करीब 38 वर्ष का था। वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा था, जिसे ये प्रकट ही था कि वो सुसंस्कृत व्यक्ति था। इस भारतीय नेता की ओर जिस बात ने मुझे तत्काल आकर्षित किया, वो थी आत्मविश्वास की दृढ़ता, हृदय की महानता और निष्कपट सत्यवादिता। हमारे इस भारतीय मित्र का वैचारिक और आध्यात्मिक स्तर अधिकांश लोगों से बहुत ऊंचा है। मैरी ऑफ वेथेनी

उसी की तरह उनके काम भी ऐसे होते हैं कि लोग उसे गलत समझते हैं और अक्सर सनकी कह बैठते हैं। जो उससे परिचित नहीं है वो उसकी दुनियादारी के पूर्ण अभाव के पीछे कोई न कोई बुरा हेतु अथवा पूरब वासियों की मक्कारी ही देखते हैं, लेकिन उसे जानने वाले उसके आगे शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। मेरे विचार में रुपए का उसे जरा भी लोभ नहीं है। उसके देशवासी भी उसकी

0: मेरे विचार में रुपए का उसे जरा भी लोभ नहीं है। उसके देशवासी भी उसकी अद्भुत निस्वार्थ परता पर आश्चर्य करते हैं और उन्हें इस कारण क्रोध भी आता है, पर साथ ही वे उसे प्यार भी करते हैं। ऐसा प्यार जो उनके विश्वास और गर्व का द्योतक है। वो उन असाधारण व्यक्तियों में से हैं जिनके सत्संग से ज्ञान की वृद्धि होती है और परिचय मात्र से जिसके प्रति सहज प्रेम उत्पन्न हो जाता है। यही आज की गांधी चर्चा हम यहीं संपन्न करते हैं। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: गांधी चर्चा का प्रसारण अभी किया जा रहा था। आज का प्रसंग था निष्काम कर्मयोगी। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों के झरोखे से। पुराने हिंदी फिल्मों के गीतों के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवाएंगे पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के गाए कुछ चुनिंदा गीतों को। आज उनकी पुण्यतिथि है। हम कार्यक्रम में उनके गीतों के माध्यम से उन्हें स्मरण कर रहे हैं और श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहे हैं। सुरों की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ कभी पुरानी नहीं पड़ती, बल्कि हर पीढ़ी के दिलों में अपनी जगह बनाती हैं। ऐसे ही एक जादुई, मधुर और अमर आवाज के मालिक थे मोहम्मद रफी साहब।

वाकई श्रोताओं, इस मखमली आवाज़ को कोई भी हम नहीं भुला सकते हैं। सुरों की महफिल में जो उजाला कर गए, हर दिल को अपनी आवाज़ का दीवाना कर गए। जिसमें भले ही दूर हुआ इस दुनिया से, मगर गीतों के साथ रफ़ी साहब दिलों में बस गए हम सभी के।

0: मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
2: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: आपकी रक्षा में पूरी।
3: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
4: को तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
5: दिमाग चार्ज कर अपना।
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
5: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
6: अब क्या करोगे?
4: फ्री वाईफाई है ना?
5: बुद्धू सुधर जा।
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: कभी हंसी बनकर होठों पर छा गए तो कभी दर्द बनकर आंखों में आ गए, ऐसे थे मोहम्मद रफ़ी। आवाज़ का जादू है रफ़ी साहब का, जब जहां जिनके लिए गाए बस उन्हीं के लिए होकर रहे।

आवाज में मिठास थी, दिल में था प्यार, सादगी से जीता उन्होंने सारा संसार। आज भी जब रफ़ी साहब का गीत बजता है, लगता है जैसे लौट आया हो बीता हुआ वो बहार।

0: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: संदेशों के बाद स्वागत है कार्यक्रम यादों के झरोखे से में। श्रोताओं, इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के गाए कुछ नगमे, जिनकी आज पुण्यतिथि है। न जाने कितने दिलों की धड़कन बन गए, न जाने कितने दिलों की धड़कन बन गए, न जाने कितनी यादों के सावन बन गए। रफ़ी साहब चले गए दुनिया से, मगर अपने गीतों में वे अमर जीवन बन गए।

इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम यादों के झरोखे से का ये अंक यहीं समाप्त होता है। इसमें आज हमने आपको सुनवाए मोहम्मद रफ़ी के गाए कुछ चुनिंदा नगमों को। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार प्रभात और 8:15 पर अंग्रेजी में मॉर्निंग न्यूज़ हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरमना ने डिस्कस थ्रो कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
3: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डेटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
2: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं।
5: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
2: वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर दर्शन करके देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।

0: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
1: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
2: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदीप जलडमरू मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश गठजोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह समझौता गजा में नई फलस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी इस समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय अधिकारी अब महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात के व्यापक क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। और ब्यूरो के साथ हैं हमारी संवाददाता।
3: मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें अहमदाबाद, आणंद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ जैसे जिले शामिल है। सभी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतियात के तौर पर अहमदाबाद, नवसारी, भरूच सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को

0: तेजी से शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: वहीं केरलम से हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिया। और अब बात खेलों की करते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों को 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का ये सही समय है।
2: The reality of life is that everything has a beginning.
3: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
1: अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। लोकसभा के बाद राज्यसभा द्वारा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। जनसत्ता के शब्द हैं, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के शब्द प्रकाशित किए हैं। असाधारण हालत में पैलेट गन चलाने का अधिकार। लोकसत्य लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैलेट गन के प्रयोग पर रोक नहीं, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं इस्तेमाल। ईरानी सेना के ठिकानों पर अमरीकी हमले, जॉर्डन में अमरीका के जेट तबाह करने का दावा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, कुवैत में चीन की कंपनी की इमारत बनी निशाना, पहली बार इजिप्ट तक हुए ड्रोन अटैक। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर। लेख में बताया गया है कि महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद घरेलू खपत में कमी नहीं आई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भारत में, अगला विदेश में पूरा कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर अवे प्रोग्राम के विरोध के बाद कार्यकारी परिषद से मिली मंजूरी, अमर उजाला की सुर्खी है। अब किताबें पाठकों से करेंगी सीधी बातचीत, एआई ने पढ़ने का बदला अनुभव, अटके तो किताब से ही पूछिए, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का

0: Commonwealth Games, Seema Kali Ramana bags bronze medal in discus throw. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: समाचारों का अनुप्रसारण अभी दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। अब हम रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए।
2: इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आपदा प्रबंधन के बारे में आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ श्री जितेंद्र सोलंकी से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता है रमा शंकर।

0: श्रोताओं नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, बारिश का मौसम है, कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं अति वर्षा होने के संकेत मिलते रहते हैं, और संकेत मिलने के साथ साथ ही लोगों को समय दिया जाता है कि वो तैयार हो जाएं। आजकल हमने देखा है सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पे हम जब अपने मैसेज बॉक्स में चेक करते हैं तो कभी कभी हमें गाहे बगाहे ऐसी सूचनाएं देखने को मिल जाती हैं कि इन इन जिलों में भारी वर्षा हो सकती है और कुछ जिलों में अति वर्षा होने की संभावना भी है, ऐसे मैसेजेस हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका उद्देश्य होता है कि इन इलाकों में रहने वाले व्यक्ति सतर्क हो जाए, और क्योंकि ऐसी आपदाएं होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, क्योंकि मौसम है कभी भी बदल सकता है, और इन आपदाओं से जान माल को नुकसान न हो इसके लिए सरकारें बहुत बेहतर कार्य कर रही हैं। श्रोताओं, सरकार की कई एजेंसियां हैं, कई विभाग हैं जो अवेयर करने के लिए कार्य करती हैं। श्रोताओं, जब आपदा आती है तो सबसे पहले लोगों को समझना मुश्किल हो जाता है कि हम क्या करें। उन्हीं आपदाओं से बचने के लिए आपदा प्रबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है, और इस आपदा प्रबंधन विभाग का कार्य होता है कि वो लोगों के होने वाले नुकसान को कम कर सके या कोशिश करते हैं कि ना हो। तो श्रोताओं, आपदा प्रबंधन के लिए जो संस्था होती है वो कैसे कार्य करती है, किन किन आपदाओं के लिए कार्य किया जाता है, और छत्तीसगढ़ में हमारे आपदा प्रबंधन के लिए कैसी तैयारियां रहती हैं, इसके बारे में जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जितेंद्र सोलंकी जी को, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। तो जितेंद्र जी, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद आकाशवाणी।
0: तो जितेंद्र जी, जैसा अभी हमने कार्यक्रम में बताया कि आपदा, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपदाएं क्या होती हैं और आपदा प्रबंधन क्या होता है और इसका क्या महत्व है।
1: आपदा से तात्पर्य एक ऐसी घटना से है जिसके घटित होने से बड़े स्तर पर जान माल का नुकसान होता है
0: जी,
1: जिससे इंसानी जीवन को खतरा होने की संभावना होती है, जिससे उसकी संपत्ति को हानि होती है। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, झालावाड़ का जो अभी एक इंसिडेंट हुआ है, एक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, भारी बारिश हुई, बारिश होने के कारण जितने बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे, जो बिल्डिंग थी वो एक पूरा हजार्ड था, और हजार्ड होने के कारण पूरा बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर था, लाइक जो स्लेब था, छत था, वो बच्चों के ऊपर आके गिर गया
0: जी,
1: जिससे ये हुआ कि उन बच्चों की डेथ भी हो चुकी, 7 से 8 लोग जो बच्चे मरे, और इसके अलावा कुछ बच्चों को नुकसान हुआ
0: जी।
1: तो मतलब एक ऐसी घटना जिससे जन सामान्य को आर्थिक और मानवीय क्षति होती है, उसको हम आपदा कहते हैं। अब बेसिकली जब बात होती है प्रबंधन की, तो प्रबंधन से तात्पर्य होता है कि जो आपदा से होने वाले प्रभाव हैं उनको कम करना। उनको कम करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो आम जनमानस है उनको आपदाओं के बारे में हम लोग पूर्व चेतावनी जारी करें, अथवा उनको आपदा का प्रशिक्षण दिया जाए। जैसे कहीं आग लगने वाली है, तो अगर आग लगने वाली है तो अगर व्यक्ति को हम लोग आग के बारे में बता देंगे कि फिर आग किस प्रकार की है, जैसे आग कहीं इलेक्ट्रिक के पोल पे लगी और वहां पे अगर हम लोग पानी डालेंगे तो आग बढ़ने के ज्यादा चांसेस है
0: जी,
1: लेकिन वहीं हम उनको अगर टेक्निकल टर्म में सिखाएंगे कि आप डीसी भी ड्राई केमिकल पाउडर का यूज करें या ऐसे पोल से दूर रहें ताकि पब्लिक अवेयर रहे
0: जी,
1: तो जब अवेयर रहेंगे तो वो बेसिकली प्रबंधन का पार्ट होता है जो उस चीज को मैनेज कर सकते हैं।
0: क्योंकि हम जब विद्युत के पोल या विद्युत के जो उपकरण होते हैं उसमें आग लगती है तो पानी उसका बहुत अच्छा चालक होता है, तो हमें पानी का उपयोग तो वहां नहीं करना चाहिए।
1: नहीं करना चाहिए, बिल्कुल।
0: तो पानी के स्थान पर हम क्या उपयोग कर सकते हैं?
1: पानी के स्थान पर आप इलेक्ट्रिकल पोल में अगर फायर इंसिडेंट अगर होता है तो देखिए कि आसपास जो मिट्टी है, मिट्टी का आप यूज करें, रेत हो सकती है, रेत का यूज करें, और जहां से इलेक्ट्रिकल का सप्लाई ज्यादा हो रहा है तो उस स्विच को, मेन स्विच को आप बंद कर दीजिए। अगर बंद नहीं कर सकते तो जो संबंधित व्यक्ति है, संबंधित डिपार्टमेंट है, उनको सूचित करिए।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई है। तो जितेंद्र जी, कार्यक्रम में हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी जो प्रमुख आपदाएं हैं जिसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट कार्य करता।
1: छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ एक ग्रीन बेल्ट स्टेट है जो 44% फॉरेस्ट से घिरा हुआ है और एक लैंडलॉक स्टेट है। छत्तीसगढ़ में अभी तक तो इतना कोई मेजर डिजास्टर नहीं हुए, लेकिन ड्यू टू क्लाइमेट कंडीशन जो

0: हो रही है, और जो ह्यूमन टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, नेचर में जो हम लोग इंटरफेयर करते जा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में मैं अगर बात करूँ तो फ्लड एक सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। वो छत्तीसगढ़ में साउथ पार्ट जो है छत्तीसगढ़ का, वो पिछले 25 साल के इतिहास में 8 से 10 बार मेजर फ्लड आया है
1: जी
0: छत्तीसगढ़ के साउथ पार्ट में,
1: जी
0: स्पेशली सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा।
1: जी
0: और अगर मैं बात करूं अर्थक्वेक की, तो छत्तीसगढ़ में अभी तक अर्थक्वेक का इतना बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ के ऐसे दो पार्ट है जो जोन सेकंड और जोन थर्ड में आता है। तो जोन सेकंड तो थोड़ा रिस्की है, लेकिन जोन थर्ड इतना रिस्की नहीं है। और जोन सेकंड में हमारा बीजापुर का भोपालपट्टनम तहसील है जो गढ़चिरौली से लगा हुआ है, और जोन थर्ड में हमारा रायपुर और ये जांजगीर चांपा और ये डिस्ट्रिक्ट इसमें सम्मिलित है। 2024 में अगर आपको याद होगा कि सुकमा के आसपास का जो इलाका था, जो बस्तर रीजन था, वहां पे 4 पॉइंट के आसपास एक भूकंप आया था,
1: जी
0: जिसका इम्पैक्ट लगभग लगभग आसपास के 50 से 60 किलोमीटर एरिया में था। उससे इतना बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इनकेस अगर फ्यूचर में अगर 5 पॉइंट से ऊपर तीव्रता का भूकंप आता है,
1: जी
0: तो मैं भी बड़े लेवल पे, लार्ज लेवल पे उसका नुकसान हो सकता है। छत्तीसगढ़ में देखिए लैंडस्लाइड के तो इतने खतरे नहीं है, क्योंकि हमारा ऐसा कोई हिली एरिया तो नहीं है। फिर भी जैसे हम लोग कहीं पे अगर रोड का कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं, और कोई हिली एरिया जहां पे रोड का हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वहां पे लैंडस्लाइड का संभावना, जैसे बस्तर में हमारा दंतेवाड़ा जो एनएमडीसी वाला बेल्ट है, इसके अलावा आप सरगुजा में चले जाइए, ये तो लैंडस्लाइड था। लैंडस्लाइड के अलावा हमारे यहाँ पे स्नेक बाइट एक बड़ा चैलेंज है, स्नेक बाइट के हर साल मतलब छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा। इसके अलावा लाइटनिंग का सबसे बड़ा चैलेंजेस है हमारे पास। अप्रोक्स अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में रेनी सीजन में, कम से कम जो 3 से 4 महीने का जो रेनी सीजन होता है छत्तीसगढ़ का, उसमें कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, 50 से 60 लोगों की मौत हो जाती है लाइटनिंग से। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजेस है हमारे लिए। और लाइटनिंग में जो हमारे जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, वो कोरबा है हमारा, कोरिया है, जांजगीर चांपा, बस्तर, महासमुंद, ये वाला बेल्ट है ना, लाइटनिंग से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है।
1: जी
0: इसके अलावा हमारे यहाँ पे अर्बन फ्लड नया टर्म आया अभी सुनने में,
1: जी
0: जैसे जैसे नगरीय क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, जो नेचुरल पॉन्ड्स थे हमारे, जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम था हमारा,
1: जी
0: जो नदी किनारे जहां हरियाली थी, उस हरियाली को हम लोगों ने समाप्त करके हमारे घर बना लिए। जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम था उसको हमने डैमेज करके हमारे वहां पे घर बना लिए।
1: जी
0: तो कहीं ना कहीं, जैसे आपने सुना होगा अभी रायपुर में कि 2 घंटे बारिश हुई, रोड पे ऊपर पानी आ गया, तो ये बेसिकली एक अर्बन फ्लड है, ये
1: जी
0: कंडीशन है। तो हमारे यहाँ पे ये डिजास्टर्स सबसे ज्यादा है।
1: तो जितेंद्र जी, हम यदि आपदा को विभाजित करना चाहें तो कितने प्रकार की आपदाएं में आप गिनते हैं?
0: आपदा की अगर मैं बात करूं तो हम लोग दो तरह की ही आपदा पे डिस्कस करते हैं, कि बेसिकली एक प्राकृतिक प्राकृतिक आपदा में जैसे आपका बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, लाइटनिंग हो गया, या फॉरेस्ट फायर हो गया, या सुनामी है, या फिर आपका लैंडस्लाइड है, तो ये बेसिकली प्राकृतिक आपदा होती है। मानवीय आपदा की अगर अपन बात करें, तो कहीं पे आप सड़क पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, ये एक प्रकार की मानवीय आपदा है। इसके अलावा कहीं इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री में जो ह्यूमन एरर होगा काम करते करते, कि आपको बोला गया था कि भाई आप इंडस्ट्री में अगर काम करें तो आपको सेफ्टी शूज, सेफ्टी बेल्ट और जो रूल्स थे उनको फॉलो करना था,
1: जी
0: वो आपने फॉलो नहीं किया और पता चला कि आपके साथ नुकसान हो गया, तो ये एक प्रकार की मानवीय आपदा है।
1: जी
0: लेकिन इन दो टर्म के अलावा आपदाएं अलग अलग प्रकार की भी होती है, जैसे भौगोलिक होती है, जलवायु जनित होती है, इसके अलावा वही प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, तो अलग अलग प्रकार की आपदाएं होती हैं।
1: जी। तो जितेंद्र जी, जैसा आप डिजास्टर में मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, तो जब कहीं पर आप लोगों को पता चलता है कि यहां पर ऐसा कुछ आपदा आया हुआ है, तो वहां पर कैसे आप लोगों का एक्शन होता है या क्या कार्यप्रणाली होती है जब आप लोगों को कैजुअल्टी में जाना पड़ता है?
0: कैजुअल्टी में एक्चुअल में हम लोग मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, कि बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट में अलग अलग पार्ट है। एक प्रिपेडनेस होता है, मिटिगेशन होता है, रिस्पॉन्स होता है, रिकवरी होता है। बेसिकली 4 फेजेस में डिजास्टर मैनेजमेंट काम करता है, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल है। अब प्रिपेयर्डनेस की अगर बात की जाए तो प्रिपेयर्डनेस में अगर सपोज कैजुअल्टी की बात है तो प्रिपेयर्डनेस का काम ये होता है कि हम लोगों को वो पहले से तैयार

0: करते हैं कि भाई अगर कहीं डिजास्टर होने वाला है तो पहले से कम्युनिटी तैयार हो जाए, क्योंकि एज अ फर्स्ट रिस्पोंडर कम्युनिटी होती है, प्रशासन बाद में आता है।
1: जी
0: तो हमारा पर्पस ही यही होता है प्रिपेयर्डनेस में कि कम्युनिटी तैयार है। मिटिगेशन में अगर मैं बात करूं तो मिटिगेशन दो तरह का हम लोग करते हैं, स्ट्रक्चर मिटिगेशन, नॉन स्ट्रक्चर मिटिगेशन। स्ट्रक्चर मिटिगेशन में हम लोग ये करते हैं कि कोई पुल अगर बाढ़ से प्रभावित है या कोई डैम अगर टूटने वाला है तो उसमें हम लोग स्ट्रक्चर टाइप एक्टिविटीज करवाते हैं कि जैसे जहां पे पुल नहीं है तो बेसिकली उस पुल को इस वे में डिजाइन किया जाए या वहां पे पुल बना दिया जाए या फिर फ्लड शेल्टर बना दिया जाए जहां पे लोगों को लाके शिफ्ट किया जा सके। नॉन स्ट्रक्चर मिटिगेशन में वही जो हम लोग रूल्स रेगुलेशंस निकालते हैं, जो एक्टिविटीज हम लोग करवाते हैं, जो मैसेजेस हम लोग जैसे केप सचेत पोर्टल है उसके माध्यम से देते हैं, वो एक नॉन स्ट्रक्चर मिटिगेशन। रिस्पांस की अगर हम लोग बात करें तो रिस्पांस में हमारे यहाँ पे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और जो अदर फोर्सेस है और जो स्टेट पुलिस है उनका काम होता है कि अगर डिजास्टर हुआ है तो हम लोग लाइजनिंग कोऑर्डिनेशन करके उनको उस पर्टिकुलर जो अफेक्टेड एरिया डिजास्टर एरियाज है वहां पे डिप्लॉय करवा सके। और रिकवरी की अगर हम लोग बात करें तो रिकवरी हमारा लास्ट फेज होता है। रिकवरी में अगर कोई कम्युनिटी अफेक्टेड हो जाती है जिनको हम लोग रेस्क्यू करके दूसरे प्लेस पे लेके आए हैं तो उनकी मेंटल एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उनको फिर से वही नेचुरल सिस्टम जहां पे वो सर्वाइव कर रहे थे फिर से वही वातावरण प्रोवाइड करना, जिसमें हम लोग सपोज को अगर मकान टूट चुका है ठीक है तो उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करके फिर से उसी अवस्था में लाके स्टेब्लिश करना। तो ये फोर फेजेस होते हैं हमारे।
1: जी जी बिल्कुल। जैसे कि अभी वर्षा का सीजन है, बारिश का सीजन है जितेन जी, तो जब छत्तीसगढ़ के किसी जिले में अति बारिश हो रही हो और एक बाढ़ का जोखिम हो तो हम शुरू करें पूर्वानुमान से कि कैसे व्यक्ति को सचेत किया जाता है आप लोगों के द्वारा, किन किन माध्यमों से उनको जो है सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं जहां पे बाढ़ आ सकता है, क्योंकि मौसम की सटीक जानकारी जो है प्राप्त होती है, उसके बाद राहत और बचाव कार्य के लिए आप लोगों की क्या जो है ड्यूटी होती है?
0: रेनी सीजन है, बाढ़ आना तो स्वाभाविक है। अब बाढ़ में एक्चुअल में हम लोगों का जो पूर्वानुमान होता है मुख्य रूप से भारतीय मौसम विभाग करता है, हम लोग सतत रूप से उनके कॉन्टेक्ट में होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि भाई रायपुर जिले में 3 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी है। तो ये चीजें जब हम लोग आईएमडी से कोऑर्डिनेशन करके प्राप्त करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप डिजाइन किया, एक पोर्टल लॉन्च किया है सचेत करके। आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से मैं आम पब्लिक को बताना चाहूंगा कि अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके ये अगर डाउनलोड करते हैं, स्पेशली जो फार्मर्स है, जो किसान है या जो आम पब्लिक है जो ट्रेवल करती रहती है, तो इससे क्या होगा कि आपके एरिया में अगर कोई भारी बारिश की चेतावनी है या बिजली गिरने की संभावना होती है तो 3 घंटे पहले इसकी आपको सूचना मिल जाती है।
1: जी।
0: तो हम क्या करते हैं कि जब भारतीय मौसम विभाग से हमें सूचना आती है तो डिपार्टमेंट के लिए एक आईडी पासवर्ड होता है, उस आईडी पासवर्ड से हम लॉगिन करते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया जो गूगल मैप होता है उस पर्टिकुलर मैप को हम लोग सिलेक्ट करते हैं लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बिहाफ पे। टेक्स्ट माध्यम के जितनी भी टीएसपी होती है, टीएसपी इन द सेंस की जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, इनके माध्यम से हम लोगों को तुरंत मैसेज सर्कुलेट कर देते हैं।
1: जी जी।
0: इससे लोगों को ये पता चल जाता है कि इस एरिया में बाढ़ आने की संभावना है या आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। सेम हम चीज जिला प्रशासन को भी अलर्ट कर देते हैं।
1: जी।
0: अब देखिए कि अगर उस इलाके में अगर बाढ़ आ गई है तो बाढ़ आने से पूर्व और बाढ़ आने के बाद हम लोग कैसे राहत सहायता उपलब्ध करवाते हैं, तो देखिए बाढ़ आने के पूर्व हम लोग जिला प्रशासन को व्हाट्सएप ग्रुप जो बना रहता है उसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, सचेत के माध्यम से जो हमारा पोर्टल है उसके माध्यम से या जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है उसके माध्यम से हम लोग उनको सूचित कर देते हैं। उसके साथ साथ जो लाइन डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, क्योंकि इनका सबसे बड़ा रोल होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई है कलेक्टर की अध्यक्षता में, डिस्ट्रिक्ट जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उनको भी हम लोग सूचित कर देते हैं। अब उस इलाके में अगर बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के से पहले हमारे पास क्या होता है, सारे रिसोर्सेज की लिस्ट रहती है, हम लोग उस डिस्ट्रिक्ट का एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं तो उसमें हम लोग बेसिकली जीआईएस मैपिंग के थ्रू हमें ये पता होता है कि ये रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। एक आईडीआरएन पोर्टल होता है, इंडियन डिजास्टर रिसोर्सेज नेटवर्क, उस पोर्टल के माध्यम से हर एक, अगर आपके जिले में अगर एक सुई भी है तो उसका डाटाबेस भी बना हुआ है।
1: जी।
0: तो उस डाटाबेस के बिहाफ पे हम लोग जब डिजास्टर होता है या फ्लड आती है तो हम लोग रिसोर्सेज की सूची पता करके वहां पे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जरूरत होती है तो हम लोग एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को डिप्लॉय कर देते हैं।
1: जी।
0: फिर तुरंत हम लोग कोऑर्डिनेशन हमारा उनसे चलता रहता है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के माध्यम से।
1: बहुत

0: अच्छी बात अभी आपने बताई है जितेंद्र जी। तो जितेंद्र जी, बातें तो और भी होंगी, हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गीत सुनते और आपके जरिए हमारे श्रोता भी सुन पाते वो गीत। तो आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: एक पुरानी फिल्म है, फिल्म आक्रमण, उसका गाना दिली मौसम आया, वो सुनना चाहूंगा।
0: तो श्रोताओं, जितेंद्र जी की पसंद का ये गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन विषय पर, आपदा प्रबंधन एक्सपर्ट यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी जी से। तो जितेंद्र जी, कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। तो जितेंद्र जी, जैसे कि हम देखते हैं कि जब आपदाओं का विभाजन

0: किया जाता है, तो इसमें बाढ़ आना, भूकंप, आग लग जाना, और जैसे आपने बताया कि कुछ मैन मेड आपदाएं भी होती हैं, तो इसके लिए जब हम बात करेंगे कि आपदाओं के प्रबंधन के समय आपके साथ कौन कौन सी टीमें साथ होती हैं, तो इसके बारे में बताएं कि यदि हम शहरी इलाकों में हैं और ग्रामीण इलाकों में जहां की पहुंच पाना काफी कठिन होता है और दूरस्थ इलाके हैं।
1: एक रियल इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करूंगा इसी टॉपिक के बिहार पे। जब 2017-18 की बात है, सुकमा 2017-18 में मैं जब डिस्ट्रिक्ट सुकमा में पोस्टेड था तो वहां पे फ्लड आई थी। तो फ्लड आई थी तो जो सुकमा टाउन था वो सबमर्ज हो चुका था, इन द सेंस कि सुकमा टाउन में भी पानी गिर चुका था। सुकमा ओडिशा से लगा हुआ है, तो जो मलकानगिरी वाला बेल्ट था, मतलब ओडिशा का मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट, उनसे भी हमारा कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो चुका था। इधर हम बस्तर और संभाग से भी कट चुके थे, और इधर हम भद्राचलम जो कोंटा वाला एरिया है उधर से भी हम कट चुके थे। अब आप सोचिए कि जो डिस्ट्रिक्ट की लाइफ लाइन कही जाती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वो भी फ्लड में अफेक्टेड हो चुका था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिसर जहां से सारा एडमिनिस्ट्रेशन संचालन होता था वो भी कट चुका था। अब करे तो करे क्या, तो उस बिहाफ पे हम लोग, हमारी पहले से एक प्लानिंग होती है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो हम लोग पहले से ही अल्टरनेटिव एक ऐसा रिसोर्सेस अवेलेबल करवा ले। तो पहले से हम लोगों ने एक अल्टरनेटिव ईओसी इन द सेंस की इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके रखा था। अब जब सुकमा टाउन में ये फ्लड आया तो फ्लड के समय हम लोगों ने वही जो फोर फेजेस मैंने आपको बोला था, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी पे काम किया था। तो इसमें हमारे साथ जो लाइन डिपार्टमेंट थे, हेल्थ डिपार्टमेंट, क्योंकि फ्लड अगर आ चुका है तो फ्लड के जाने के बाद जो प्राइमरी चीज होती है आम पब्लिक के लिए वो होता है हेल्थ का, क्योंकि फ्लड के जाने से पूर्व और आने के बाद जो हेल्थ सर्विसेज होती है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय होती है। क्योंकि जैसे कोई गर्भवती महिला है या जो वृद्ध जन है या कोई पेशेंट है, तो इन लोगों को जो शिफ्टिंग का काम होता है, मेडिसिन का काम होता है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट देखता है
0: जी।
1: इसके साथ साथ लाइन डिपार्टमेंट में आम पब्लिक को रेस्क्यू करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और लोकल होमगार्ड्स की टीम थी, और साथ में जो विक्टिम्स अफेक्टेड हो चुके थे उनको अगर हम लोगों ने शिफ्ट किया है तो शिफ्ट करने के लिए हमें फूड की जरूरत पड़ती है, तो फूड डिपार्टमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। इसके साथ साथ जो आम पब्लिक के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए कि भाई कौन सा एरिया अफेक्टेड हो है, वहां से इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन क्या होगा, तो उसमें जो अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या पंचायत ग्रामीण विकास विभाग है, तो सारे डिपार्टमेंट का मेजर रोल रहता है, सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहते हैं।
0: तो जितेंद्र सोलंकी जी, ये एनडीएमए जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो जब हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, तो किस तरह इनका सामंजस्य होता है जब आप एक स्टेट में काम करते हैं और जब वहां के आपदा प्रबंधन के लिए आपकी जिम्मेदारी होती है, तो स्टेट किस तरह मिलकर कार्य करते हैं?
1: सेंट्रल और स्टेट लेवल पे मैं अगर बात करूं तो देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट टर्म 2005 से पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन गुजरात के अर्थक्वेक के बाद, ओडिशा सुपर साइक्लोन के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये लगा कि कुछ ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि जो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे डिजास्टर को स्पेशली मैनेज कर सके। तो 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लेके आई, उसी के बिहाफ नेशनल और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज का गठन हुआ। तो नेशनल लेवल पे एनडीएम है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको हेडेड रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सर करते हैं। स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, जिसको रिस्पेक्टेड सीएम साहब करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसे हिंदी में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण करते हैं कहते हैं, उसको रिस्पेक्टेड कलेक्टर हेडेड करते हैं। बेसिकली तीनों का रोल सेम है। एनडीएमए नेशनल लेवल पे कोई अगर डिजास्टर होता है तो उसके लिए काम करती है, नेशनल लेवल पे कोई गाइडलाइंस इशू करनी है स्टेट के लिए या नेशनल लेवल का कोई प्लान बनाना है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो वो एनडीएमए का काम होता है। वो स्टेट के, जिस स्टेट में अगर डिजास्टर भी अगर आता है तो उसको मॉनिटरिंग का भी काम बेसिकली एनडीएमए करता है। स्टेट लेवल पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिजास्टर होगा उसके लिए गाइडलाइंस से लेकर प्लान्स, पॉलिसीज, एसओपीस और इसके अलावा जो फंड इश्यू करना होता है उसका वो सारा काम देखती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज होती है जिसको कलेक्टर

0: हेडेड करते हैं। लोकल लेवल पे जो डिजास्टर है या कोई प्लान बनाना है या लोकल लेवल पे कुछ अवेयरनेस कंडक्ट करना है तो वो काम डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज करती हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो ये एक्चुअल में स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट इस पे अपने बिहाफ पे भी कोई रूल्स बना सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तक जो भी रूल्स बनता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही बनाया है। डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत अच्छे लेवल पे काम हो रहा है स्टेट में।
1: तो जितेंद्र सोलंकी जी, तो कुछ इसमें जो है आप लोगों के नंबर्स होते हैं, फोन नंबर होते हैं, टोल फ्री नंबर होते हैं, जहां फोन लगाकर हम जानकारी ले सकते हैं कि कहां पर ऐसी आकस्मिक घटनाएं होने वाली हैं या अगर घटनाएं हो गई तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, मदद कहां से मिल सकती है, तो ऐसी कौन कौन सी टोल फ्री नंबर होती है अपने डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की तरफ से?
0: छत्तीसगढ़ में क्या ऑल ओवर इंडिया में एक टोल फ्री नंबर है, जैसे अगर सपोज किसी का रोड एक्सीडेंट हो चुका है, कोई नदी नाला पार करते हुए बह गया है, या किसी घर में अग्नि दुर्घटना हुई है, या कोई भी प्राकृतिक या मानवीय आपदा घटित हुई है जिससे नुकसान हो रहा है
1: जी।
0: तो अगर आपको जरूरत है शासन प्रशासन की या उसके बारे में सूचना देनी है तो एक टोल फ्री नंबर है 1070। अगर आपके मोबाइल में बैलेंस भी नहीं है और अगर आप ये नंबर डायल करते हैं तो बेसिकली आपदा प्रबंधन का ही एक टोल फ्री नंबर है, इस पर अगर आप डायल करते हैं, स्नेक बाइट का भी है, तो आपको तुरंत यहाँ से सहायता मिल जाती है। इसमें क्या है कि स्टेट लेवल पे हम लोग एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 24/7 काम कर रहा है रायपुर में ही। इसी टोल फ्री नंबर पे जब किसी पर्सन का अगर कॉल आता है उस पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से, जब ये कॉल हमारे पास आती है उस टोल फ्री नंबर पे, तो हम लोग पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को वहां के जो नोडल ऑफिसर होते हैं या जो लाइन डिपार्टमेंट होता है उनको सूचित कर देते हैं। जब सूचना उनके पास पहुंचती है तो तुरंत वहां से फिर एक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये टोल फ्री नंबर याद होना चाहिए 1070।
1: तो जितेंद्र सोलंकी जी, आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि जब कोई आपदा आने वाली हो या आ चुकी हो तो कैसे सावधान रहें और कैसे उसके लिए धैर्य बनाए रखें और खुद से कैसे तैयार रहें।
0: तो अगर कोई भी आपदा अगर घटित होती है तो सबसे पहले हम लोग अलर्ट रहें। अलर्ट रहने के लिए हम लोग मौसम के बारे में जानकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से या समाचार के माध्यम से प्राप्त करते रहे, या जो मैंने ऐप आपको बताया था सचेत ऐप, उसको हम लोग डाउनलोड करके रखे हमारे मोबाइल में। किसान अगर चाहे तो दामिनी ऐप भी डाउनलोड करके रख सकते हैं जो लाइटनिंग के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा जब भी कोई आपदा आती है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है कि हमारे घर परिवार में या हमारे आसपास के मोहल्ले में ऐसी कौन सी पब्लिक है जो आपदा होने पर या आपदा आने के बाद सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगी, तो इनको सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए। अब ऐसी कौन सी कम्युनिटी में सपोज सबसे ज्यादा वल्नरेबल में आ सकता है, हमारी गर्भवती महिलाएं, हमारे दिव्यांगजन, हमारे वृद्धजन, तो इनका हमें ध्यान रखना है। तीसरी चीज हमें ये कि आपदा अगर आई है तो हम लोग प्रशासन को सूचित करें, प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि बिना प्रशासन के सहयोग से हम लोग किसी भी आपदा से नहीं निपट सकते। चौथी चीज ये होती है कि जब अगर आपदा आई है तो आपदा आने के बाद जो कंपनसेशन भी मिलेगा ये आपकी अगर एक आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, तो जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या आपके जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उनको अपने साथ रखें। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको काम आएगी आपदा प्रबंधन में। इसके अलावा आपको किसी भी आपदा से निपटने के लिए कम से कम, मतलब मेरा पर्सनली एडवाइस है कि आपको CPR आना चाहिए या फर्स्ट एड, मतलब अगर कोई भी आपदा आएगी कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को चोट तो लगती ही लगती है, वो चाहे मेजर हो या माइनर इंजरी हो, तो कम से कम एक फर्स्ट एड देना तो हम आम जन सामान्य को इतना आना ही चाहिए। तो ये सारी चीजें, इन सब चीज को अगर ये ध्यान रखे आम जन सामान्य तो कोई भी चाहे प्राकृतिक आपदा हो मानवीय आपदा हो हम लोग इनसे बच सकते हैं
1: जी। श्रोता, इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे जितेंद्र सोलंकी जी से जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। तो जितेंद्र जी, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपने श्रोताओं को आपदा प्रबंधन से जुड़ी जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर धन्यवाद आपका।
1: इनसे मिलिए कार्यक्रम से हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज है पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि। आज के फनकार ये कार्यक्रम आज सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे, जो कि केंद्रित रहेगा पार्श्व गायक मोहम्मद रफी पर। प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी हैं। साथ ही जन्मदिन है अभिनेत्री मुमताज का, उन्हें भी हम विविध भारती के परिवार की तरफ से बहुत बधाइयां देते हैं। और रात को 9:30 पर आप आज के फनकार ये कार्यक्रम सुनेंगे, जो कि केंद्रित रहेगा अभिनेत्री मुमताज पर। आलेख व स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। सुनना नहीं भूलिएगा। और अब आपको सुनवा रहे हैं चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गीत, कार्यक्रम चित्रलोक की अगली प्रस्तुति। चिन्मय श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

रॉक स्टार फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं मोहित चौहान और सुजैन डी मैलो की आवाजों में अगला गीत। इरशाद कामिल ने इस गीत की रचना की है, तर्ज बनाई है ए आर रहमान ने।

0: सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना, आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: इस वक्त आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम चित्रलोक। कुछ लव जैसा इस फिल्म का गीत, प्रीतम ने इस गीत का संगीत बनाया है, इरशाद कामिल ने लिखा है और सुनिधि चौहान, अनुपम आमोद के स्वरों में ये गीत है।

कार्यक्रम चित्रलोक का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिलवाले से। अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत की रचना की है, प्रीतम ने संगीत से सजाया है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।

0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज फिर जीने की तमन्ना है, आज के फनकार।

0: मोहम्मद रफी की याद का दिन है। उनकी स्मृति में विशेष फीचर।
1: तुम मुझे यूं भुला न पाओगे,
0: तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। गायकी की दुनिया का एक सितारा जिसकी शीरी आवाज दुनिया के हर कोने में गूंजती है, मोहम्मद रफी नफरतों और जुल्मतों से भरी इस दुनिया में प्यार का राग है।

0: रात की रात। आवाज की दुनिया का एक फरिश्ता, एक बेहतरीन शख्स और एक महान कलाकार। समझ नहीं आता मोहम्मद रफी पर बातें कहां से शुरू की जाएं और कहां खत्म की जाएं।
1: कि तुझे नगमों की जां अहले नजर यूं ही नहीं कहते, तेरे गीतों को दिल का हम सफर यूं ही नहीं कहते।
0: विविध भारती के संग्रहालय से संगीतकार नौशाद।
1: सुनी सबने मोहब्बत की जबां आवाज में तेरी, धड़कता है दिले हिंदुस्तान आवाज में तेरी।

0: 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में मोहम्मद रफी का जन्म हुआ था। उन दिनों में उनके गांव में एक फकीर होता था जिसकी आवाज ने रफी को गाने की प्रेरणा दी। बाद में मोहम्मद रफी का परिवार लाहौर चला आया। यहां उन्होंने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब और उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब से संगीत की तालीम ली थी।
1: लाहौर में कुंदन लाल सहगल का एक कंसर्ट हो रहा था, लेकिन अचानक बिजली चली गई और आयोजन रुक गया। सहगल ने कहा कि जब तक बिजली नहीं आएगी वो नहीं गाएंगे। 13 बरस के मोहम्मद रफी इस आयोजन में अपने रिश्तेदार के साथ आए हुए थे। उन्होंने कहा कि रफी गाना गाकर जनता को शांत कर सकते हैं। इस तरह से मोहम्मद रफी ने पहली बार मंच पर गाया। फिल्मों में पहली बार गाने का मौका संगीतकार श्याम सुंदर ने दिया सन 1942 में। फिल्म थी कुल बलोच।
2: तेरी याद ने आना सताया।
1: सन 1946 मोहम्मद रफी ने मुंबई आने का फैसला किया। यहां संगीतकार नौशाद ने उन्हें सबसे पहले फिल्म पहले आप में गाने का मौका दिया। सन 1946 में फिल्म शाहजहां में कुंदन लाल सहगल की आवाज के पीछे मोहम्मद रफी ने कोरस में ये गाना गाया था।

0: शुरुआती संघर्ष के बाद मोहम्मद रफी को पहला बड़ा मौका संगीतकार नौशाद ने दिया। फिल्म थी अनमोल घड़ी।
1: तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा, तेरा खिलौना टूटा बालक।
0: इसके बाद 1948 में फिल्म मेला के इस गाने से मोहम्मद रफी को काफी शोहरत मिली।

0: 1949 में आया दुलारी फिल्म का ये गाना।
1: सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे।
0: मोहम्मद रफी की कामयाबी का कारवां सन 1951 से शुरू होता है। फिल्म बैजू बावरा।

0: इसके बाद मोहम्मद रफी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। संगीतकार नौशाद ने उनकी याद में विविध भारती से ये बात कही थी।
1: गायकी था हुस्न फन तेरा रफी, गायकी था तेरा हुस्न फन रफी, तेरे फन पर हम सभी को नाज है, ये सबक सीखा तेरे नगमात से, जिंदगानी प्यार का एक साज है, मेरी सरगम में भी तेरा जिक्र है, मेरे गीतों में तेरी आवाज है।

रफी इतने पक्के सुरों वाले गायक थे कि गीत चाहे शास्त्रीय हो या पश्चिमी, उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मोहम्मद रफी और नौशाद की जोड़ी ने फिल्म संगीत के इतिहास के कुछ बेमिसाल और कालजयी गीत दिए हैं। सन 1960, फिल्म कोहिनूर राग हमीर पर आधारित

0: मोहम्मद रफी ने मस्ती भरे गाने भी खूब गाए। चाइना टाउन,
1: बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा।
0: जंगली,
1: आई आईया करूं मैं क्या सुकु सुकु खो गया दिल मेरा सुकु सुकु।
0: प्रिंस,
2: बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो जैना जाए।
3: मतलब मेरी आवाज है, मैं समझता हूँ रफी साहब ना होते तो मैं बड़ा मैं इनकम्प्लीट था। उनके साथ होने से मेरी तस्वीर पूरी हो।
0: विविध भारती के संग्रहालय से जाने माने अभिनेता शम्मी कपूर,
3: उन्होंने मुझे स्टाइल दिया जैसे मैं समझता हूँ कि रफी को स्टाइल ओपी नहीं ने दिया। रफी साहब इज अ वेरी गुड सिंगर और क्या उनकी पिच है, लेकिन एक स्टाइल जो है वो नहीं ने दिया, जहाँ वो खींचते थे आवाज। एंड रफी साहब यूज ऑल दैट फॉर मी ब्यूटिफुली और ही वाज वेरी रिसेप्टिव टू कि मैं जिस तरह से चाहता था। मैं पेरिस में था और मेरे गाना उन्होंने मेरी गैर हाजिरी में रिकॉर्ड किया और जब मैंने वो गाना सुना मैं तो बिल्कुल दंग रह गया कि ये ऐसे कैसे उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। और जब मेरी मुलाकात हुई उनसे जब मैं वापस आया तो मैं रफी साहब ये आपने ये गाना इस तरह से कैसे गा दिया, मुझे जैसे चाहिए था जैसे मैंने सोचा था वैसे ही आपने गाया ये गाना, ये बताइए कैसे। कहते यार पापा मैंने बस ये सोचा कि शम्मी कपूर यहाँ पे की करेगा, वो शम्मी कपूर हाथ ऐसे फैलाएगा, वो शम्मी कपूर टंग ऐसे फैलाएगा, शम्मी कपूर तो तले एन करके गिर जाएगा फिर दो रोटियां खाएगा, तो मैं वैसे ही गाना गाता रहा। आप यकीन कीजिएगा दिस इज अनकैनी, वेरी अनकैनी के जिस तरीके से मैं सोचूं उस तरीके से वो आदमी ही इज एक्टिंग द होल सॉन्ग एंड दैट सॉन्ग वाज आसमान से आया फरिश्ता।

0: मोहम्मद रफी ने जाने कितनी भाषाओं में गाने गाए, यहाँ तक कि अंग्रेजी में भी। उन्होंने गैर फिल्मी गीत, गजलें, नातिया कलाम सबको अपनी आवाज दी। ये है उनका एक गैर फिल्मी गीत।
1: ब्रिज में लौट चलो।
2: दशक बदलती रही, युग बदलते रहे, पर रफी की आवाज का करिश्मा खत्म नहीं हुआ। उनकी आवाज लोगों के दिलों पर साल दर साल राज करती रही। आइए दशक दर दशक रफी की यात्रा पर एक नजर। 50 का दशक।

0: किया।
1: उनको खुश करना हो ना हमको। हाँ। तो लक्ष्मी जी हम दोनों क्या करते थे?
2: विविध भारती के संग्रहालय से संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के प्यारे लाल
1: घर से चाय लेके आते थे, तो उनकी चाय जो बनती थी वो किसको देते नहीं थे।
0: अच्छा।
1: वो खुद पीते थे। हाँ। लेकिन वो थर्मास के अंदर आती थी, दो थर्मास। लेकिन वो कैसी चाय बनती थी मैं बताऊं आपको। दो सिर दूध के एक सिर बनाते थे जिसमें बादाम और पिस्ता डालते थे, और उसके बाद में चाय की पत्ती, वो खास उनकी पत्ती थी, और वो चाय लेके आते। वो अगर आप एक मिनट रखेंगे तो मलाई इतनी जम जाती। तो हम क्या करते थे, क्योंकि हमको खुश करना है रफी साहब को, तो खुश करने के लिए हम उनको बोलेंगे थोड़ी चाय मिल जाएगी। तो वो कैसा करते थे ना, जैसे हम बोलते ना कि छोटा बच्चा अगर है तो अगर मस्ती कर रहा है कुछ, अरे भाई उसको कुछ चॉकलेट देना, चॉकलेट, तो कैसे बोलने का स्टाइल होता है ना। तो उनका होता जहीर था उनका साला, अरे जहीर चाय दो ना, चाय इनको, बच्चे लोग है ना, चाय पिलाओ। तो बोलने का एक ढंग होता था, और चाय पीने के बाद फिर हमको बोलना चाहिए वाह वाह मजा आ गई। तो देखिए ऐसी ऐसी चीजें होती है। फिर उनको एक शौक था सीटी बजाने का।
0: अच्छा।
1: विसल, उनको बोलेंगे भाई गाना है एंड में आपको विसल बजाना है, तो पूरा गाना वेट करते हो गाना खत्म हो और मैं जाके विसल बजाऊं। डा डा डा डा रा दीवाना ओ रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैं अभी अभी के अभी ये सब चीजें होती ना, ये उनमें बहुत थी। और उसके एंड में वो जो वो था ना उसमें पीस था डा, ये हमने यूज किया था टोटा। तो उसमें आप देखिए डा डा डा दी धक धीन, तो उसमें उन्होंने विसल बजाई है।

0: मेरी उनसे पहली मुलाकात 1947 में दिल्ली में हुई, जब भारत आजाद हुआ।
1: संगीतकार रवि विविध भारती के संग्रहालय से।
0: भारत सरकार ने एक प्रोग्राम रखा था दिल्ली में, जश्न जमहूरियत, आजादी का जश्न मनाया, और उसमें दो सिंगर्स मुकेश साहब और रफी साहब को बॉम्बे से बुलाया गाने के लिए।

मुझे पता लगा मैं रफ़ी साहब को बड़ा चाहने वाला था शुरू से, क्योंकि जब मैं गाने सुनता था उनके, सुनो सुनो ये दुनिया वालों, बापू की उम्र कहानी, या और बहुत से गाने उन्होंने गाए फिल्मों में, तो मैं बड़ा उनका फ़ैन था। तो मैंने कहा मैं रफ़ी साहब को ज़रूर मिलूँगा। तो मैंने पता लगाया कि वो फतेहपुरी दिल्ली में कॉरोनेशन होटल में ठहरे हैं। मैं उनसे मिलने गया, बात की, मैंने उनसे, मेरे दोस्तों से कहलवाया मैंने कि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे समझाया कि पहले असिस्टेंट बनना पड़ेगा, नोटेशन सीखनी पड़ेगी, ये वो सब सारी बातें बताई। खैर हम चले आए वहाँ से उनसे मिलकर, उनके भाई भी थे साथ में। इत्तेफाक ये हुआ कि मुझे गाने का शौक था, मैं 1950 में बॉम्बे आया। इससे पहले मैं दिल्ली में पोस्ट एंड टेलीग्राफ में एज इलेक्ट्रिशियन काम करता था। तो वहाँ से बॉम्बे आया, बॉम्बे आकर बड़ा स्ट्रगल का टाइम गुजरा, 2-3 साल 4 साल। मुझे फिल्म वचन में पहला चांस मिला, उसमें एक गाना था एक पैसा दे दे बाबू, तो मैंने रफ़ी साहब से वो गाना गवाया।

0: जब वो गा रहे थे तो मेरे दिल में आया कि मैं रफ़ी साहब को बता दूं कि मैं वही लड़का हूं जो आपको कॉरोनेशन होटल में मिला था दिल्ली में 1947 में, और आपने कहा था ये करना वो करना म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए, मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन गया हूं। मैं दिल में जाया कह दूँ इनको। फिर मैंने कहा अब तो मैं यहाँ आ गया हूँ बॉम्बे में, और भी गाने गवाऊंगा उनको, कभी कह दूंगा।
1: न झटको जुल्फ से पानी।

प्रोड्यूसर डायरेक्टर डायरेक्टर मिस्टर राम महेश्वरी, वो एक दिन आए, साहिर साहब बैठे थे यहाँ साथ साथ में, साहिर साहब को सिचुएशन बता रहे थे कि राजकुमार जी फिल्म में मीना कुमारी को पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं, कुछ शायरी कहते हैं, तो कुछ दो शेर आप लिख दीजिए, साहिर साहब का बोल दो शेर लिख दीजिए कि वो तरन्नुम में कहें। साहिर साहब लिख कर ले आए, चूल्हे नाजुक होठों को कुछ और नहीं तो जाम है। मैंने भी अब जब उन्होंने कहा था तरन्नुम की बात करी तो मैंने चूल्हे ने दो नाजुक होठों को कुछ और नहीं है जाम है ये, इस टाइप की टून बना दी। लेकिन जब मैं धुन बना रहा था तो मुझे एक धुन और याद आई, मेरे दिमाग में आई कि इसकी तो बहुत अच्छी धुन बन सकती है। साहिर साहब इसको हम तरन्नुम में क्यों डाल रहे हैं इसको, हम अगर इसका गाना बनाए तो अच्छा है ना, ये हम शेर व शायरी के हिसाब से तरन्नुम में दो शेर कह दिए, रिकॉर्ड भी बनेगा फिर उसका। तो मैंने उनको धुन सुनाई साहिर साहब को, बोले बड़ी अच्छी धुन है, बोले अच्छा आने दीजिए डायरेक्टर को, हम बोलते हैं कि गाना रखो उसके शेर की बजाय। राम महेश्वरी साहब आए, उनको सुनाया, बोले नहीं नहीं वो राजकुमार जी के मुँह पर अच्छा नहीं लगेगा गाना, कभी किसी ने दिया नहीं उनको गाना। मैंने कहा देखिए गाना अगर अच्छा है तो कोई भी गाए उसको अच्छा लगेगा। तो बड़े बेदिली से कहने लगे अच्छा ऐसा करे फिर दो शेर से ज़्यादा ना रखिए। साहिर साहब बोले ठीक है, दो शेर लिख कर ले आए। जिस दिन गाना रिकॉर्डिंग हो रहा था, सुनने वाले डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर के और आदमी सब सब सुन रहे थे हर शेर पर, वाह वाह वाह वाह क्या बात, रफी साहब क्या गा रहे थे। गाना खत्म हो गया दो शेर के बाद, डिस्ट्रीब्यूटर ने शिकायत की राम महेश्वरी साहब को, क्या महेश्वरी साहब ये क्या इतना अच्छा गाना दो शेर। अब महेश्वरी साहब परेशान हुए तो बार बाहर जाकर उन्हें साहिर साहब को फोन लगा रहे थे कि तीसरा शेर भी दे दो कोई है तो। लेकिन साहिर साहब नहीं मिले और गाने में दो शेर रह गए।

के हिसाब से गाने में अदायगी को स्वर देना। इसीलिए अभिनेताओं की पीढ़ियां बदलती रहीं और उनके मुताबिक रफी की अदायगी बदलती रही। आइए अभिनेता दर अभिनेता मोहम्मद रफी की आवाज के इस सफर पर एक नजर डालें। दिलीप कुमार।

0: अभिनेता दर अभिनेता मोहम्मद रफी की आवाज की अदायगी के सफर पर निकले हैं और ये गुरुदत्त की आवाज।
1: हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो।
0: और जॉनी वॉकर के लिए तो मोहम्मद रफी ने बहुत बेजोड़ अंदाज अपनाया।

0: तेरा अखियां
1: और ऋषि कपूर
0: पर्दा है पर्दा है पर्दा है।
2: विविध भारती प्रसारण के सेवा का कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जा रहा था। 9:55 हुए हैं। जुड़ते हैं रायपुर से प्रादेशिक समाचार के लिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग के रेड और येलो अलर्ट को देखते हुए सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं और छत्तीसगढ़ के लोक शिक्षण संचालनालय ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा पहली से बारहवीं तक की तिमाही और अर्धवार्षिक परीक्षाओं की समय सारणी जारी की।

0: विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के सामने प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या रही है, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्यों दोनों स्तरों पर शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार आवश्यक हो गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने इस दिशा में कड़े कानूनी प्रावधानों वाला विधेयक पारित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग के रेड और येलो अलर्ट को देखते हुए सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और संबंधित विभागों के अधिकारियों से संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी रखने तथा बाढ़ और जलभराव की आशंका वाले इलाकों में समय पर राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और राहत कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने लोगों से प्रशासन की सलाह का पालन करने और नदी नालों तथा जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान कल केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में रेल अधोसंरचना के विस्तार और लंबित रेल परियोजनाओं पर चर्चा हुई। बैठक में कटघोरा डोंगरगढ़ नई रेल लाइन परियोजना को रेल मंत्रालय और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से विकसित करने पर सहमति बनी। लगभग 295 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन कटघोरा, करतला, मुंगेली, कवर्धा और खैरागढ़ होते हुए डोंगरगढ़ तक जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से रेल संपर्क मजबूत होगा तथा उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, खनिज परिवहन और जनजाति क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक की परीक्षाएं एक ही समय पर होंगी। तिमाही परीक्षाएं 21 सितंबर से 30 सितंबर तक, जबकि छमाही या अर्धवार्षिक परीक्षाएं 1 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच आयोजित होंगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा पहली से 12वीं तक की तिमाही और अर्धवार्षिक परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी है। इसके साथ ही सभी जिलों में परीक्षा संचालन और मूल्यांकन की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर परीक्षा समिति गठित करने के लिए सभी डीईओ को निर्देश दिए गए हैं। राज्य की सहायक मत्स्य अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 की चयन प्रक्रिया और परीक्षा परिणाम को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पूरी तरह निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में गंभीर कमियां और अपने पूर्व आदेशों की अनदेखी पाए जाने के बाद पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से पारदर्शी तरीके से संचालित करने का निर्देश दिया है। संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के समरसता संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से लाई गई पवित्र माटी और जल का कलश आज रायपुर पहुंचेगा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने बताया कि यह कलश आज बंजारी माता मंदिर से यात्रा के रूप में श्री राम मंदिर पहुंचेगा, जहां साधु संतों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। उन्होंने बताया कि 4 अगस्त को पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में कलश वितरण कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। इसके बाद ये पवित्र कलश प्रदेश के सभी जिलों और मंडलों में भेजे जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग के रेड और येलो अलर्ट को देखते हुए सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं और छत्तीसगढ़ के लोक शिक्षण संचालनालय ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा पहली से 12वीं तक की तिमाही और द्विवार्षिक परीक्षाओं की समय सारणी जारी की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: हिंदी में प्रादेशिक समाचार अभी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। दिन के 10 बजे हैं। आई श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के का। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे मोर ध्वज राजा का किस्सा और राज भजन।

मोर ध्वज राजा का किस्सा भी आपने सुना। गायक कलाकार थे ईश्वर गिरी गोस्वामी, गुलाब गिरी और साथी। कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के में आगे सुनेंगे राज भजन, उससे पहले ये संदेश।

0: ना कोई मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।

0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
1: संदेशों के बाद स्वागत है कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के में। आई श्रोताओं, अब सुनते हैं राज भजन। गायक कलाकार हैं कमलेंद्र मराभी, सुखराम सिदार, त्रिभुवन सिंह, प्रीतम मराभी और साथी।

इसी राज भजन के साथ ही कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के का ये अंक यहीं समाप्त होता है। इसमें आज हमने आपको सुनवाए मोरध्वज राजा का किस्सा, जिसमें गायक कलाकार थे ईश्वरगिरी गोस्वामी, गुलाबगिरी और साथी, और राज भजन गायक कलाकार थे कमलेन मरावी, सुखराम सिदार, त्रिभुवन सिंह, प्रीतम मरावी और साथी। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 10:30 हुए हैं। आई श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद का, और शुरुआत करते हैं उस गीत से जिसके लिए पत्र भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। आप हैं लूथरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, महावीर वार्ड भाटापारा से अमृता यादव, पार्वती यादव, ईश्वरी, लक्ष्मी यादव, कुमारी प्रेरणा, डिम्पी यादव, हदबंद नेवदा से हैं दुलारी यादव, प्रियंका, प्रीति, उमेश्वरी यादव और सुनती यादव, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, जितेंद्र साहू, मारवाड़ी कुआं भाटापारा से सिया राम, अश्वनी पांडे, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, बेबी अनिशा, रायपुर से नीलू मेघ। आप हैं ग्राम रसेड़ा कलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या साहू, डिकेश साहू, वासु, डॉली, पूर्वेश साहू, महारानी चौक भाटापारा से परश शर्मा, निधि शर्मा, रुचि और किरण शर्मा,

सिद्ध बाबा भाटापारा से कामता यादव, सोनमत यादव, मन्नू कुमारी निकिता यादव, महमदपुर भक्तिन बाजार से रमेश केवर्त, राजकुमारी आरती केवर्त ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। और आप हैं ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भोरी साहू, संतोषी, दुलरिन रेखा, मोतीलाल साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म आया सावन झूम के से लिया गया ये गीत।

कार्यक्रम में अगले गीत के लिए पत्र भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। आप हैं हटौत बाजार से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजकुमारी पटेल। बसीवार जिला कोरबा से शिवनारायण नामदेव, सविता देवी, रामप्रसाद, कुमारी आंचल चंचल, चांदनी, विनय भाई, मनोज कुमार कंवर। शिवाजी चौक राजिम से हैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पिंडरा से दीपक कुमार श्रीवास्तव, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा, रूही, दिव्यांश और लवी श्रीवास्तव। हथनीपारा भाटापारा से दुर्गा दुर्गेश्वरी, गीतू, मुकेश, हरीश, किरण और दुलारी वर्मा। शांतिनगर भाटापारा से हैं रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान, नासिर खान, अयाज अल्फेज खान, सादिया खान, हजरिन निशा। बिल्हा से शेख नासिर, महज बिन बानो। देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, मयाराम रजक, पुनेश्वर रजक, फानेश्वर रजक, मुकेश कुमार, हाव्या टानिया रजक। मोती गार्डन भाटापारा से मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार, चिंटू झेरिया, युग कुमार झेरिया। भाटापारा से राम कुमार राउत, अमरीका, गणेश, कार्तिक।

हीरा मणि वर्मा, पारस मणि और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, दतरंगी भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र वर्मा, बावली मर्राकोना से उत्तम कुमार कौशिक, बिहारी लाल कौशिक, हरीश कुमार, शिवम कुमार कौशिक, नर्मदा धाम सुरसुली बालोद से कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र यादव और योगेश यादव ने पत्र भेजा है। और आप हैं तेलीपारा बिलासपुर से रज्जन साहू, बेबी शानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास, अनीता श्रीवास और सुशील देवांगन।

0: ना कोई मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
0: आपकी रक्षा में पूरी।
2: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं उस गीत को जिसके लिए पत्र भेजा है नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामनी वर्मा ने। बेमेतरा से हैं सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी। रुआबांधा शनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, श्रेया जैन, सौरभ जैन, शौर्य और शुभम जैन। बनियापारा धमतरी से हैं रामचंद माखीजा, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति और उनका पूरा परिवार। आप हैं भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ, नीरज रावत। बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया और केशव पटेल। पटपर भाटापारा से मोतीलाल पटपरिहा, संतोष कुमार यादव, मुंडुल यादव और ग्राम सूरजपुरा से सुरेंद्र कुमार यादव, श्रीमती प्रीति यादव, योग्य कुमार और मोक्ष कुमार यादव।

0: मोहम्मद रफ़ी मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी पसंद का ये अंक यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप भी शामिल हो सकते हैं, अपने पसंद के गीत सुन सकते हैं। इसके लिए पोस्टकार्ड पर लिख भेजिए अपने पसंद के गीत का नाम, फिल्म का नाम और आप कहां से भेज रहे हैं और पसंद करने वाले श्रोता साथियों के नाम। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर है 49, आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर नूतन कॉलोनी छत्तीसगढ़, पिन कोड है 495006। और अब कार्यक्रम में आइए जानते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर एक बार फिर से।
1: नमस्कार, ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर कार्यक्रम में नए संदेशों के साथ, नई सूचनाओं के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले की प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग या मुख्य जिला मार्ग सहित शहर के प्रत्येक चौक चौराहों से लेकर गांव गांव में भी यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। आप सभी से अनुरोध है सुगम एवं सुरक्षित यातायात के लिए हमेशा यातायात नियमों के अनुसार ही चले। मित्रों, आज की स्थिति में जब सभी सड़कों में तमाम प्रकार के वाहनों की भरमार है, ऐसे में सड़क में सुरक्षित चल पाना एक चुनौती से

0: कम नहीं है। भाग दौड़ के परिवेश में सबको जल्दी है, इसलिए कोई धीरे नहीं चलना चाहता। सभी में धैर्य का अभाव है। ऐसे में तनिक भी चूक बड़ी से बड़ी सड़क दुर्घटना का कारण बनती है। किंतु यदि हम इन बहुत छोटे छोटे सावधानियों को अपना कर चलें, तो बड़ी से बड़ी सड़क दुर्घटना से भी बच सकते हैं। जैसे प्रायः सभी सड़क दुर्घटनाओं का मूल कारण वाहनों का तेज रफ्तार होना पाया गया है। अतः अपने वाहनों को बेतहाशा कभी न भगाएं, सीमित वेग में चलिए, सुरक्षित घर भी पहुंचिए। इसी प्रकार विभिन्न चौक चौराहों में लगे यातायात संकेतों का 100% पालन कीजिए। प्रायः देखा जाता है लोग चौक में रेड सिग्नल में रुकते तो हैं, किंतु रेड से ग्रीन सिग्नल होने के 5-7 सेकंड पूर्व ही आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ही हरा सिग्नल से लाल सिग्नल होने के 5-7 सेकंड बाद भी लोग आगे बढ़ते रहते हैं। यही कारण है कि सिग्नल जंप के अंतर्गत 2000 रुपए का चालान आता है, तब अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि कैमरा 1 सेकंड की भी छूट नहीं देता। वैसे ही लोग शॉर्टकट के चक्कर में कई स्थानों में गलत दिशा में चले जाते हैं, इसे भी यातायात का कैमरा बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। फौरन आपकी साफ सुथरी फोटो के साथ 2000 रुपए का चालान आपके घर भेजने में कोई देर नहीं करता। इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि जाने अनजाने यही गलती दूसरी बार भी हो गई तो अगला चालान 5000 रुपए का होगा, अर्थात 2 चालान 7000 रुपए का। सतर्क रहिए, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, ये था आज का ट्रैफिक अपडेट सा बिलासपुर का पुनः प्रसारण।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। दिन के 11 बजे हैं। आई श्रोताओं, सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंदकुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी ने।
2: आपने लिखा है, सफलता हमेशा आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है, केवल अवसरों की तलाश करते रहने से नहीं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। इसके द्वारा सच में हम सबों को प्रेरणा मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो संदेश के क्रम में आज हमें पहला संदेश मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा।

0: विराट, तेजस्वी, गौरव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
1: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
0: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
1: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी।
1: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आप सभी श्रोताओं का प्रेरक लघु कथाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है।
0: जी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के एक प्रसंग पर। ये अत्यंत प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
1: हम जानेंगे कि उनके शिक्षक की प्रेरणा ने किस तरह उनकी जिंदगी बदल दी।
0: हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बाल्यकाल में बड़ी गरीबी देखी।
1: उनके पिता नाविक थे और वे अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करते थे।
0: जब वे रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे।
1: कक्षा में कई विद्यार्थियों की तरह कलाम भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। शिक्षक ने इसका हल निकाला।
0: तो हल उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि वे सभी बच्चों को समुद्र तट पर ले गए।
1: जी।
0: वहाँ उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि वे अपने पंख कैसे फैलाते हैं, हवा का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हवा में दिशा बदलते हैं।
1: इस प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने बालक कलाम के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
0: बाद में श्रोताओं, उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि उसी दिन उनके मन में उड़ान और वैमानिकी के प्रति गहरी रुचि जागी।
1: जी।
0: यही रुचि आगे चलकर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियर, वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन बनने की दिशा में ले गई।
1: जी।
0: उनके मन में एक अदम्य इच्छा जाग गई कुछ कर गुजरने की। तभी तो उन्होंने कहा था,
1: सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
0: जी हाँ श्रोताओं, एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है। केवल किताबों से ही नहीं लेकिन अनुभव से भी गहरा ज्ञान मिलता है। छोटी सी प्रेरणा भी भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती है।
1: श्रोताओं, आज के प्रसंग में आपने शब्द सुना वैमानिकी, इसका अर्थ है विमान उड़ाने का विज्ञान।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी मनचाही पुस्तकों को वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहाँ अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो 8800440559 है हमारा IVRS नंबर। हमें आशा है कि ये नंबर आपको भी याद हो गया होगा। और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मैया मैं नहीं माखन खायो।
1: ये कार्यक्रम सूरदास जी द्वारा रचित एक सुंदर भक्ति दोहे पर आधारित है जिसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से सफाई देते हुए कहते हैं कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। कार्यक्रम में इस दोहे को संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है विष्णु नारायण भातखंडे।
1: ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के प्रकांड विद्वान और प्रलेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान की सविस्तार जानकारी देता है।
2: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है।
3: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के रूप में जानती है।
2: भारतीय संगीत की तुलना

0: एक विशाल बट वृक्ष के समान है, जिसकी शाखाओं में लोक संगीत, जनजातीय संगीत और शास्त्रीय संगीत प्रमुख हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य दो भाग हैं, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत।
1: कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत को कहते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय संगीत है। जो स्थान दक्षिण भारतीय संगीत में पुरंदर दास जी का है, वही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उत्तर भारतीय संगीत में है। वे हिंदुस्तानी संगीत के प्राणदाता माने जाते हैं।
0: महान संगीतज्ञ श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र राज्य के बालकेश्वर नामक गांव में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जन्म लेते ही जब वो रोए तो दूर कहीं से आती बांसुरी की मीठी धुन सुनकर वो एकदम शांत हो गए और मुस्कुराने लगे।
1: भातखंडे जी के माता पिता भी संगीत प्रेमी थे। इस घटना से उन्हें भी ये भान हो गया था कि बालक में असाधारण रूप से संगीत की प्रतिभा है। स्कूली जीवन के दौरान ही उन्होंने स्कूल और राज्य के स्तर पर आयोजित कई संगीत और नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते।
2: श्रोता देवियों, सज्जनों और बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच संगीत की दुनिया में उभरते एक अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली तरुण हैं विष्णु नारायण भातखंडे। अनुरोध है कि मंच पर पधारें और अपने अनूठे गायन से सभा को शोभायमान करें विष्णु नारायण भातखंडे।
3: लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति।
0: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि छात्र जीवन में ही उन्होंने श्री वल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। इसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेलबागकर मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की।
1: कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने बंबई, जो आज मुंबई कहलाता है, में वकालत भी की, लेकिन संगीत साधना को भी अपना समय देते रहे।
0: धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आने लगा कि उन दिनों प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत में कुछ बुनियादी त्रुटियां आ गई हैं।
1: उन्होंने पाया कि प्राचीन भारत का संगीत लिपिबद्ध और लिखित सामग्री पर आधारित था, लेकिन मध्ययुगीन भारत में संगीत के प्रलेखन की ओर संगीतकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थीं। उनकी इच्छा थी कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए कोई ठोस पाठ्यक्रम हो और इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जाने।
0: उन्होंने देश के अन्य बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क किया। इन कलाकारों से प्राप्त जानकारी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उर्दू के संगीत ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया और उनकी स्वर मालिकाओं की बारीकियों को समझा।
1: इस सिलसिले में वे महाराष्ट्र की गायनोत्तेजक संगीत मंडली में शामिल हो गए और उस समय के अली हुसैन खां, रायोजी वेलवागकर और विलायत हुसैन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के संपर्क में आए। अक्सर वे इन उस्तादों से मिलते और संगीत पर गहन विचार विमर्श करते। एक दिन की बात है।
4: प्रणाम गुरुदेव।
5: प्रणाम प्रणाम। आइए भातखंडे जी, उस दिन उल्लास नगर संगीत महोत्सव में आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा।

0: हिंदुस्तानी संगीत की स्थिति के बारे में आपकी चिंता बड़ी प्रासंगिक है।
1: जी गुरुदेव, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि ऋतुओं पर, प्रकृति पर, त्योहारों पर, भक्ति पर और लगभग सभी विषयों में संगीत रचनाएं तो बहुत हुई हैं और उनका श्रृंगार भी अनोखा है, लेकिन गुरुदेव हमारे पास वे रचनाएं सुरों और कथ्यों में लिपिबद्ध नहीं है। और यदि ऐसा ही होता रहा तो
0: हमारी गरिमामयी संगीत विधा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी।
1: जी गुरुजी, और यही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में दो कार्य करने होंगे। पहला कार्य होगा संगीत रचनाओं की कथ्य सामग्री का संग्रह करना और दूसरा स्वर लिपि लिखने की जो परंपरागत पद्धति है उसमें थोड़ा और सुधार करना, ताकि उन्हें सुगमता से पढ़ा जा सके और वे सर्व सुलभ हो सके।
0: ये तो बहुत ही सुंदर विचार है, मैं आपकी इस पहल का समर्थन करता हूँ। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भातखंडे जी।
1: धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए।
2: फिर क्या था, ऋषि मतंग और ऋषि भरत द्वारा विकसित प्राचीन काल की पुरानी स्वर लिपि की लेखन पद्धति में भातखंडे जी ने थोड़ा सुधार किया, जिसके द्वारा संगीत की लय, ताल, मात्राएं, कोमल और शुद्ध स्वरों का चढ़ाव उतार, आलाप इत्यादि को आसानी से दर्शाया जा सकता था।
3: संगीत रचनाओं के संकलन हेतु अक्सर भातखंडे जी दूर दूर की यात्राएं करते और संगीतकारों से निवेदन करते कि वे उन्हें उनके रचनाओं का संग्रह करने की अनुमति दें, लेकिन कई संगीतकार उन्हें रचनाएं देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता था, आइए जानते हैं।

0: अरे अरे अरे भाई रुको रुको, कहाँ चले आ रहे हो? हैं देखते नहीं, जगह नहीं है।
1: मैं देख रहा हूँ श्रीमान, लेकिन
0: लेकिन क्या
1: श्रीमान? मैं उस्ताद जी का संगीत सुनने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ।
0: तो
1: मेरा मतलब है दूसरे नगर से आया हूँ। आप तो इस समारोह के आयोजक लगते हैं।
0: हाँ?
1: यदि कृपा पूर्वक मंच के आसपास या पर्दे के पीछे ही मेरे बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो पाती तो।
0: बड़े संगीत प्रेमी लगते हो, तभी तो इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलो, तुम्हें मंच के ठीक पास बैठाने की कोशिश करता हूं।
1: जी जी, वैसे मंच के पर्दे के पीछे भी चलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी।
0: आओ चलो।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो सुना आपने, दरअसल होता ये था कि ऐसी स्थिति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इन उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते तथा कथ्य और स्वर लिपियां लिखा करते थे। इसके आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और बाद में बाकायदा उन संगीतकारों को श्रेय भी दिया।
3: भातखंडे जी स्वयं भी चतुर पंडित के छद्म नाम से गीत रचना करते थे। गीत मालिका और क्रमिक पुस्तक माला में उनके स्वरचित 250 के लगभग गीत हैं। भातखंडे जी ने कठिन प्रयत्नों से एकत्रित पुरानी प्रचलित तथा अप्रचलित गायन सामग्री को क्रमिक पुस्तक माला के 6 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। वे स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए संग्रहों को लेकर प्रकाशकों के पास जाते।
1: प्रकाशक महोदय अंदर बैठे हैं क्या?
4: जी हाँ, अंदर ही बैठे हैं।
5: आइए पंडित जी, आइए, अंदर आ जाइए।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
5: लग रहा है आज फिर कुछ छपाई की सामग्री लेकर आए हैं।
1: जी हाँ जी हाँ, आज क्रमिक पुस्तक माला का 6वां संस्करण लेकर आया हूँ।
2: भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का सिलसिला चलता रहा। सन 1910 में उन्होंने स्वर मालिका प्रकाशित करवाई। ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थीं। सन 1911 में अष्टोत्तर शत ताल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नाम

0: नामक गीत संग्रह 3 भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे।
1: वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, मद्रास जैसे संगीत संपन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकट मुखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला।
0: उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित और वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है जिससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप में देखा जा सका।
1: आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936 को निधन हो गया। उनका धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों की स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की
3: लयात्मक प्रस्तुति।
2: शीर्षक है
3: अभी न होगा मेरा अंत।
2: अभी न होगा मेरा अंत। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ
1: जगबंधु
0: कुसुमलता
1: और फैजान के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण अभी किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। 11:55 तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण करेंगे।

जफर, गोरखपुरी का कलाम आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज में। एल्बम तस्कीन, छाया गांगुली की आवाज, पयाम सईदी के बोल।

तस्कीन एल्बम का ये गीत था छाया गांगुली की आवाज में, पयाम सईदी का कलाम था, मधुरानी की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं विविध भारती का कार्यक्रम रंग तरंग।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के एक कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। दिन के 11:55 होने को हैं। अब हम रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: प्रादेशिक समाचार,
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लगातार हो रही भारी वर्षा और मौसम विभाग के रेड और येलो अलर्ट को देखते हुए सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। आदिम जाति विकास विभाग द्वारा अगले 6 महीने में 150 नए आश्रम छात्रावास भवनों का निर्माण किया जाएगा और अगले साल हज जाने वाले लोगों के चयन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की गई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में लगातार हो रही भारी वर्षा और मौसम विभाग के रेड और येलो अलर्ट को देखते हुए सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और संबंधित विभागों के अधिकारियों से संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी रखने तथा बाढ़ और जलभराव की आशंका वाले इलाकों में समय पर राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने को कहा है। इस बीच बलौदाबाजार में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। तुरमा गांव में गुरुवार रात को महिलाओं समेत 4 ग्रामीण बाढ़ में फंस गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही नगर सेना की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सिकासर बांध से पानी छोड़े जाने के कारण राजन क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हैं। गरियाबंद जिले के देवभोग इलाके में उदंती नदी पर बन रहे पुल का हिस्सा तेज बहाव में ढह गया। नारायणपुर जिले के बालबड़ा स्थित BSF कैंप में पानी भरने से जवानों को छत पर शरण लेनी पड़ी। रायपुर, धमतरी और गरियाबंद जिले में नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया है। मौसम विभाग ने आज दक्षिण छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में अधिकांश स्थानों और मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को दिल्ली के गुड़गांव स्थित मेदांता

0: अस्पताल पहुंचकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। गौरतलब है कि प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव यूपी में हुए सड़क हादसे में घायल हुए थे, जिसके बाद झांसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें बेहतर उपचार के लिए कल दिल्ली रेफर किया गया। आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कल विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और प्रेरणादायी वातावरण उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में उन्होंने अगले 6 महीने में 150 नए आश्रम छात्रावास भवनों का निर्माण पूरा करने और सितंबर तक लगभग 1,000 पोषण वाटिकाएं तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्रावासों के संचालन की गुणवत्ता सुधारने और अधीक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर दिया। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए ऑनलाइन डिजिटल रेंडम चयन प्रक्रिया पूरी कर दी है। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मिर्जा एजाज बेग ने बताया कि राज्य से 787 यात्रियों का चयन किया गया है, जबकि 241 आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। चयन सूची हज कमेटी की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। चयनित यात्रियों को यात्रा की पहली किश्त 10 अगस्त तक जमा करनी होगी। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि वीएसके ऐप में आ रही तकनीकी दिक्कतों के कारण किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और तकनीकी टीम को 15 अगस्त तक ऐप की सभी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों के सुझाव के आधार पर वीएसके ऐप को और बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश में ज्वाइन BJYM सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि अभियान 23 जुलाई से शुरू हुआ है, जो 20 सितंबर तक चलेगा। आगामी दिनों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लगातार हो रही भारी वर्षा और मौसम विभाग के रेड और येलो अलर्ट को देखते हुए सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। आदिम जाति विभाग द्वारा अगले 6 महीने में 150 नए आश्रम छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा और अगले साल हज जाने वाले लोगों के लिए चयन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: हिंदी में प्रादेशिक समाचार अभी रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। दोपहर के 12 बजे हैं। शाम 5 बजे तक अब हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण करेंगे।
2: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने अपने मंत्रालय से संबंधित फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 22वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में बयान दिया। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। हंगामा के जारी रहने पर सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर डाली गई बाधा पर चिंता भी व्यक्त की।
3: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
2: लोकसभा की कार्यवाही एक स्थगन के बाद अब जारी है।

0: इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और शारीरिक रूप से मारपीट की। परिवार वालों ने यह भी दावा किया कि इस घटना में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। भूटान नरेश जिग्मे खेसा नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच विकास और सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में भूटान नरेश ने विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की सराहना करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पूबी लालछन जोवा ने कहा है कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री लालछन जोवा ने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली रूप से बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 103 अंक बढ़कर 78031 जबकि निफ्टी 44 अंक बढ़कर 24361 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

के बोलों को सुर में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे थे पारस मणि फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। श्रोताओ, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने सजाए हैं मोहम्मद रफी के गाए नगमे।

आप सुन रहे थे वापस फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: मोहम्मद रफी को आपने सुना फिल्म दोस्ती में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत था श्रोता।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
5: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
4: सखी सहेली?
5: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
4: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
6: सखी सहेली।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

लाल किला फिल्म में आपने सुना मोहम्मद रफी को, बहादुर शाह जफर की लिखी ये इबारत थी, एस एन त्रिपाठी की तर्ज थी। इंदीवर का लिखा गीत आपको सुनवाते हैं कल्याण जी आनंद जी की तर्ज, आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजें, फिल्म कुर्बानी।

0: और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रफ़ी की आवाज़ में हकीकत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कैफी आज़मी की रचना थी, मदन मोहन का संगीत था नील कमल। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, साहिल लुधियानवी की रचना, संगीत रवि का।

0: रफी के गाए फिल्म नील कमल के इस गीत के साथ ही श्रोताओ यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। श्रोताओ, भारतीय सिनेमा के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की आज पुण्यतिथि है और सुरीला सफर कार्यक्रम को आज हमने मोहम्मद रफी की याद और आवाज से सजाया है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का। आपको लॉग ऑन कर लेना है www.facebook.com/vbsmumbai और अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं इस पते पर आप भेज सकते हैं। मोहम्मद रफी की जब बात आती है श्रोताओ, तो सब कुछ जैसे मोहब्बत के फसानों में ढल ही जाता है। उनके जिंदा दिल गीतों को हमने सुना ही नहीं बल्कि एक जिंदगी जी है इन गीतों के साथ। चलिए एक बार फिर हम और आप बन जाते हैं इन गीतों के हम सफर और अब पढ़ देते हैं वो इबारत जो आज हमने फेसबुक पर पोस्ट की है। तो ये कुछ मोहम्मद रफी साहब की याद से लबरेज है उनके

गीतों की इसमें याद भरी है। ये इबारत है कि वो आवाज़ जिसका आगाज और अंदाज अनंत है, बनाने वाले ने सात सुरों के ताल को जब सजाया होगा। मधुबन से खुशबू, चमन से बहार, नदियों से रवानी, कलियों से नफासत, रात से तन्हाई, सितारों से रोशनी, मोतियों से खनक, डालियों से लचक और चांदनी से नूर की इल्तिजा की होगी। फिर ये रूहानी आवाज बनाकर कहा होगा, चश्मे बदूर दूर रहकर भी आ जा रे की वो पुकार, जिसे छू लेने को दिल चाहे। स्वर साज की लय पर मन वादे और प्यार का चर्चा लिए, झूमती ये तान चौदहवीं के चांद को पहलू में लिए, आवाज देती है प्यार से, पास बिठाती है और कहती है, क्या तुम मुझे भूल पाओगे। और आज तरह दे हैं इसी अजीम फनकार के, जिसे दुनिया ने शहंशाह है तरन्नुम तो कभी पैगंबर है मौसिकी कहा। श्रोताओं, इन गीतों को यानी मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए हुए गीतों ने हमारी खुशियां बांटी, हमारे गम बांटे। एक करिश्माई आवाज़ जो हमारे सैनिकों को भी जोश से भर देती थी। कव्वालियों में वो सुरों का उतार चढ़ाव, भक्ति रस में डूबी वो तान, के गज़लों में हल्की और नफीस मुर्कियां, तड़प उदासी बेरुखी प्यार और शरारती अंदाज का गीतों में अनोखापन। क्या क्या कहें, अल्फाजों के दायरे में रफ़ी साहब की गायकी को बांधना संभव ही नहीं। इस उन्मुक्त आवाज और उनके गीतों के गुलशन से चंद फूलों को चुनकर हमने कार्यक्रम सुरीला सफर आज सजाया है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का, तो भेजिए अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। श्रोताओं, आज मोहम्मद रफ़ी के गीतों को आप कितना याद करते हैं, उन्हें कितना प्यार प्यार करते हैं, ये सभी बातें आप लिख सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स शामिल किए जाएँ। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

ये फिल्म थी कोहिनूर और बड़ी ही खूबसूरत अभिनेत्री का नृत्य है शुदाव इस गीत में। तो आप अगर उन अभिनेत्री को पहचानते हैं तो आप ज़रूर लिखें। मोहम्मद रफ़ी की जो पहली फिल्म थी उस बारे में आप हमें ज़रूर लिखें कि ये कौन सी फिल्म थी जिसमें उन्होंने पहला गीत गाया था। वैसे आप सुन रहे थे कोहिनूर फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ये जो गीत था वो अपने आप में श्रोताओं बड़ा ही खूबसूरत राग हमीर कल्याण ठाट से उत्पन्न होने वाला चंचल और गंभीर प्राकृतिक श्रृंगार रस से भरा हुआ ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें 16 मात्राओं में ताल जो है वो बंधी हुई है, यानी त्रिताल की बात हम कर रहे हैं। और मोहम्मद रफ़ी साहब की गायकी के कौशल को अगर देखें तो जिस परफेक्शन के साथ उनका आलाप, ताल, तान और सरगम का प्रयोग उन्होंने किया है वो एक बड़ी ही उच्च कोटि की शास्त्रीय गायकी क्षमता को दर्शाता है। गाने की शुरुआत में आपने मनमोहक जो आलाप सुना वो सबको मंत्रमुग्ध कर देता है, और बीच में जो पखावज तबले के बोल और शास्त्रीय तराने का मिश्रण इस रचना को बड़ा ही दुर्लभ बनाता है, जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने पूरी शिद्दत और सटीकता के साथ निभाया है। और यही कुछ वजहें हैं कि जिससे मोहम्मद रफ़ी हम सबके दिलों में बिल्कुल सीधा उतर जाते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ भी ऐसी ही थी। जब रफ़ी साहब गाते थे तो लगता था जैसे कोई सीधे दिल से बात कर रहा हो। उनकी आवाज़ में दर्द भी था, दुआ भी, प्रेम भी और भक्ति भी। रफ़ी साहब एक गायक नहीं, एक एहसास थे, और एहसास कभी मरते नहीं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी सफ़र करते रहते हैं, बिल्कुल उनके अमर गीतों की तरह। आज रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर सादर नमन करते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने मोहम्मद रफ़ी साहब को नमन किया है और हम सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि मोहम्मद रफ़ी की खूबियों को शब्दों में बांधना बहुत ही मुश्किल है। हम किसी भी मूड में हो, मोहम्मद रफ़ी के गाने हमें सुकून देते हैं। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि कब आप मोहम्मद रफ़ी के गीतों को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके गीत गम में भी हमारे साथी हैं और खुशी में भी। कौन से गीत आपको अच्छे लगते हैं ये आप हमें ज़रूर बताएं। एक और श्रोता ने लिखा है कि उनका बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय भजन सुख के सब साथी फिल्म गोपी का इन्होंने याद किया है, और बहुत सारे गीतों को इन्होंने याद किया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब की वो जादुई आवाज, सांसों का सरगम जिन्हें प्रभु की अपार कृपा से भक्तिभावपूर्ण भजनों की माला पहनाई गई हो, बड़ी शिद्दत से तराशा कोहिनूर रहे रफ़ी साहब को पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पैदा। आपको

सूरज का ये गीत था, आपको संगीतकार बताने हैं श्रोताओं, हस जयपुरी कृष्णा थी, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में राग शिवरंजनी का प्रभाव इस गीत में नजर आता है। एक बहुत ही सुंदर संवेदनशील और रोमांटिक प्राकृतिक राग है ये श्रोताओं, जो दिल के तारों को झकझोर देता है। इस राग में अगर आप ध्यान देंगे तो सारे ग प ध स्वर लगते हैं। रफी साहब ने इस राग की कोमलता और ठहरी हुई मिठास को अपनी आवाज में जिस तरह से उतारा वो रूह को छू लेती है। और अगर इस गीत के आरोह अवरोह के फैलाव की बात करें तो बहारों फूल बरसाओ की जो उठान सीधे मध्यम और उच्च स्वर के सहज सफर के साथ होती है, जो सुनने वालों के मन में उल्लास भर देती है। गले की लोच की बात क्या कहें कि शब्दों का उच्चारण के जो साथ साथ मींद यानी सुरीला खिंचाव और गमक का प्रयोग इस गीत में किया गया, उसे ये शास्त्रीय दृष्टि से भी एक उत्कृष्ट रचना बन पड़ी है। बिना किसी अतिरिक्त आप देखेंगे कि भारीपन और बनावट के केवल भावनाओं की गहराई से इस राग को जीवंत किया है मोहम्मद रफी साहब ने। तो ये गीत आप सुन रहे थे और उनकी याद हम ताजा कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने गुल बलोच फिल्म की बात की है। जी हाँ, ये फिल्म थी और जो पहला रिकॉर्डेड गीत था सुनिए नी हीरिया नी, ये गीत था जो मोहम्मद रफी जी ने गुनगुनाया और ये रिकॉर्ड बन पड़ा। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मों के संगीत के कोहिनूर हैं मोहम्मद रफी जी, जिसकी आवाज एक अलग अंदाज बनकर हम सभी संगीत प्रेमियों के दिल में बस गई। हम जब भी मोहम्मद रफी जी का कोई दर्द भरा गीत सुनते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं, और ये उस जादुई आवाज का करिश्मा जो शायद ही दूसरे कोई गायकों में ऐसी काबिलियत होगी। ऐसे महान और दिग्गज गायक मोहम्मद रफी जी को विनम्र नमन। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उन्हें नमन किया है।

एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम खुशनसीब हैं कि हम रूहानी आवाज के दौर में जन्म हमने लिया है, वो आवाज जो हर किसी को हर तरह के गानों में सुकून देती है, तो आज बेमिसाल गाने सुनने को मिलेंगे। जी हाँ, उम्मीद तो यही करते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं, यूं तो बहुत सफर किए हमने, हर राह से कुछ सिखाया है, पर विविध भारती का सुरीला सफर दिल के सबसे करीब आया है, तो मिलते हैं। और एक और श्रोता लिखती हैं कि ब्रिज में होली खेलत नंदलाल, रवि साहब ने इस गीत में गजब का उत्साह और उमंग भरा है। शुरुआत में पारंपरिक जोगीरा सारा लारा की गूंज और उसके बाद रफी के खुले गले से निकला स्वर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर देता है। और इस गीत को पहचानिए, कौन है अदाकार?

फिल्म ससुराल का ये गीत था, हसरत जयपुरी का लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और ये जो गीत था श्रोताओं, राग यमन कल्याण ठाट पर आधारित शास्त्रीय लोक धुनों पर पहाड़ी राग पहाड़ी का मिश्रण आप सुन सकते हैं इस गीत में। राग यमन की वैसे जो प्रकृति होती है वो बड़ी ही खूबसूरत होती है। अगर मोहम्मद रफ़ी साहब की बात करें तो जो शुरुआती ऊपर सप्तक उन्होंने लगाए, यानी सा स्वर से बेहद कोमलता और नज़ाकत के साथ की है उन्होंने शुरुआत गीत के बोल। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को में उन्होंने जिस तरह अपनी आवाज़ की मिठास, ठहराव, मुर्कियाँ ये सभी इस्तेमाल किए हैं, वो हमारे दिलों में उतर जाता है। भाव और अवरोह की अगर बात करें, उतार चढ़ाव की बात करें, तो सुरीले वाद्य यंत्रों का प्रयोग इस गीत में नजर आता है, जिसके साथ रफी साहब की जो अलगाकारी है स्वसंवाद करता है ये गीत। अंतरे में जब ये प्रवेश करते हैं तो जो स्वर का विस्तार

और अदायगी का अंदाज है वो इतना सहज है कि तकनीकी रूप से शास्त्रीय होते हुए भी आम संगीत प्रेमियों की जुबान पर आसानी से चढ़ जाता है। तो भला बताइए कि ऐसे गीतों के लिए कौन से पुरस्कार हो सकते हैं? यही है कि हम सब मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों को इतना प्यार करते हैं और उनके गीत हमारे ज़िंदगी में हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम में इबारत जो है स्वयं उत्तरित है, सप्त सुर साधक संगीत के स्वयं सिद्ध जिनके लिए सुर संगीत मात्र सरगम नहीं अपितु स्वर साधना है। रूह को रूहानियत से रूबरू कराने वाले रफी साहब के राग रंगों से सजी सफर का इंतजार है। जी हाँ बिल्कुल, ये सफर तो आपके साथ ही पूरा होगा श्रोताओं। और एक और श्रोता लिखते हैं, आज की इबारत शहनशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी को समर्पित लग रही है। जी हाँ बिल्कुल समर्पित है। और एक और श्रोता ने लिखा है, संगीत सरगम रफी साहब की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि रफी साहब को हम अर्पित करते हैं। गीत लाजवाब जो बचपन से सुनते आ रहे हैं इनके, एक सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, आज की इबारत में नहीं किंतु फरमाइश अवश्य है। जी हाँ, ऐसे हजारों नगमे हैं जो मोहम्मद रफी साहब के हैं। आपको कलाकार बताने हैं।

अभिनेत्री साधना और मनोज कुमार पर फिल्माया गया अमानत फिल्म का ये गीत था। हमारे श्रोताओं ने इस गीत की डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोताओ, रवि का संगीत था, साहिर लुधियानवी की रचना थी। एक श्रोता ने लिखा है कि एक ऐसी आवाज जो सुख के पल में मन को सुकून से भर देती है और जब दुख मन को अवसाद में धकेलने लगे तो कहीं दूर रेडियो से आती रवि जी की आवाज का ये गीत मन रे तो काहे न धीर धरे बजने लगता है तो मन अनायास ही दुख को भूल कर आगे जाने की उम्मीद से सराबोर हो उठता है। रफी साहब की आवाज ऐसी कि लगता है स्वर्ग से कुछ समय के लिए कोई देवदूत पृथ्वी पर उतरकर हम सबको सुरीले जहां में छोड़कर फिर वापस चला गया, मगर आज भी वो आवाज हमारी सुबह को हमारी शाम को एक अनजाने सुख से भर देती है। रफी जी के लिए क्या कहें, उनके गीत हमारे लिए सरपरस्ती, उनकी आवाज जब रेडियो से आती है तो लगता है कोई बड़ा हमारे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहा हो। जी हाँ, ऐसा ही जो नगमा है मोहम्मद रफी साहब का है। और बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब रफी साहब के गीतों को हम गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, तो ऐसी यादें आप हमसे साझा कर सकते हैं कि क्या कभी आपने उनके गीतों को गुनगुनाया किसी महफिल में, किसी स्टेज शो में, या उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो होते थे जो ग्रामोफोन पर बजते थे उनकी जो यादें थी वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। श्रोताओ, यानी हम बात कर रहे हैं रफी साहब के गीतों की कलेक्शन की, तो आप इन बातों को भी हमसे साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि महफिल सजेगी आज मोहम्मद रफी साहब की आवाज से, कोहिनूर की मोती जैसा मधुर उस मिठास को सुनते हुए बड़े हुए और आज भी सभी की प्रेरणा स्रोत हैं और हमेशा उनकी आवाज गूंजती रहेगी, ऐसा हमारे श्रोता लिखती हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि आज 46 साल गुजर जाने के बाद भी गायक रफी साहब के इर्द गिर्द भी कोई हो। और इन्होंने मोहम्मद रफी साहब को फरिश्ता कहा है कि फरिश्ते कभी मरते नहीं तो अजर अमर रहते हैं। गायकी के मामले में रफी साहब तो वो एवरेस्ट हैं जिस पर फतेह पाना नामुमकिन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि एक ऐसी आवाज जो हमारी आत्मा में रची बसी है और जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं है, उसे भला हम कैसे भूल सकते हैं, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, इस गीत को उन्होंने याद किया है। इस गीत को आप सुनिए श्रोताओ, क्या ये गीत आपके दिल के करीब है, हमें जरूर बताइए। मोहम्मद रफी साहब की आवाज का एक अलग ही ये नशा है।

की महफिल, महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फों से कोई

जॉय मुखर्जी और आशा पारेख पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे लव इन टोक्यो फिल्म से। और अगले गीत में आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओं और संगीतकार बताने हैं। ये गीत जो आधारित था राग मिश्र भैरवी या दादरा अंग की खुशबू से सजा हुआ ये गीत हम कह सकते हैं। वैसे रफ़ी साहब की आवाज़ जो है इसमें एक इस गीत में अनोखी तड़प और नरमी नज़र आती है और जो एक फुसफुसाहट सी रूमानी एहसास लिए जो रफ़ी साहब ने इस गीत में घोला है बड़ा ही गजब का है श्रोताओं, जिसमें कि जो शुरुआती मुखड़ा है वो बड़ा कमाल का है, उसी की हम बात कर रहे हैं। अगर स्वरों के या उनके गले के ठहराव स्वरों के आरोह अवरोह की बात करें तो कभी दर्द ऐसा लगता है कि जैसे रोंगटे खड़े हो गए। वाद्य यंत्रों की अगर हम शैली की बात करें तो शंकर जयकिशन ने इसमें वेस्टर्न और इंडियन धुनों का बेहतरीन सम्मिश्रण किया है, लेकिन अगर गाने की बात करें तो इसमें आत्मा पूरी तरह से रफ़ी साहब के रसीले और लोचदार स्वरों पर टिकी है जो प्रेमी को बेचैन कर देती है और बहुत ही शालीनता और सुंदरता से दिल की बातों को बयान करती है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में महान मोहम्मद रफ़ी जी की पुण्यतिथि जो है उसके उसको समर्पित है। संगीत जगत का वो चमकता सितारा हैं जिसकी रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ सकती। आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां उनकी गायकी से प्रेरणा लेती रहेंगी। मोहम्मद रफ़ी जी केवल एक महान गायक नहीं बल्कि भावनाओं की वो अमर आवाज़ हैं जो हमारी हर धड़कन के साथ हमेशा गूंजती रहेगी। एक और श्रोता ने लिखा है कि उनकी जो जब उनकी पुण्यतिथि यानी कि जब आती है तो याद आता है कि रेडियो पर ये सुनाई दिया कि मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं रहे, तो उस वक्त वो कॉलेज में पढ़ा करते थे, उसकी यादों को उन्होंने ताज़ा किया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि भावनाओं के सच्चे शिल्पकार थे मोहम्मद रफ़ी जी। उनकी आवाज़ में प्रेम की कोमलता, भक्ति की पवित्रता, देशभक्ति का जोश था, दर्द की गहराई थी और खुशी की खिलखिलाहट भी। वे जिस अभिनेता के लिए गाते ऐसा लगता मानो वही अभिनेता स्वयं गा रहे हों, यही उनकी गायकी की सबसे बड़ी विशेषता थी। तो आप ये बताइए श्रोताओं कि मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ जो है आपको किस अभिनेता पर खास जचती हुई नज़र आती है और किस कॉमेडियन पर भी जो गीत उनके द्वारा गाया गया फिल्माया गया वो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कॉमेडियंस पर भी उनके बहुत सारे गीत फिल्माए गए हैं। खासकर हम बात करें महमूद साहब की, जॉनी वॉकर साहब की। तो

अभिनेता भारत भूषण पर फिल्माया गया बैजू बावरा फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज थी। नौशाद की तर्ज शकील बदायूनी की लिखी ये रचना थी। श्रोताओ, राग मालकौंस पर आधारित जो एक बड़ा ही शांत और आध्यात्मिक प्रकृति का रति प्रधान गीत भक्ति से भरा हुआ बन पड़ा है। हरिओम का जो उच्चारण है वो मंत्रवत और कर्णप्रिय आलाप जो शुरू होता है रफी साहब का, तो इसमें मन के जो भक्ति भाव होते हैं अपने आप ही जग जाते हैं। और जो सूक्ष्म कर्ण स्वर इसमें मींड का जो प्रयोग किया गया है वो अपने आप में बड़ा ही बेमिसाल आरोह अवरोह ठहराव मोहम्मद रफी साहब की आवाज का इससे नजर आता है। शास्त्रीय जो शुद्धता के साथ भावनाओं को गीतों को किस तरह से पिरोया जाता है ये इस गीत में बिल्कुल साफ झलकता है। उन्होंने बिना किसी भारीपन के कोमल स्वरों पर अद्भुत नियंत्रण रखते हुए इस गीत को गाया है और बड़े ही जो शब्द हैं वो संस्कृत निष्ठ और भक्तिभाव वाले हैं। तो ये गीत अपने आप में एक कह सकते हैं कि बड़ा ही कोहिनूर सा नगमा बन पड़ा है। अगले गीत में आपको पहचानना है कलाकार कौन से हैं और संगीतकार कौन है।

रफी साहब के कोई रिकॉर्ड्स क्या अभी आपने संभाल रखे हैं श्रोताओ, तो आप हमें बता सकते हैं। काजल फिल्म का ये गीत था, मीना कुमारी और राजकुमार पर फिल्माया गया, रवि का संगीत था। 1965 में आई ये फिल्म थी जिसमें ये गीत संगीतबद्ध किया गया रवि के द्वारा। क्लासिक रचना है ये, एक मोहम्मद रफ़ी ने अपने जादुई आवाज़ का कमाल दिखाया है इस गीत में। राग मालकौंस की हल्की मिठास और साहिर के लुधियानवी साहब के दार्शनिक शब्दों के साथ रफ़ी साहब की अगर आवाज़ को आप सुनेंगे तो गजल नुमा गीत को रूहानी गहराई और ठुमरी जैसा ठहराव उन्होंने दिया है, जो सुनने वालों को एकदम से कह सकते हैं कि बिल्कुल चकित कर देता है। श्रोताओं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हमारे पास आए हैं, तो आप बता सकते हैं रफ़ी साहब के गीतों के साथ आपकी क्या रूहानी यादें हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरों के जादूगर और शहनशाह मोहम्मद रफ़ी साहब की याद का दिन है, उनकी गायकी के बारे में लिखना मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मैं सिर्फ उन्हें रूह से महसूस करते हुए आज सिर्फ ध्यान से सुनना चाहूँगा और यही मेरी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि होगी। जी हाँ, ये तो है, लेकिन कार्यक्रम में तो साथ बने रहना है, इसलिए लिखना तो है ही आपको कि आपको मोहम्मद रफ़ी साहब के कौन से गीत बहुत अच्छे लगते हैं, कब आप इन्हें गुनगुनाते हैं और क्या आजकल जो मौसम है उस मौसम में कोई ऐसा गीत बरसात का है जो रफ़ी साहब की याद में आप अक्सर गुनगुनाते हैं उनका गाया हुआ। मुझे तो उनके गाए हुए कुछ गीत याद हैं जो बारिश के मौसम के बड़े ही गजब के हैं, तो आपको भी याद हों तो आप हमें बताइए। एक श्रोता और लिखती हैं कि महसूस होता है मानो हर पंक्ति में आज की इबारत पढ़ने से कि स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी जी की अमर आवाज़ की झलक समाई हो। आ जा रे चौदहवीं का चांद क्या तो मुझे भूल पाओगे, जैसे गाने भी उनकी यादों को और गहरा कर देते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं जब वर्ष 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान वीर सैनिकों की शहादत में देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों के परिजनों के लिए वर्ष 1966 में अपने साजिंदों के साथ सशरीर उपस्थित होकर पटना के माइनुल हक स्टेडियम में उनके आश्रितों के लिए धन राशि मुहैया कराने हेतु लाइव स्टेज शो किया था उन्होंने। इस लाइव शो को देखने के लिए मैं अपने परिवार के साथ गया था। वो उनका मुस्कुराता चेहरा और उनके द्वारा सुनाए गए सभी गीत एक से एक पढ़कर थे। वहां पर उपस्थित सभी श्रोताओं ने एक अच्छी खासी राशि उनकी झोली में डाल दी थी, और तो और महिलाओं ने भी अपने जो सोने की चूड़ियां थी, गले की चेन भी उन्हें उसमें दी थी, और उनके गीतों को हम सुनकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का दिन है। हम उन्हें विनम्र भावपूर्ण नमन करते हैं। कलाकार आपको बताने हैं, विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुन रहे हैं।

हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, तारिक और काजल, किरण पर फिल्माया गया, जो नजर आते हैं वैसे तारिक पर फिल्माया गया ये गीत था श्रोताओं। और राष्ट्रीय पुरस्कार इस गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को दिया गया। वैसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो फिल्म फेयर पुरस्कार हैं वो भी बहुत सारे अपने नाम किए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि जॉनी वॉकर और महमूद साहब पर आवाज़ रफ़ी साहब की बहुत फिट बैठती है। जॉय मुखर्जी, विश्वजीत राजेंद्र कुमार और किस किस के नाम लिखूं। रफ़ी साहब की आवाज़ हमें अच्छी लगती है शम्मी कपूर के ऊपर और धर्मेंद्र पर, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि रफ़ी साहब हर अभिनेता के हिसाब से गाते थे, मानो लगता था कि अभिनेता ही गा रहे हों। मुझे शम्मी कपूर जी पर फिल्माया गया उनका गीत बहुत पसंद है, लेकिन आपने ये तो लिखा नहीं कि कौन सा गीत आपको उन पर फिल्माया गया बहुत पसंद है। जी हाँ, आपका जो बहुत पसंदीदा गीत है नगमा, वो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ की अगर बात है तो हर अभिनेता पर फिट बैठती थी, ये उनके गले की विशेष खासियत थी। जी हाँ, और ये भी बात थी कि वो अभिनेता के तौर पर अपने गीत को अक्सर ढाल लिया करते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि 130 गीत एक रिकॉर्ड है जो फिल्माया गया जॉनी वॉकर पर। इन्होंने कुछ ही किस तरह से डिटेल लिखी है कि कॉमेडियन ने गाया तो कुछ ऐसा लिखा है इन्होंने, और हमारे तमाम श्रोताओं ने यही लिखा है ज़्यादातर कि रफ़ी साहब के जो गाए हुए गीत थे वो लगभग सभी अभिनेताओं पर फिट बैठते थे। अभिनेत्री मुम

सरताज का भी आज जन्मदिन है श्रोताओ, और ये जो गीत है वो उन्हीं पर फिल्माया गया है। आप बताएं कि ये खासी ड्रेस किसने डिजाइन की है।

शमी कपूर और मुमताज पर फिल्माया गया ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफी साहब के। वैसे श्रोताओं, बेशुमार गीत हैं जिन्हें भूल पाना और मोहम्मद रफी साहब को भुला पाना बहुत नामुमकिन है। एक और गीत आपकी नजर करते हैं मोहम्मद रफी साहब के लिए। अगर आपने कोई शेर लिखा हो, कोई नज्म लिखी हो, कोई बात लिखी हो, तो आप हमसे जरूर बता सकते हैं।

मोहम्मद रफ़ी साहब के अमर नगमे, अमर यादें, उनकी बहुत कुछ है श्रोताओं इनकी गायकी में। संगीतकार नौशाद ने लिखा है, गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरी के महल, झोपड़ी में भी गरीबों की तेरी आवाज़ है। अपनी मौसीकी पे सबको फ़ख्र होता है, मगर मेरे साथ ही आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्य स्मृति को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम था सुरीला सफ़र। आप सभी का साथ रहा श्रोताओ इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी प्रतिक्रियाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम से अब लेते हैं इजाजत, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 39वीं कड़ी।

0: बंग भंग विरोधी आंदोलन जब से शुरू हुआ तब से ही ब्रिटिशों में वंदे मातरम शब्द की जबरदस्त दहशत फैल गई। बंकिम चंद्र जी को अपेक्षित वंदे मातरम शब्दों का प्रभाव परिणाम अब दिखने लगा था। पाठशालाओं में, महाविद्यालयों में और सभाओं में वंदे मातरम शब्द के उच्चारण करने पर सजा होने लगी। ढाका के किशोरगंज महाविद्यालय में घटित ऐसा ही एक प्रसंग है। सरकारी आदेश के अनुसार यहां के प्रधानाचार्य ने अपने स्कूल के विद्यार्थियों को आदेश दिया, इस तरह वंदे मातरम कहने में समय बिताना मूर्खता का लक्षण है, ऐसा कॉपी में 500 बार लिखो। परिणाम उल्टा हुआ। वंदे मातरम ये शब्द कॉपी में 500 बार लिखे गए और मन में हमेशा के लिए अंकित हो गए। उल्टे ऐसा आदेश देने वालों के प्रति मन में घृणा पैदा हो गई।
1: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के छात्र जीवन का एक प्रसंग स्मरणीय है। 1905 के बंग भंग विरोधी आंदोलन के कारण वंदे मातरम की गूंज विद्यार्थियों तक पहुंच

0: गई थी। स्कूल माँ विद्यालयों के विद्यार्थी किसी की भी परवाह किए बिना स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ रहे थे। उसी समय विद्यार्थियों को जुलूस सभाओं में भाग लेने से रोका जाए तथा ऐसे छात्रों के नाम सरकार को बताए जाएं, ऐसा परिपत्र विद्यालयों में सरकार ने भेजा। रिसले सर्कुलर के नाम से कुख्यात ये परिपत्र डॉक्टर हेडग्यावर जहां पढ़ते थे उस नागपुर के नील सिटी पाठशाला में भी आया था। स्कूल की जांच के लिए आए सरकारी पर्यवेक्षक के दौरे के समय छात्रों ने तय किया कि गुप्त रूप से प्रदर्शन किया जाए।
1: प्रधानाचार्य के साथ सरकारी पर्यवेक्षक के मैट्रिक की कक्षा में आते ही वंदे मातरम की गर्जना से उनका स्वागत हुआ। ऐसा ही प्रतिसाद उन्हें सभी कक्षाओं में मिला। पर्यवेक्षक नाराज होकर गुस्से में चले गए। कक्षा के विद्यार्थियों की पूछताछ शुरू हुई। यह कल्पना केशव की थी, पर उसका नाम किसी ने भी नहीं बताया। नाम बताने तक विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से स्कूल से निकाल दिया गया। तब तो स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया। यह आंदोलन 1.5-2 महीने चला। आखिर स्कूल फिर से शुरू करने के लिए संस्था पर दबाव बढ़ने लगा। प्रधानाचार्य जनार्दन ओक ने छात्रों को एक समझौते का सुझाव दिया। गलती हुई ना, ऐसा पूछने पर केवल सिर हिलाकर हामी भरना है। अपना साल बेकार न जाए इसलिए विद्यार्थियों ने इसे मान्यता दी। केवल 2 विद्यार्थियों ने यह समझौता स्वीकार नहीं किया। उन 2 छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया। उनमें से एक इस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले केशव बड़ीराम हेडगेवार थे।
0: गदर पार्टी के संस्थापक और क्रांतिकारी डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खानखोजे के स्कूली जीवन में इसी नागपुर की नील सिटी पाठशाला में 1905 के आसपास ऐसा ही प्रसंग हुआ था। स्कूली जीवन में विद्यार्थियों के इस संघर्ष में अगुवाई करने वाले डॉक्टर खानखोजे ने क्रांतिकारी के लिए भारत छोड़कर जापान और कनाडा में शरण ली और आगे मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विशेषज्ञ और संशोधक के रूप में बड़ा नाम कमाया। घटना की समानता और स्थान की समानता के कारण डॉक्टर हेडगेवार के प्रसंग में दूसरा अडिग विद्यार्थी डॉक्टर खानखोजे भी हो सकते हैं।
1: 1905 से 1909 का कालखंड वंदे मातरम की दृष्टि से स्वर्णिम काल रहा। 1875 में गीत लिखने के बाद 1905 तक का समय इस गीत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, पर 1905 के बाद तो इतने वर्षों का अधूरा कार्य पूरा हो गया। इसी दौरान बंगाल में सशस्त्र क्रांतिकारियों के विद्रोह शुरू हो गए थे। एक ओर लॉर्ड मिंटो और भारत मंत्री मॉर्ले सुधार घोषित कर रहे थे। आनंद मठ और वंदे मातरम से सारा बंगाल भाव विभोर हो गया था। वंदे मातरम मंत्र के उच्चारण से भारतीयों की अस्मिता और भी जागृत हो रही थी। बंगाल के उन्मत्त न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने बम फेंका। गाड़ी में किंग्सफोर्ड न होने के कारण वो बच गया। इसी किंग्सफोर्ड ने ही सुशील कुमार सेन को कोड़ों की सजा दी थी। किंग्सफोर्ड प्रकरण में खुदीराम बोस दुर्भाग्यवश तीसरे दिन ही पकड़े गए, जबकि उनके साथी प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने खुद को गोली मारकर आत्म बलिदान स्वीकार किया। मात्र 19 वर्ष के खुदीराम बोस 19 अगस्त 1908 को हाथ में गीता लेकर शांतिपूर्वक फांसी पर चढ़ गए। उस समय उनके मुख में शब्द थे, वंदे मातरम। वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर चढ़ने वाले वे पहले क्रांतिकारी थे। बंगाल में क्रांतिकारी संस्थाओं का जाल बढ़ता ही जा रहा था। वंदे मातरम कहते हुए क्रांतिकारी कृत्य करने वाले युवा एक के बाद एक आगे आने लगे। सरकार के पास बंगाल का विभाजन रद्द करने के सिवा कोई विकल्प ही नहीं था।

0: लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन घोषित किया और लागू किया, पर उसी वर्ष उसे इस्तीफा देकर इंग्लैंड लौटना पड़ा। उसकी जगह आए लॉर्ड मिंटो ने भी विभाजन रद्द नहीं किया। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन भी बंगाल के नेताओं ने बंद नहीं किया। 1905 में शुरू किए गए आंदोलन का जोर 1907 तक बढ़ता ही गया। लॉर्ड मिंटो नीतिज्ञ था। विभाजन के समय कर्जन का असफल रहा उद्देश्य सफल करने के लिए उसने सुनियोजित प्रयास शुरू किए। 31 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में वहां के नवाब सलीमुल्लाह खान की अगुवाई में हुई और कर्जन का उद्देश्य सफल होने लगा। लॉर्ड मिंटो को भारत मंत्री मॉर्ले ने पूरा साथ दिया। 1910 के नवंबर में मिंटो की जगह लॉर्ड हार्डिंग्स की वॉइसराय के रूप में नियुक्ति हुई। बंगाल का विभाजन करने के कारण अंग्रेज राज सत्ता का भारतीय जनता ने विरोध किया, इसलिए जनता में उभरे असंतोष की लॉर्ड हार्डिंग्स को पूरी जानकारी थी। सत्ता में आते ही हार्डिंग्स ने ऊपर ऊपर से नरमी का रवैया दिखाना शुरू किया। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन का केंद्र बिंदु बनी अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता को दिल्ली ले जाने का फैसला किया और उसके साथ ही बंगाल का विभाजन रद्द करने का भी निर्णय लिया गया।
1: लगभग 6 वर्ष चला बंग भंग विरोधी आंदोलन अंततः सफल हुआ। इस आंदोलन में भी हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़े थे, इसलिए बंग भंग के अगले ही वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना होकर भी उसका बहुत असर उस समय आंदोलन पर नहीं हुआ था। बंगाल का विभाजन रद्द करने की सूचना लॉर्ड हार्डिंग्स ने 19 जुलाई 1911 को दी। ठीक 6 वर्ष पहले 19 जुलाई 1905 को ही बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन की पहली बड़ी सार्वजनिक सभा हुई। ठीक उसके 6 वर्ष बाद ही 7 अगस्त 1911 को बंगाल का विभाजन रद्द करने की ब्रिटिश हुकूमत से मंजूरी आई। यह विभाजन रद्द होने की घोषणा करने का बहाना बनाकर खुद पंचम जॉर्ज को भारत आमंत्रित किया गया। दिल्ली में एक विशेष दरबार लगाकर 12 दिसंबर 1911 को पंचम जॉर्ज ने बंगाल का विभाजन रद्द करने की घोषणा की। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध किए गए आंदोलन की यह विजय थी, जनता की विजय थी।

पर उससे भी बढ़कर ये प्रभाव था इसी आंदोलन के समय हथियार के रूप में उपयोग किए गए वंदे मातरम इन शब्दों का। इस आंदोलन के बहाने वंदे मातरम इन दो ही शब्दों में मौजूद आग की तपिश ब्रिटिश राज सिंहासन तक पहुंच गई थी। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन को दमनकारी तरीकों से कुचलते समय वंदे मातरम पर लगाई गई पाबंदी और प्रतिबंधों का कोई भी उपयोग नहीं हुआ। वंदे मातरम इन शब्दों की ताकत को इस आंदोलन के बहाने जनता ने पहचाना था और इन शब्दों के कारण आम जनता में बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण मातृभूमि के प्रेम के कारण ब्रिटिश सरकार और अधिक असहज होने लगी, अस्वस्थ होने लगी। आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम, एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 39वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
1: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जाँच करनी होगी।

0: कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद की आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
1: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
3: सदन की गरिमा के साथ सवाल किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
4: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन पे उनकी ड्यूटी लगी थी।

0: प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई @2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट है उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
1: झारखंड के भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र JPSC पेपर लीक और JSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से, भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छू रहा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि JPSC पेपर लीक मामला और JSSC जो भर्ती घोटाला उसकी CBI जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन मना लिया, CBI जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
1: आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे NewsOn AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल एसटीएफ ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पूबी लाल झंझोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरला, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
3: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए NDRF की 17 टीमें, SDRF की 33 प्लाटून और सेना के 6 कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वही मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
4: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण

0: में है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 2,68,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जबकि 13 जिलों में करीब 8 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खुर्दा जिले के कई गाँव को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्ति जनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर। आप सुन रहे थे, माफ कीजिएगा, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज़ों में शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।

0: नगमा निगार शकील बदायूनी मौसिकार रवि मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये गीत था। फिल्म थी प्यार किया तो डरना क्या।
1: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
2: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाते थे, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण त भवन सुयो विनायक करो ये नीति मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
1: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकी।

0: चार बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और हम आपको सुनवा रहे हैं फनकार मोहम्मद रफी के गाए नगमे।

0: संगीतकार रवि का सर्वदिकिया ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म थी चौदहवीं का चांद।
1: पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा।

0: ये रास्ते हैं प्यार के, फिल्म का गीत था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोलों को सुरों में ढाला रवि ने। श्रोताओ सदाबहार नगमे इस गीत के साथ ही अब संपन्न होता है आज के इस कार्यक्रम में। हमने आपको सुनवाए सदाबहार गायक मोहम्मद रफ़ी के गाए चुनिंदा नगमे। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है, दीजिए इजाज़त संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं, वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर

0: फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि संवाद वो सेतु है जो लोगों के बीच की दूरियों को कम कर संबंधों में प्रगाढ़ता लाता है। मधुर संवाद रिश्तों को नई ऊर्जा से भर देते हैं। आज तकनीक ने संवाद के अनेक साधन दिए हैं, जिसके जरिए हम दूर दराज रहकर भी अपनों से जुड़ सकते हैं। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ सोनाली पाठक। विविध भारती के स्टूडियो में आज मैं इंतजार कर रही हूँ आपके फोन कॉल का। देखते हैं आज किन किन सखियों से बातें होंगी। मेरा इंतजार हुआ खत्म, ये बजी घंटी और ये आया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: जी हेलो सहेली।
0: नमस्ते।
1: जी नमस्ते मैम।
0: किसने फोन लगाया है?
1: मैं इंदौर से जीनत परवीन बोल रही हूँ।
0: जी क्या करती हैं जीनत जी आप?
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: हाउसवाइफ हूँ। और घर में कौन कौन सदस्य हैं?
1: घर में बच्चे हैं तीन, लड़के तीनों, दो पढ़ाई करते हैं, पापा के साथ जॉब करते हैं।
0: अच्छा, तो आप बच्चों को पढ़ाती हैं, उनके साथ कैसे वक्त बिताती हैं आप?
1: बच्चे को पढ़ाती हूँ, घर पे भी स्टडी कराती हूँ और ये चलते ही रहता, रेडियो सुनती रहती हूँ।
0: अरे वाह। अच्छा ये बताइए आपके शौक क्या है, आपकी हॉबीज क्या है?
1: पेपर वेपर ये पढ़ाई करती हूँ, लिखने का शौक है, लिखती रहती हूँ कुछ भी।
0: अच्छा ये तो बहुत अच्छा शौक है, लिखना चाहिए। कविताएं लिखती है, कहानियां लिखती है या और कुछ लिखती है?
1: नहीं बस ऐसी कुछ भी, गाने वाने लिखती रहती हूँ।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अपना शौक एक हमें रखना चाहिए, जिसके कारण हमें जीवन में एक अलग ही आनंद की अनुभूति मिलती है।
1: जी और हेलो सहेली, सखी सहेली ये सुनती रहती है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं।
0: जी
1: बच्चों को भी समझाती हूँ और मेरे साथ वही होता है जो उसमें आ जाता है।
0: जी जी
1: रहता है।
0: यही बात है कि हम जो सुनते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाई देती है, वो हमें जीवन में अमल में लाना चाहिए।

0: जी
1: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मिस्टर इंडिया का सुना देते ना, कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात।
1: मिस्टर इंडिया फिल्म का गाना कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात।
0: जी
1: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, सत श्री अकाल दीदी जी।
0: सत श्री अकाल, बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: पंजाब से बोल रहे हैं जी। हाँ जी, लुधियाना जिले से।
0: अपना नाम बताइए
1: जी। रितु।
0: रितु जी ने लुधियाना से फोन लगाया है। जी रितु जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: जी मैं तो हाउसवाइफ हूँ
0: जी। और ये बताइए कि आपके शौक क्या क्या हैं?
1: जी शौक तो यही है जी, मैं तो ज्यादातर जी घर में ही कपड़े सिलाई करती हूँ, यही मेरा शौक है जी।
0: जी ये तो बहुत अच्छा शौक है, सिलाई करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आप क्या क्या सिलती हैं?
1: जी यही लेडीज सूट वगैरह, प्लाजो वगैरह, पैंट
0: जी। और नए नए डिजाइन के भी सिलती हैं आप?
1: नहीं दीदी वो मुझे नहीं आते, वैसे मैं गले के डिजाइन बना लेती हूँ।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और रेडियो कब सुनती हैं?
1: जी रेडियो तो जी मेरा हर वक्त ही चलता रहता है, मुझे जी बहुत पसंद है। मैं सुबह ही अपना ऑन कर लेती हूँ और शाम तक आपके सारे प्रोग्राम सुनती हूँ। हेलो सहेली पे, हेलो फरमाइश, मन चाहे गीत, जो भाइयों का आता है फौजियों वालों, वो भी बहुत अच्छा।

0: लगता है मुझे।
1: जी जी जी, तो बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
0: मंजिल फिल्म का मुझे रिम झिम गिरे सावन।
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते
0: नमस्ते। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैम। मैं रितु राजपूत बात कर रही हूँ
0: रितु राजपूत। कहाँ से फोन लगाया है
1: मैम। ग्राम सरायमगढ़ जिला अयोध्या से बात कर रही हूँ
0: बताइए। रितु जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैम। घर पर रहकर काम करते हैं।
0: घर के काम करती हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी कोई सहेली है जिससे आप दिल की बातें साझा करती हैं?
1: हाँ मैम है, एक दो लोग हैं
0: कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैम। हम साथ साथ हैं मूवी का, ये तो सच है कि भगवान, ये गाना सुनना चाहती हूँ मैम।
0: जी, हम साथ साथ हैं फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: किसने फोन लगाया है?
1: जी, मैं राजस्थान जयपुर से पूजा सोलंकी बात कर रही हूँ, और मैंने पहली बार कॉल किया है और मेरा फोन लग गया। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
0: चलो बधाई हो आपको। जी बताइए पूजा जी, क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड मिनिएचर आर्टिस्ट है। मैं उनके साथ हैंडक्राफ्ट का काम करती हूँ घर पर ही उनके साथ में।
0: क्या बात है, यानी दोनों मिलके आप काम करते हैं।
1: जी हाँ।
0: जी जी जी, अपने शहर के बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: मेरा शहर गुलाबी नगरी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत खूबसूरत है, और सब लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और विदेशों से भी बहुत लोग आते हैं। हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग, सिटी पैलेस, बहुत सारी जगह यहाँ देखने के लिए, घूमने के लिए और सब देखने के लिए आते हैं, और मुझे मेरा शहर बहुत पसंद है।
0: हमें भी आपका शहर बहुत पसंद है। बताइए अभी बारिश हो रही है या रुकी हुई है बारिश?
1: नहीं, बारिश तो बहुत नाराज हो रखी है, क्योंकि जब बारिश आती है तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ थोड़ी बारिश आ गई है, जब ज्यादा आती है तो सब लोग बोलते हैं नहीं बारिश अब नहीं आनी चाहिए, बहुत परेशान हो गए, सब जगह कीचड़ हो गया है, रोड टूट गई है, इसीलिए बारिश नाराज होकर अभी रुकी हुई है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि 2 या 3 दिन में वापस आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी तो मानसून आने वाला है और स्टार्ट भी होने वाला है और सावन भी लगने वाला है।
0: क्या बात है, ये आपने बहुत अच्छे विचार रखे कि हमें जैसे होना उस स्थिति में, उस परिस्थिति में खुद को ढाल लेना चाहिए। जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो हम शिकायत करने लगते हैं, और बारिश कम आती है तब भी हम शिकायत करते हैं, तो हमारी शिकायत करने की आदत जो है वो हमें दूर रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और बताइए रेडियो कब सुनती हैं, कौन कौन से प्रोग्राम आपको पसंद है?
1: मुझे रेडियो के सारे प्रोग्राम पसंद है, और मैं और मेरे हस्बैंड काम करते हुए सुबह से ही सारे प्रोग्राम सुनते हैं, और खास तौर से मेरे हस्बैंड मेरे शादी होने से पहले से ही प्रोग्राम सुनते थे, और उन्होंने मुझे ये आदत डाली है आपकी सखी सहेली और यादें उनकी उजालों की। और सुबह से, मतलब आप ये सोच लो कि सुबह से लेके हवा महल तक और उसके बाद भी छाया जी तक जितने भी प्रोग्राम आते हैं हम सारे सुनते हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, मनोज कुमार और जीनत अमान का मैं ना भूलूंगा सुनना है।
0: चलिए सुनवाते हैं रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार। किसने फोन लगाया है और कहाँ से फोन लगाया है?
1: मैं साधना गजवीये नागपुर से बोल रही हूँ मैम। जिंदगी
0: साधना जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: में कपड़े का बिजनेस करती हूँ।
0: अच्छा, यानी आप कपड़े का बिजनेस, यानी ऑनलाइन बिजनेस है या आपकी खुद की दुकान है?
1: हाँ मैडम, मैं घर से सेल करती हूँ,
0: अच्छा
1: खुद का बिजनेस है।
0: अच्छा किस तरह के आपका बिजनेस है कपड़े का?
1: कपड़े का साड़ी है, शर्ट पैंट पीस है, सब आइटम रखते हैं। मतलब
0: ये तो बहुत
1: जी
0: अच्छी बात है। और ये बताइए, अपनी दिनचर्या में व्यायाम को महत्व देती है?
1: मैं सुबह व्यायाम ही करती हूँ मैडम। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक एक्सरसाइज रहती है मेरी, फिर वाकर में 6 बजे से 8 बजे तक बाहर जाती हूँ, 2-3 किलोमीटर चलती हूँ।
0: अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि अपने जीवन में महिलाओं को कितने भी व्यस्त क्यों न हो, व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि जब व्यायाम करते हैं तो हम तंदुरुस्त रहते हैं। और रेडियो कब सुनती हैं?
1: दिन भर तो घर ही में रहते हैं, तो सुबह 8 बजे से हमारा समाचार से विविध भारती शुरू होता है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपने रेडियो से, या यूं कह लीजिए संगीत से दोस्ती कर ली है। जब हम संगीत से दोस्ती करते हैं तो हमारे जीवन में सुकून के पल आते हैं। तन के स्वास्थ्य के लिए आप व्यायाम करती हैं और मन के स्वास्थ्य के लिए आप संगीत सुनती हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: ओ मेरी जंग है वो जीत जाएंगे हम मां के ऊपर।
0: जी, चलिए सुनवाते हैं मेरी जंग फिल्म का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, अस्सलाम वालेकुम।
0: जी बताइए, कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से, मेरा गांव है नीलनाग वांगवास।
0: कश्मीर से कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: बिल्किस ने।
0: बिल्किस जी, जी बताइए,
1: हाँ।
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं ना रोजनी का शॉल बनाती हूँ। मैं
0: शॉल बनाती हैं जी।
1: हाँ
0: शॉल की बुनाई करती हैं जी।
1: हाँ दीदी।
0: और ये शॉल जो है साल भर बुनते हैं या किसी खास मौसम में ही बुना जाता है?
1: नहीं दीदी, आज भी बनाती हूँ, सर्दी में भी बनाती हूँ।
0: जी। चलिए बताइए, आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी मुझे फिल्म आँखें का गाना सुनना है। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
0: जी, मिलती है
1: हाँ दीदी।
0: जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: प्रेरणा शर्मा बोल रही हूँ मैं बैतूल जिले से,
0: जी
1: मध्य
0: प्रेरणा
1: प्रदेश
0: जी,
1: के।
0: जी प्रेरणा जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं समाज सेवा करती हूँ
0: अच्छा
1: और बस घर के जो भी अपने रहते हैं वो।
0: जी, जो सोशल वर्क आप करती हैं उस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जी मैं सोशल वर्क बच्चों संबंधी, महिलाओं संबंधी, पर्यावरण संबंधी ये करती हूँ। हमारी एक सोसाइटी है उसमें मैं महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी आप लोगों के चेहरे पर खुशियाँ लाने का काम करती हैं।
1: जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं यही।
0: जी, और जब सामने वाला हमारी बदौलत खुश होता है तो हमें अलग ही बहुत खुशी मिलती है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी, और अपने शहर के बारे में बताइए।
1: शहर तो हमारा बड़ा खूबसूरत है, हरियाली से भरपूर ट्राइबल एरिया है, ये बेसिकली आदिवासी क्षेत्र है जी।
0: जी
1: बाकी है, छोटा है लेकिन सब सुविधाएं हैं, शांति है, हर तरी लोग बहुत अच्छे हैं, सरल हैं लोग।
0: जी प्रेरणा जी, बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं घर फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ।
0: जी, घर फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है
1: मैं सुरेखा जोशी बात कर रही हूँ मुलुंड से।
0: जी। बताइए सुरेखा जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं क्लासेस लेती हूँ गाने के, और गाने के प्रोग्राम करती हूँ।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी
1: हाँ
0: बात है, यानी संगीत से
1: हाँ
0: जुड़ी हुई
1: हाँ
0: हैं आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपके विविध भारती की बहुत पुरानी श्रोता हूँ। आप सब आरजे की आवाज बहुत मीठी है, बहुत बढ़िया पेशकश रहती है सबकी।
0: जी शुक्रिया।
1: सब प्रोग्राम सुनती हूँ मैं। सुबह संगीत सरिता से शुरू होता है मेरा रेडियो, संगीत सरिता सुनती हूँ, फिर 8 बजे तक सुनती हूँ।
0: अरे वाह,
1: आज के मेहमान, सेहतनामा और बाकी गाने के सब प्रोग्राम रात को 10 बजे तक, 10:30 बजे तक चालू रहता है।
0: यानी
1: बिल्कुल
0: आपने रेडियो से दोस्ती कर ली है।
1: बिल्कुल, मेरा रेडियो सुबह उठते से ही पहले रेडियो ही रहता है हाथ में, उसके बाद मैं सब करती हूँ मेरा काम।
0: बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हमने रेडियो से ही संगीत सीखा है।
1: बराबर है, ये भी बात सही है मैडम, क्योंकि हम लोग इतने साल से सुन रहे हैं। मैं उज्जैन की हूँ एक्चुअली, मायका मेरा उज्जैन का है, और मेरी एक जुड़वा बहन है, तो हम दोनों सुबह उठते से ही पहले रेडियो लगाते थे, और बहुत से गाने फटाफट फटाफट लिख लेते थे। तो हम सब गाने लिख लेते थे और हम सब उसी से याद करते थे। हम दोनों ही गाते हैं, वो उसने MA किया है, मैंने BA किया है म्यूजिक में, तो हम दोनों ही प्रोग्राम करते हैं, और सब गाने विविध भारती से सुन के ही हमने याद किए हैं।
0: यानी रेडियो से जुड़ी आपकी कितनी खूबसूरत, कितनी सुनहरी यादें हैं। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे अनुपमा का गाना सुनना है।
0: चलिए सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मैं स्वाति पाथे बोल रही हूँ थाने से।
0: जी स्वाति जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: वैसे बाय प्रोफेशन मैं फैशन डिजाइनर हूँ, तो इसी से रिलेटेड मेरा बिजनेस है।
0: अच्छा, यानी किस तरह का बिजनेस है?
1: मेरा ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें मैं हर तरह का, जैसे अपने देश में हर तरह का हैंडलूम है, हैंडलूम की बड़ी रिच परंपरा है हमारे पास, तो मैं ऑल हैंडलूम साड़ीज में डील करती हूँ। होम लिनन है प्लस रेडीमेड गारमेंट्स भी हैं।
0: जी, यानी ऑनलाइन है, यानी आप घर पे रहकर ही काम करती हैं।
1: हाँ जी, मैं घर पे रह के अपना घर संभाल के ही काम करती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात बताइए स्वाति जी, कि
1: जी
0: इसी महीने हम अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाते हैं, तो दोस्त का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: सोनाली जी, दोस्त तो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं हमारी जिंदगी का। रिश्तेदार तो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, राइट? कि दोस्त जो होते हैं उनको हम चुनते हैं,
0: जी
1: जिनसे हमारी वेवलेंथ मैच होती है, जिनसे हमारे विचार मिलते हैं, और जो हमारे सुख दुख को बड़ी आसानी से बिना कहे समझ जाते हैं, वही दोस्त होते हैं।
0: जी सचमुच दोस्त, जिनके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, दोस्ती घनिष्ठता से जो लोग दोस्ती निभाते हैं, वो सचमुच बहुत भाग्यशाली होते हैं। जी
1: सच में, बिल्कुल सच कहा आपने।
0: जी
1: एक चीज और मैं कहना चाहूंगी सोनाली जी, कि जैसे दोस्त तो हमारी जिंदगी में बहुत ही जरूरी होते हैं, और बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके जिंदगी में बड़े पुराने अपने स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के दोस्त होते हैं,
0: जी
1: है ना? लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो हमारे आसपास प्राणी होते हैं
0: जी
1: वो भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं या होते हैं।
0: जी
1: ऐसे ही मेरा भी एक बहुत प्यारा सा मित्र है, छोटा सा, मेरा बिल्ला जिसको हम सिम्बा कहते हैं। सचमुच उसने मेरी लाइफ का सुख तो बहुत ही अच्छे तरीके से बांट लिया है।
0: जी यानी ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मनुष्य से ही दोस्ती हो, प्राणी मात्रों से हम दोस्ती कर सकते हैं, प्रकृति से दोस्ती कर सकते हैं, संगीत से दोस्ती कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: तो आपका दिन का बिल्ला है, उसके साथ में बहुत प्यारे अंदाज में गुजरता होगा।
1: बहुत अच्छे से, मतलब जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनल लव,
0: जी
1: वो हम इन लोगों के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं कि क्या होता है एक्चुअली,
0: जी तो हम
1: बहुत
0: सभी
1: ही
0: को
1: प्यार।
0: ये सीख लेना चाहिए कि जब भी हम कोई खाने की चीज़ होती है ना, प्लास्टिक में भर के हम रास्ते पे फेंक देते हैं, तो ये जो हमारे प्राणी मित्र होते हैं, बेचारे भूखे होते हैं, तो प्लास्टिक के साथ में खा लेते हैं। तो हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि कोई भी खाना अगर दे तो आप कागज़ पर रख कर दे या फिर किसी पत्ते पर रख कर दे, पर इसे प्लास्टिक में खाना नहीं फेंकना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने।
0: जी स्वाति जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। चलिए बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: जैसे कि हमने दोस्ती की बातें की हैं सोनाली जी, तो मैं दोस्ती का ही एक गाना सुनना चाहूंगी। फिल्म है नमक हराम, किशोर कुमार जी का गाया हुआ गीत है,

0: जीत है, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ दोस्त मिलते हैं।
1: जी बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है
1: जी। मैं मृणालिनी सक्सेना बोल रही हूँ
0: जी। कहाँ से बात कर रही हैं आप
1: जी? मैं भोपाल से बात कर रही हूँ
0: जी। मृणालिनी जी, बताइए क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ छोटे बच्चों को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा उन लोगों को पढ़ाना, शिक्षा देना
0: जी, छोटे बच्चों के साथ काम करके कैसा लगता है?
1: जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मतलब इस बात में खुशी मिलती है और संतुष्टि मिलती है कि वो उन लोगों को जो नहीं आता है उन लोगों को पढ़ाना और उनको ज्ञान देना, उनको बहुत शिक्षित करना, बहुत खुशी मिलती है।
0: अच्छा मृणालिनी जी, आप बच्चों को ट्यूशन देती हैं, तो ये बात
1: जी
0: बताइए आप कि रेडियो कब सुनती हैं फिर?
1: जी मेरी ट्यूशन शाम को रहती है और मैं दोपहर में समय निकालकर और इसको जरूर सुनती, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको सुनना। मुझे बहुत सारी बातें ऐसी पता चलती हैं जिससे कि आजकल की महिलाएं हैं जिनको मैं सुनती हूं तो मुझे पता चलता है कि ये बहुत आत्मविश्वास से भरी हैं और अपना अस्तित्व बनाने के लिए बहुत बिल्कुल जुट गई हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आगे बढ़ रही हैं।
0: तो चलिए रेडियो सुनते रहिए और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: जी मैं फिल्म मासूम का तुझसे नाराज नहीं है जिंदगी उसको सुनना चाहती हूँ
0: जी मासूम।

0: सखियों आपके अनुभव, आपसे की गई बातें दिल को छू गई। आपसे मुलाकात होगी अगले मंगलवार को। हम आपको बता दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से, तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह से हैं 400-24662, यानी 400-24662। दूसरा नंबर है 28670-288, यानी 28670288। और मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 022। चलते चलते हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला समृद्धि नाइक का, संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े, हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो आज आपसे इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं डॉक्टर जया आनंद की लिखी गीतों भरी कहानी मिस मैच, उन्हीं के स्वर में।
1: तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं के इन अदाओं पे।

0: कहाँ रख दिया मैंने, कितना सोचा था कि आज की पार्टी में नया वाला सलवार सूट पहनूंगी, पर इसका दुपट्टा पता नहीं कहाँ रख दिया। ज्यादा संभाल कर रखो तो भी चीजें नहीं मिलती, पर दुपट्टा कोई छोटी चीज तो है नहीं, अच्छा खासा 2.5 मीटर का दुपट्टा है। सौम्या ढूंढ ही रही थी कि आलोक, सौम्या के पति ने आवाज दी। कितना टाइम लगाती हो सौम्या, 7 बजे पहुंचना है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। आ रही हूं आलोक, बस बस 5 मिनट। क्या करूं, कहीं टेलर के पास ही तो नहीं छूट गया, दुपट्टे का पीको करने दिया था। उफ, मैं अब जा रहा हूं, तुम्हारा हर बार का यही हाल है, कभी जो समय से तैयार हो जाओ, पहले से कोई प्लानिंग ही नहीं। आलोक झुंझला पड़ा। कितनी तो प्लानिंग की थी, रात ही में सोच लिया था क्या पहनना है, अम्मा के लिए खाना बनाकर रख दिया था, दोनों बच्चों को प्रीति के यहाँ छोड़ आई थी, जब तक हम आए तब तक वे दोनों उनके बच्चों के साथ खेलेंगे खाएंगे, उनके लिए केक बिस्किट वगैरह सभी तो दे आई थी, आलोक की भी ड्रेस निकाल कर रखी थी, सब कुछ तो प्लान किया था, अब और कितना प्लान करूं। इस दुपट्टे ने सारा गड़बड़ कर दिया। सौम्या अलमारी में ऊपर के नीचे के रैक सब खंगालते हुए सोचती जा रही थी, इतना सब करने के बाद भी काम सही से नहीं हो रहा है।
1: ये कौन जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

0: किसी की नहीं।
1: बात उन दिनों की है जब सौम्या का पहली बार आलोक के साथ मूवी देखने का प्रोग्राम बना था। नई नई शादी के बाद अपने पति के साथ फिल्म देखने जाना बहुत उत्साह से भर रहा था सौम्या को। उसने अच्छी सी साड़ी पहनी, हल्का मेकअप किया था, लेकिन तैयार होने में केवल 5 मिनट की देरी हो गई थी। बस आलोक मूवी तो ले गए लेकिन एक शब्द नहीं बोला। सौम्या का इस तरह मूवी देखने का अनुभव बड़ा ही अलग था। अपने मायके में तो जब भी कोई मूवी देखती थी तो उस पर सभी कितनी चर्चा करते थे, उसके गाने गुनगुनाते थे, पूरी समीक्षा कर डालते थे, पर यहां तो अंदाज ही जुदा था। इस तरह पहली बार चुपचाप नाराज होकर कोई मूवी दिखाए तो कैसी लगेगी मूवी। खैर, रूठे हुए पति के संग सौम्या ने जैसे तैसे पूरी फिल्म देखी, फिर कोई चारा भी तो नहीं था।

सौम्या, तुम ना पार्टी का पूरा मूड बना कर रही हो। लोकल ट्रेन छूट गई तो कैब से जाना पड़ेगा और इतना ट्रैफिक होता है कि शाम को पहुंचते पहुंचते 9 बज जाएगा और तुम्हारी गाड़ी है कि खिसक ही नहीं रही है। 5 मिनट में तैयार हो, नहीं तो तुम अपनी पार्टी यहीं मनाती रहना। आलोक की तलखी से सौम्या चिढ़ सी गई। पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है आलोक के पास। अभी मैंने कुछ बोल दिया तो मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे और एक हफ्ते बात ही नहीं करेंगे। कितने भी नए साल आ जाएं, इनमें कुछ बदलाव नहीं आने वाला। हे भगवान, तुमने पूरब पश्चिम की जोड़ी बनाई है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी याददाश्त भी तो माशाल्लाह है, ऐसी जगह दुपट्टा रख दिया कि वक्त पर मिल ही नहीं रहा। यही सब सोचते हुए सौम्या ने गोल्डन कलर का दूसरा दुपट्टा पहन लिया। अब क्या करे, नहीं मिल रहा है तो मिसमैच करना पड़ेगा। सौम्या गोल्डन दुपट्टे के साथ तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई और दोनों लोकल ट्रेन के लिए ऑटो से स्टेशन की ओर निकल पड़े। रास्ते भर आलोक कुछ नहीं बोला। सौम्या को भी गुस्सा आ गया था। जाओ, मत बोलो। मैं भी नहीं बोलूंगी, बहुत मना लिया।

ठाणे स्टेशन पर ट्रेन आते ही आलोक जनरल डिब्बे में चढ़ा और सौम्या लेडीज डिब्बे में। सौम्या ने चढ़ते समय देखा आलोक का मुंह अब भी फूला हुआ था। सौम्या का भी मन बुझ सा गया। कितना सोचा था नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, खूब एंजॉय करेंगे, पर ये तो 5 मिनट की देरी भी नहीं आलोक को बर्दाश्त। मिस्टर शर्मा अपनी वाइफ का कितना इंतजार करते हैं, जरा भी झुंझलाते नहीं, और एक हम दोनों बिल्कुल मिसमैच। सौम्या को मन बहुत खाली खाली सा महसूस हो रहा है।

लोकल ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बैठने की जगह तो नहीं मिली, लेकिन आराम से खड़े रहने भर की जगह सौम्या को मिल गई थी। लोकल ट्रेन का लेडीज कंपार्टमेंट, जैसे कि एक रंग बिरंगी दुनिया वहां समा गई हो। कोई महिला बैठे हुए हाथ में माला लेकर जप रही थी, तो दूसरी मोबाइल में खुद को देखते हुए लिपस्टिक लगा रही थी। कई सारी महिलाएं दफ्तर से लौटने के बाद चेहरे पर थकान लिए घर जाने की प्रतीक्षा में निढाल सी खड़ी दिख रही थी। इन सब की जिंदगी में भी क्या सब कुछ मन मुताबिक होगा? कुछ ना कुछ अभाव तो सबके जीवन में होता ही है। इनके जीवन में भी कुछ झगड़े झंझट होते ही होंगे, खासकर पति से। यही सब सौम्या सोच रही थी कि उसे लेडीज डब्बे में पीछे की ओर बैग टांगे, जीन्स टॉप स्कर्ट टॉप पहने उत्फुल्लता से बतियाती हुई कॉलेज जाने वाली लड़कियां दिखी। वैसे तो वे सब कॉलेज से वापस आ रही थी, लेकिन उनके दमकते चेहरे इसका तनिक भी आभास नहीं दे रहे थे। हल्का मेकअप तो जरूर था उनके चेहरे पर इससे कहीं अधिक भविष्य को लेकर बुने गए सपनों की चमक इन लड़कियों के चेहरे की रौनक को आबाद कर रही थी। ये लड़कियां कितने आत्मविश्वास से परिपूर्ण नजर आ रही थी। इन्हें स्पष्ट पता है कि इन्हें क्या चाहिए।

सचमुच ये लड़कियां अपनी मंजिल खुद तय करती हैं, और एक मैं थी। करियर, कपड़े, बाहर जाना, सब में किसी न किसी की अनचाही सलाह, और स्वयं भी तो वो कंफ्यूज रही। शादी की उम्र पर भी नहीं पता चल रहा था कि शादी किसके साथ की जाए, इसलिए तो सब मिसमैच। एताई बूढ़े चला ना, यह आवाज सुनकर सौम्या की सोच को विराम लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक कान के झुमके वाला बांगड़ी वाला आवाज दे रहा था। कुछ महिलाएं उससे झुमके, कंगन वगैरह खरीदने लगी। सौम्या को फिर याद हो आया कि किस तरह उसने सपने संजोए थे कि उसे उसका पति झुमके लाकर पहनाएगा। शायद हिंदी फिल्मों का असर रहा हो, पर यहां तो पासा ही पलट गया। सौम्या के पतिदेव जी को फिल्में देखने का कोई खास शौक ही नहीं था, तो फिर ये झुमके वाला रोमांस तो बहुत दूर की कौड़ी थी।

0: अंतराल के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। लीजिए सुनिए मिस मैच इस कहानी का शेष भाग।
1: सौम्या को साहित्य संगीत से प्रेम और आलोक गणित का पहाड़ा पढ़ने वाले। सौम्या ने अगर आलोक को पकड़ के कोई कविता सुना भी दी तो कहेंगे, अच्छा तो तुम बताओ कि इस कविता के लिए क्या कहूं, या कविता सुनते सुनते कहते, वो तुमने दूध वाले का बिल दे दिया। सौम्या अपना सर पकड़ के रह जाती। कविता की ऐसी रस निष्पत्ति होगी उसने कभी नहीं सोचा था। नई नई शादी के बाद पहली बार सौम्या ससुराल में आरती कर रही थी। बड़े ही भाव के साथ आरती गा रही थी कि ओम जय जगदीश का अलग ही सुर या असुर कानों में सुनाई पड़ा। ये बेसुरा संगीत आलोक के मुखार बिंद से सुनाई पड़ रहा था। ये सुनते ही सौम्या की हंसी छूट पड़ी। ऐसा सुर संगम जिंदगी में उसने पहली बार सुना था। ये सब याद करते हुए सौम्या के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और फिर आसपास लोकल ट्रेन में अन्य महिलाओं को देखते हुए स्वयं को फिर से गंभीर मुद्रा के साथ बांध लिया। उसे अपने आप में मुस्कुराता देखकर वे क्या सोचेंगी, पर मुंबई में कहां किसी को फुर्सत किसी के विषय में सोचने की। अच्छा भी है, इससे आप बेपरवाह रह सकते हैं, और अच्छा नहीं भी, क्योंकि कभी कभी मन को कितना भाता है जब कोई आपकी परवाह करता है। हां, करता था ना परवाह, बिना बोले सिर्फ अपनी आंखों से, और कभी बोला भी तो सबके बीच सौम्या की प्रशंसा करते हुए, बहुत अच्छा गाती है सौम्या, और लिखती कितना अच्छा है, और ओह, कहां से कहां बात लेकर चली गई, सब पुरानी बातें जिन्हें बस याद करके मन झूम उठता है।

मोबाइल की रिंग से सौम्या वर्तमान में आ गई। देखा तो आलोक का फोन था। हेलो, सौम्या ने फोन उठाते हुए कहा। क्या सौम्या, कितनी बार कॉल किया और तुम हो कि उठा ही नहीं रही हो, लगभग चिल्लाते हुए आलोक बोले। अरे ट्रेन में इतना शोर हो रहा है, कैसे सुनाई पड़ेगा, और फिर मोबाइल पर्स में रखा है। कुछ नहीं, तुम्हारा ध्यान बस इधर उधर रहता है, एक बार में कभी फोन उठाना ही नहीं। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हाँ हो तो बहुत कुछ सकता है, बस आगे बढ़ने से खुद को रोक लेती हूँ, सौम्या कहना चाहती थी पर कहा नहीं। अच्छा सुनो, दादर आने ही वाला है, 3 स्टेशन के बाद ही उतरने के लिए तैयार हो जाओ। आलोक की आवाज में अब भी तलखी थी। जरा मिठास से नहीं बोल सकते हैं क्या, छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना अच्छा नहीं। कबीर ने कहा है ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। पर साहित्य तो पढ़ा ही नहीं आलोक ने, तो कैसे समझ आएगी ये सब बातें। सौम्या मन ही मन बड़बड़ाती जा रही थी।

दादर उतरना है ना? सौम्या ने फिर आगे खड़ी महिला से पूछा। उस महिला ने हां में सिर हिलाया। सौम्या उसी लाइन में खड़ी हो गई। ऐसे भी मुंबई में कोई काम बिना लाइन के चलता ही नहीं। थोड़ा भी तलविचल हुए कि सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। जब सौम्या आलोक के साथ मुंबई पहली बार आई थी तो ऐसा ही कुछ अस्त व्यस्त सा माहौल हो गया था। आलोक के हिसाब से बहुत बड़ी गलती थी और सौम्या के हिसाब से ये तो कोई गलती ही नहीं। फिर अगर गलती मान रहे हैं तो वो गलती क्या थी? तो बात ये थी कि सौम्या साबुन लाना भूल गई थी। एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर होने में कुछ चीजें भूलना तो सामान्य बात है। इतना सामान पैक करना है तो कुछ ना कुछ छूट सकता है, पर आलोक को ये सब आधारभूत गलती लगती थी। साबुन कैसे भूल सकती हो? अब भूल गई, इतना पैक करना था सब कुछ, लेकिन साबुन कैसे कोई भूल सकता है? ओफो, साबुन ही है ना, ले आएंगे यहीं से। पर तब तक आलोक का मूड बिगड़ चुका था, यानी मुंबई पहुंचते ही सौम्या की लाइन में विचलन आ गया था। सौम्या यही सोचती रहती कि जिंदगी में ये गणित और साहित्य का संगम आखिर भगवान जी ने कैसे कर दिया।

ए ताई, दादर उतराए से तुला? पीछे आती हुई आवाज से सौम्या की सोच को विराम लगा। सौम्या ने हाँ की मुद्रा में सिर हिलाया और फिर सोचते हुए मुस्कुरा दी। मंजिल तक पहुंचने के लिए लाइन में रहना जरूरी है। अब जो है जैसा है सब ठीक है। आलोक अगर पक्के गणितज्ञ तो मैं पक्की साहित्यिक, और फिर साहित्य वाले तो निश्चित रूप से अधिक समझदार होते हैं। कब कहाँ कैसे व्यवहार करना है उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। और फिर व्यवहारिक जोड़ गुणा भाग भी तो उसे खूब आता है। चला न ताई, लेडीज डिब्बे में फिर से आवाज गूंज गई। दादर स्टेशन आ गया था। लेडीज डिब्बे में भी बहुत भीड़ हो गई थी। सौम्या 8-10 लेडीज के बाद उतरी। ट्रेन से उतरते ही सौम्या अपना दुपट्टा संभालते हुए अपने बाल ठीक करने लगी। आलोक दूर खड़े होकर सौम्या को देख रहे थे। सौम्या आलोक के पास पहुंची। आलोक ने गंभीर स्वर में कहा, ये कौन सा दुपट्टा डाल लिया? आलोक की बात बीच में काटते ही सौम्या बोली, वो मिसमैच किया है। मिसमैच पर अच्छा लग रहा है, अभी मैंने गौर किया। आलोक रूखे से ही बोले। और मैं कैसी लग रही हूं? सौम्या ने धीरे से पूछा। पता नहीं, आलोक का रूखा सा जवाब था पर आंखें मुस्कुरा रही थी। सौम्या ने उन मुस्कुराती आंखों को देख लिया था, उसे हंसी आ गई। हम दोनों, व्हाट अ मिसमैच। पर जो भी है शायद अच्छा ही है। इतनी बड़ी दुनिया में उसका हाथ पकड़कर साथ चलने वाले आलोक ही तो हैं। भले सुर साहित्य से उतना जुड़ाव नहीं, लेकिन उसके जीवन को पूर्णता के साथ सुरम्य बनाने वाले आलोक ही तो हैं। और फिर आलोक से जुड़ने के बाद भी न उसके अपने छूटे न उसके सपने। सौम्या का हृदय भाव से लबालब हो चुका था। वह अपना दुपट्टा संभालते हुए आलोक के साथ स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ने लगी।

गीतों भरी कहानी। आज आप सुन रहे थे डॉक्टर जया आनंद की लिखी गीतों भरी कहानी मिसमैच, वाचन स्वर था जया आनंद का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

श्रोताओं, अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं।

पेश है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा। लीजिए सुनिए।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और रामानुज नगर में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये टुकुडाड़, कनकनगर, सिलफिली, चाचीडाड़, करसी, बूढ़ा डाण, बरबसपुर, प्रेमनगर, सतकोना, मेंड्रा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज, राजपुर और धमनी में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये इंदरपुर, नीलकंठपुर, शिवपुर, चिनिया, महावीरगंज, परसवार, दुप्पी, चौरा, इंद्रावतीपुर, धौली, सिमरवा, कामेश्वर नगर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये असकला, दोरना, जरहाडी, ढोढ़ा गाँव, घासीडी, बोड़ा झरिया, कठबुड़ा, दाती ढाप, कंडरा राजा, बैरडाण, नर्मदापुर, चोरकी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, तपकरा, कांसाबेल और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये कुंजारा, श्रीटोली, ढोंगा आंबा, मयूर चूंदी, बिलासपुर, बोडालता, सेमरताल, जबला, जामबहार, कटंगखार, देवरी, छेरा घोघरा, जुमे केला, खड़ामाचा, पीठा आमा, महेशपुर, झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 96 है। ये प्रेमनगर, पोटिया, इंचपारा, कुड़ेकेला, बोजिया, जमाबीरा, आमापाली, पंडोपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला और पसर खेत में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये बड़गांव, टीमन भैना, सुईयारा, पंडरीपानी, पतरापाली, तेवानारा, गोड़मा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और पसान में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 39 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, भैंसगढ़ी, कंटाझरिया, बटुरा कछार, अमलीडी, सराई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सराई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के रवान और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये छताल, दलदली, तालाझर, मुरुमडी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कुकरार, ताराझर, कुरवा पानी, खोला पारा, छिंदौला, लूठा पारा, फरसरा, बोडापाला, जारन डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर

0: कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे अमर हाथी अमर गोट।
2: हमर हाथी हमर गोठ। इस प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे CF वन विभाग सरगुजा। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए पेश है चित्रपट संगीत। श्रोताओं, सावन के सुहाने मौसम में चित्रपट संगीत के सुरीले सफर का पहला नजराना हम आपकी नजर कर रहे हैं हरिहरन और साधना सरगम के युगल स्वर में दहक फिल्म से। मजरू की लिखी रचना है और आनंद मिलिंद का है संगीत। लीजिए सुनिए।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत का अगला गीत लीजिए। पेश है सुनिधि चौहान और सोनू निगम की आवाज में फना फिल्म से। शब्द रचना प्रशून जोशी की है और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत का अगला तराना हम आपकी नज़र कर रहे हैं कुमार शानू की आवाज़ में सर फिल्म से। अनु मलिक के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है कतील शिफाई ने। लीजिए सुनिए।

0: श्रोताओं, चित्रपट संगीत के सफर में लीजिए पेश है उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाज में यलगार फिल्म का ये गीत। सुदर्शन फाकिर की लिखी रचना है, चन्नी सिंह का है संगीत। लीजिए पेश है।
1: जिंदगी से भाग कर आया हूं।
2: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

यलगार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम में लीजिए पेश है इकबाल अफजल अनुपमा देशपांडे की आवाज़ में प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गीत। रचना इकबाल साबरी की है और धुन बनाई है साजिद वाजिद ने।

श्रोताओं, हमारी और प्यारी आपकी प्यारी आकाशवाणी से अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत का आखिरी गीत आपने सुना इकबाल अफजल साबरी और अनुपमा देशपांडे की आवाज़ में, प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म से। और इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:35 होने को हैं। चलिए अब रुक करते हैं युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युवा जगत की ओर।

नमस्कार, हेलो, हाय, आदाब। और बताइए कैसे हैं सब आप। सावन का दूसरा दिन कितना ही मनभावन है ना। पूरी धरती हरी चादर से ढक चुकी है।

0: नमस्कार, हेलो, हाय, आदाब। और बताइए कैसे हैं सब आप। सावन का दूसरा दिन कितना ही मनभावन है ना। पूरी धरती हरी चादर से ढक चुकी है। हरे पेड़ पौधे भी बारिश की पानी में नहा धोकर कितने साफ हो गए हैं। काले सफेद बादल उमड़ घुमड़ कर अपनी वजन से दुगना पानी लिए आसमान में तैर रहे हैं, और जहां जहां वे थक गए बस वहीं पानी बरसा दिए। बस इसी तरह आप सभी को भी अपने दिन भर की थकान की गठरी साइड में करनी है और मजे लेना है कार्यक्रम युवा जगत का अपने साथी मनीष के साथ। वैसे साथियों, बारिश के मौसम में आप अपना ध्यान रख रहे हैं ना। साफ पानी और स्वच्छ सुपाच्य भोजन से ही आप सभी इस मौसम में बीमारियों से बच पाएंगे और मौसम का आनंद भी उठा पाएंगे। सच है ना, वर्षा ऋतु अपने साथ मौसम के कई रंग भी लेकर आती है, जिसमें खुशी, निश्चलता, संपन्नता और प्रेम शामिल है। आज हम हिंदी साहित्य के उसी विभूति के बारे में बात करेंगे जो आज ही के दिन यानी 31 जुलाई को पैदा हुए थे। बात होगी उस साहित्य सूर्य की जिसकी किरणों ने भारतीय समाज के अंधेरों को उजाले में बदलने का साहस किया। उस कलम के जादूगर की जिसने महलों की नहीं झोपड़ियों की कहानी लिखी, जिसने राजाओं की नहीं किसानों, मजदूरों और आम इंसानों की पीड़ा को अपनी लेखनी का स्वर बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की। कलम जब सच लिखती है तो समय भी उसे सलाम करता है, और शब्द जब समाज का आईना बनते हैं तो साहित्य अमर हो जाता है। कहते हैं जिस कलम में जन मन की धड़कन बस जाए वह रचना युगो युगों तक मुस्काए। सन 1880 31 जुलाई में वाराणसी के निकट लंबी गांव में जन्मे धनपत राय श्रीवास्तव आगे चलकर दुनिया के लिए प्रेमचंद बन गए। जीवन में आर्थिक कठिनाइयां थीं, संघर्ष थे, अभाव थे, लेकिन उनके सपनों की रोशनी कभी कम नहीं हुई। शिक्षक रहे, फिर साहित्य को अपना जीवन बना लिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि महान लेखक बनने के लिए महलों की नहीं संवेदनशील हृदय की आवश्यकता होती है। प्रेमचंद का रचना संसार केवल कहानियों का संग्रह नहीं बल्कि समाज का जीवंत दर्पण है। गोदान में किसान होरी का संघर्ष हो, गबन में नैतिक द्वंद्व, निर्मला में दहेज प्रथा की पीड़ा या कर्म भूमि में सामाजिक चेतना, हर रचना अपने समय से संवाद करती है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। उनकी कहानियां ईदगाह का मासूम हमीद, पूस की रात का हल्कू और कफन के घीसू और माधव, दो बैलों की कथा के हीरा और मोती, ये केवल पात्र नहीं भारतीय समाज की धड़कन है। स्याही नहीं संवेदना थी उनकी लेखनी में, शब्द नहीं समाज की वेदना थी हर कहानी में। युवा साथियों, प्रेमचंद हमें सिखाते हैं कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि परिवर्तन का माध्यम भी है। जब शब्द इंसानियत का हाथ थाम लेते हैं तब समाज आगे बढ़ता है। उनकी रचनाएं हमें सच बोलना, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना और हर इंसान के सम्मान को सबसे ऊपर रखना सिखाती है। तो आइए आज हम संकल्प लें कि हम भी किताबों से दोस्ती करेंगे, संवेदनाओं को समझेंगे और अपने भीतर एक बेहतर इंसान को जगाएंगे। क्योंकि कलम की लौ कभी बुझती नहीं, सच्चाई की राह कभी रुकती नहीं। जब जब इंसानियत की बात चलेगी, प्रेमचंद की रचना हर साथ चलेगी। तो साथियों, इसी के साथ सुनते हैं यह संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों सुनिए फिल्म जीरो का गाना, जिसे लिखा है इरशाद कामिल।

साथियों, अब समय हो चला है हमारे अगले क्रम समसामयिकी का, जहां हम आपको बताएंगे देश, दुनिया और शहर में होने वाली गतिविधियों की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। तो साथियों, 1 जुलाई को जनरल धीरज सेठ ने हमारे 31वें आर्मी चीफ जनरल यानी कि थल सेना अध्यक्ष का पद संभाला। इसके बाद 3 जुलाई को जापान की पीएम शिंजो ताकायशी भारत दौरे पर 1 से 3 जुलाई के बीच आए। दोनों देशों में 6 अहम करार हुए, जिसमें मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का चलना और जापान के सहयोग से खाद के 1000 नए कारखाने भी खुलना शामिल है। तो दोनों देशों में टैलेंट मोबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट, टेक इंटर्नशिप, रिसर्च, एजुकेशन व स्टार्टअप में साथ बढ़ाने का भी वादा शामिल है। साथियों, इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने अगले खबर की ओर, जो कि है ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामोनई गुरुवार को 10 जुलाई मशहद में दफन कर दिए गए। यहां 70 लाख लोगों के जुटने का दावा है। हफ्ते भर चले अंतिम विदाई कार्यक्रम में 3.5 करोड़ लोग शामिल हुए। यह अंतिम विदाई में भीड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी यह रिकॉर्ड तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुराई के नाम है। 1969 में उनके अंतिम संस्कार में 1.5 करोड़ लोग जुटे थे। अब हम चलते हैं भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जो 17 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखलाई। यह ट्रेन जिंद से सोनीपत तक चलेगी और पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा देश का पहला निजी रॉकेट। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 18 जुलाई का दिन उस वक्त ऐतिहासिक बन गया जब निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा स्वदेशी तकनीक से बना रॉकेट विक्रम 1 पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा। स्काई रूट की स्थापना 2018 में पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका ने इसरो से नौकरी छोड़कर की थी। तो साथियों, अब हम चलते हैं अपने राज्य की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की लोक आत्मा और पंडवानी की अप्रतिम साधिका पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई ने 5 जुलाई रविवार को तड़के 3:15 पर रायपुर एम्स में अंतिम सांस ली। महाभारत की गूंज मौन हो गई, तंबूरे की वहतान थम गई, जिसने दशकों तक भीष्म की प्रतिज्ञा, अर्जुन की गांडीव, द्रौपदी की पीड़ा और कृष्ण के संदेश को अपना ओजस्वी वाणी में जीवंत किया था। तीजन बाई जी का जन्म 24 अप्रैल 1956 में हुआ। वे तीनों पद्म सम्मान पा चुके हैं, पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण 2003 में और पद्म विभूषण 2019 में। साथ ही उन्हें संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया 1995 में। बिलासपुर विश्वविद्यालय, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालयों ने डी लिट की मानित उपाधि से उन्हें सम्मानित भी किया। 80 के दशक में भारत की सांस्कृतिक दूत बनकर वह जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और रोमानिया समेत 15 देशों की यात्रा उन्होंने की। अब मंच पर जब भी तंबूरा बजेगा, स्वर में द्रौपदी का दर्द, भीम का पराक्रम या कर्ण की करुणा गूंजेगी। जहां जहां पंडवानी गाई जाएगी, वहां तीजन बाई की याद भी उसी कथा का अभिन्न हिस्सा बनकर जीवित रहेगी। तीजन बाई ने पंडवानी को लोक की चौपाल से उठाकर दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंचाया। तीजन बाई

जी को शत शत नमन। साथियों, 17 जुलाई को बिलासपुर ने 93 साल बाद ऐसी बारिश देखी जिससे पूरे शहर की रफ्तार थम गई। महज 24 घंटे में 16 इंच से अधिक बारिश ने 1933 का 14.93 इंच का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। कॉलोनियों, मोहल्ले के घर डूब गए। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए मोटर बोट चलानी पड़ी। बाढ़ की वजह से कई मार्ग और नेशनल हाईवे में बसें बाधित रहीं, ट्रेन रद्द रहीं। शहर से गांव तक हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। अब साथियों, हम चलते हैं खेल जगत की ओर। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार वर्ल्ड चैंपियन जीता। 5 जुलाई को महिला टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल लंदन में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड में चौथी बार फाइनल में आमने सामने थे। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया और इस जीत के साथ रिकॉर्ड 7वीं बार वर्ल्ड टाइटल जीता। 4 जुलाई को वैभव का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यूटेंट हुआ। सचिन का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। 4 जुलाई 2026 को भारतीय क्रिकेट में नया इतिहास रचा गया जब 15 साल 99 दिन के वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच में उतरते ही भारत के सबसे युवा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए। 10 जुलाई को वर्ष 2026 का विंबलडन खिताब पुरुष एकल में इटली के टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता। यह उनका लगातार दूसरा विंबलडन यानी और कुल 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर अपना विंबलडन का टाइटल बचाया। फीफा वर्ल्ड कप स्पेन ने जीता। उसने अर्जेंटीना को 1-0 से हराया और वह दूसरी बार चैंपियन बना। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने लगातार तीसरा गोल्ड दिलाया। इससे पहले वह कॉमनवेल्थ गेम्स में 2018 और 2022 में यह स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। कॉमनवेल्थ खेलों के 96 साल के इतिहास में ऐसा करने वाली वह पहली महिला वेटलिफ्टर हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने सिल्वर जीता वेटलिफ्टिंग में। वह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से ताल्लुक रखती हैं। साथियों, अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, जिसे लिया गया है फिल्म एक विलन से। गीत व संगीत है मिथुन का, गायक है मोहम्मद इरफान।

साथियों, वर्चुअल दुनिया की भीड़ में आज हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन असल दुनिया में किसी दोस्त के साथ मिलकर समय बिताना, हंसी ठिठोली करना, घूमने जाना, यह कम होता जा रहा है, जिससे बहुत सारे युवा अवसाद में जा रहे हैं। दोस्ती का असली मतलब ही तो साथ निभाना है। जब जीवन में एक दोस्त होता है जिससे हम बेबाक होकर दिल की बातें करते हैं, मुश्किलों में जब वह खड़ा रहता है, चाहे परीक्षा की तैयारी साथ करनी हो या फिर कोई कठिन परीक्षा जीवन की आ जाए, वह एक अदृश्य मार्गदर्शक के रूप में सदैव साथ खड़ा रहता है। साथियों, दोस्त बनाने में आपको शुरू में कठिनाइयां होंगी, लेकिन जो दोस्ती लंबे समय तक टिक जाती है वही असली दोस्त होता है। तो आप भी बेफिक्र होकर अपने मन की बात अपने दोस्तों से साझा कीजिए और हंसिए, गुनगुनाइए और जीवन का आनंद लीजिए। तो अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे लिया गया है फिल्म दिल्ली बेली से। गीतकार हैं अक्षत वर्मा, संगीत दिया है राम संपत ने, गायक हैं कीर्ति सागातिया, सोना महापात्रा और

0: जो चौका उड़ते हुए जाए उसे छक्का कहते हैं।
1: दिलो दिमाग की दुनिया को कर सुपुर्द खाक, हंस गा मुस्कुरा जीता जा तू बेबाक, दर्द को बना अपना हथियार और मेहनत से लिख अपनी किस्मत और कहला मुकद्दर का सिकंदर। साथियों, इसी के साथ दीजिए अपने साथी मनीष को इजाजत, तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवा जगत। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले हम आपको आज शाम को पेश होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

आज रात्रि 8 बजे पहले आप सुनेंगे संसद समीक्षा। रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग का प्रसारण हम दिल्ली केंद्र से करेंगे। रात्रि 8:15 पर रजनीगंधा की खुशबू हम बिखेरेंगे। संध्या 6:20 और 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। और आज संध्या 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। आगे इसी कार्यक्रम में संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे फोन इन पर आधारित कार्यक्रम, जिसमें श्रोताओं के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे। इनसे बातचीत का विषय होगा शरीर में होने वाले तिल व मसों का कैंसर में परिवर्तित होने वाले लक्षणों की पहचान एवं निदान के उपाय। इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे जितू भैया। ये तो थी आज शाम को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए श्रोताओं, अब हम आपको कल सुबह और शाम को प्रसारित होने वाले मुख्य आकर्षणों के विषय में बतला दें। कल सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह, और सुबह 9 बजे का समय होगा बातों बातों में कार्यक्रम का, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कल सुबह 10 बजे अमराई कार्यक्रम में कलाकार होंगे अमचीरी बाई, जगदीश कुलदीप, राजकुमार अग्रवाल, अनुराग ठाकुर, साधना यादव, कविता हिरकने और साथी। 10:30 पर नए तराने के सफर में हम बनेंगे आपके हम सफर। इसके अलावा कल शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। 5:05 पर चित्रपट संगीत, 5:35 संध्या 6:20 और कल संध्या 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। संध्या 7:30 पर किसानवाणी कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे। कल रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे इस सप्ताह संसद में ये कार्यक्रम, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और कल रात्रि 8:15 पर रजनीगंधा की हम खुशबू बिखेरेंगे। कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त हुआ।

श्रोताओ, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:10 होने को है। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले भेंट करके छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, बस्तर के कायाकल्प के संग आने आने परियोजना के संबंध में विस्तार ले चर्चा करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरलग होत बरसा और मौसम विभाग के रेड और येलो अलर्ट देखा जम्मू जिला मंडल हाई अलर्ट में रहे के निर्देश दिन है और प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय वर्तमान

0: शैक्षणिक सत्र बर कक्षा पहली ले 12वीं तक के तिमाही और छमाही परीक्षा के समय सारिणी जारी कर दे है। अब समाचार विस्तार ले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले सौजन्य भेंट करके छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, बस्तर के कायाकल्प और राज्य के महत्वपूर्ण अधोसंरचना के संगे संग औद्योगिक परियोजना के संबंध में विस्तार से चर्चा करें। मुख्यमंत्री है प्रधानमंत्री के आगू बदला छत्तीसगढ़ और विशेष रूप ले बस्तर के विकास के रोडमैप प्रस्तुत करत राज्य के तीन तीन महत्वपूर्ण परियोजना पर केंद्र सरकार ले सहयोग के आग्रह करें। मुख्यमंत्री है राजनांदगांव में प्रस्तावित लगभग 10,500 करोड़ के गैस आधारित यूरिया परियोजना, बस्तर समेत संवेदनशील क्षेत्र के 461 गांव मल्ला स्थायी विद्युत ग्रिड ले जोड़े और रायपुर या बस्तर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के स्थापना पर सहयोग करे के आग्रह करें। मुख्यमंत्री है उम्मीद जताइन कि ये परियोजना के मंजूरी ले प्रदेश में औद्योगिक निवेश, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के संगे संग सहायक आर्थिक गतिविधि ल नवा गति मिलही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य में डिजिटल भारत निधि के तहत प्रस्तावित 2,305 नवा मोबाइल टावर के स्थापना पर केंद्र सरकार ने मंजूरी मांगी है। इस सिलसिला में नई दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ले भेंट करीन। ये दौरान मुख्यमंत्री है कहीन कि राज्य सरकार के प्रयास है कि तकनीक के फायदा केवल शहर तक सीमित न रहे बल्कि दूर दराज के वनांचल और जनजातीय क्षेत्र के हरेक नागरिक तक पहुंचे। प्रदेश के कटघोरा डोंगरगढ़ नवा रेलवे लाइन परियोजना ला रेल मंत्रालय और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम के माध्यम ले विकसित करे में सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपन नई दिल्ली प्रवास के दौरान काली केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ले भेंट करके ए परियोजना के संग्रह प्रदेश में रेलवे अधोसंरचना के विस्तार ला लेके चर्चा करें। बैठका के दौरान बताया गया कि लगभग 295 किलोमीटर लंबा कटघोरा डोंगरगढ़ परियोजना के रेल लाइन कटघोरा, करतला, मुंगेली, कवर्धा और खैरागढ़ होवत डोंगरगढ़ तक जाही। केंद्रीय मंत्रिमंडल है 2026-27 ले 2030-31 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ला जारी रखे के मंजूरी दे दिन है। मीडिया ले गोट करत सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हकीन के ए योजना पर 5 साल के अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपया के वित्तीय आवंटन मंजूर करे गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरलग होत बरसा और मौसम विभाग के चेतावनी ला देखत जम्मू जिला मल्ला हाई अलर्ट में रहे के निर्देश दिन है। ओमन जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और संबंधित विभाग के अधिकारी मनले संवेदनशील क्षेत्र मन के सरलग निगरानी रखे और बाढ़ के संग्रह जल भराव के आशंका वाला इलाका मन में बेरा ऊपर राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करे बर कहीन है। यही बीच सरलग बरसात के सेती प्रदेश में नदियां नरवा उफान में है और कई ठिन गांव के सड़क संपर्क कट गए है। बीजापुर जिला में सरलग बारिश के सेती इंद्रावती नदियां खतरा के निशान ले ऊपर बहा थे। बाढ़ के गंभीर स्थिति ल देखत जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भोपाल पट्टनम क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गवाई मन के दौरा करें। अधिकारी मन राहत शिविर में पहुंच के प्रभावित ग्रामीण मन ले मुलाकात करें और सब जरूरी सहायता के भरोसा दिलाएं। उन्हें उसूर ब्लॉक में तालपेरू नदी में फंसे नवजात शिशु और उखर महतारी समेत पर्यटक मनला SDRF और राजस्व अमला सुरक्षित बचा के बाहर निकालें। ऐसने बलौदा बाजार के तुरमा गांव में गुरुवार रतिया 4 जन ग्रामीण बाढ़ में फंस गए रहीन। घटना के जानकारी मिलतेज नगर सेना के टीम मौका में पहुंच के जमोला निकाल के सुरक्षित जगह में पहुंचाई। यही बीच नदी मन के जल स्तर सरलग बाढ़े के सेती रायपुर, धमतरी और गरियाबंद जिला में तटीय क्षेत्र में रहिया लोगन मल्ला सतर्क कर दे गए है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़वो बाचे समाचार कुती। प्रदेश में खातू के काला

0: बाजारी करे के मामला में 470 ले ज्यादा जगह में कार्रवाई करी गई है। ये जानकारी कृषि मंत्री रामेचार नेताम आज रायपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान दीन। ओमन इहू कहिन के किसान मनला गुणवत्ता वाला बीजा और खातू दे में लापरवाही के शिकायत मिले में दोषी मन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई करे जाही। राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा निर्देश दीन है कि खेल मैदान के व्यावसायिक इस्तेमाल में रोक लगा के ओला तुरते लैका मन के खेल कूद पर उपलब्ध कराया जाए। धमतरी में समीक्षा बैठक लेके उमन प्रदेश के जम्मू सरकारी और निजी स्कूल के दीवाल और प्रमुख जगह मन में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 लिखे के निर्देश दीन। प्रदेश के सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूल मन में पहली कक्षा ले 12वीं कक्षा तक के परीक्षा एके समय में होगी। इस साल तिमाही परीक्षा 21 सितंबर ले 30 सितंबर तक, जबकि छमाही या अर्धवार्षिक परीक्षा 1 दिसंबर ले 12 दिसंबर के बीच रखे जाही। ये जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय चालू शैक्षणिक सत्र पर जारी करेगे परीक्षा के समय सारणी में देहे। एकरे संग जम्मू जिला मन में परीक्षा संचालन और मूल्यांकन के एक रूपता सुनिश्चित करे बर जिला स्तर में परीक्षा समिति गठित करे के निर्देश घलो दे गए है। संत शिरोमणि रविदास के 650वां जयंती के मौका में आयोजित समरसता संकल्प अभियान के तहत वाराणसी ले पवित्र माटी युक्त कलश लेके निकले भाजपा के प्रतिनिधिमंडल आज राजधानी रायपुर पहुंचिस। बंजारी माता मंदिर ले ए यात्रा शहर के प्रमुख जगह ले होवत श्री राम मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के संग पूजा करके कलश के स्थापना करेगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा डहाले प्रदेश में ज्वाइन BJYM सदस्यता अभियान चलाए जाते। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा रायपुर में पत्रकार मन ले गोट बात करत बताई कि अभियान 23 जुलाई ले शुरू हो है जौन 20 सितंबर तक चलही। अवया दिन में प्रदेश में अभियान के तहत आने आने कार्यक्रम आयोजित करे जाही। हज कमेटी ऑफ इंडिया हज 2027 बार ऑनलाइन डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया पूरा कर ले है। राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मिर्जा एजाज बेग बताइन कि राज्य ले 787 यात्री मन के चयन करे गए है, जबकि 241 आवेदक मन ला प्रतीक्षा सूची में रखे गए है। चयन सूची हज कमेटी के वेबसाइट में जारी कर दे गए है। राज्य के सहायक मत्स्य अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 के चयन प्रक्रिया और परीक्षा परिणाम ला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय निरस्त कर दे है। कोर्ट भर्ती प्रक्रिया में गंभीर कमी और अपन पहली के आदेश के अनदेखी पाए जाए के बाद पूरा प्रक्रिया ला नवा सिराले करे के आदेश दे है। सुनैया मल्ला बता दें कि प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में म ए बखत विश्व स्तनपान हफ्ता ऊपर यूनिसेफ के पोषण आहार विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा देश पांडे ले गए भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एक प्रसारण काली 1 अगस्त के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहाले FM और प्राइमरी चैनल में बिहनिया 9 बजे ले करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। राज्य में बिजली के दर में कमी और स्मार्ट मीटर वापस ले के मांगला लेके कांग्रेस पार्टी काली 1 अगस्त ले आंदोलन करही। ये जानकारी आज रायपुर में पत्रकार वार्ता ला संबोधित करत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज हदीन। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले भेंट करके छत्तीसगढ़ के समग्र विकास बस्तर के कायाकल्प के संग आने आने परियोजना के संबंध में विस्तार ले चर्चा करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरलग होत वर्षा और मौसम विभाग के रेड और येलो अलर्ट ला देखकर जम्मू जिला मल्ला हाई अलर्ट में रहे के निर्देश दिन है और प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय वर्तमान शैक्षणिक सत्र पर कक्षा पहली ले 12वीं तक के तिमाही और छमाही परीक्षा के समय सारिणी जारी कर दे है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार इहें सिरावत है। जय जोहार।
1: श्रोताओं, अभी हम छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुनें।

सुनने वालों का स्वागत अभिनंदन। लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू के युगल स्वर में, 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से। शब्द रचना जावेद अख्तर की है और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने। और ईमेल के जरिए जिन श्रोता साथियों की पसंद हम तक पहुंची है उनके नाम हैं, नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी, दिशा गोस्वामी, छत्रपति, संभाजी नगर से राजेश पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि, शीतल राजेश, मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर और अमनदीप, राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, बिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, रेणु, रजनी, प्रियंका देवांगन, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभैये, राधिका, अनिशका, तन्मय गजभैये, मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सोंगा से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हियांश कुमार चंदन, पोड़ी भाटा कलतरा से दिलीप चंदन, चुवाराम, यदु, निखिल, वसुंधरा और प्रांजल चंदन, मदनपुर से श्रवण कुमार, योगेश, राहुल, कुलगांव से पांडु चंदन, उषा, प्रतीक्षा, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित, गर्वी, हिमाक्ष, पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री बुरांडे, बठिंडा पंजाब से परमेन सिंह, मंजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिंपू, एकम, दमन, अभिजोत, तिवरता, डबरीपारा, कोरबा से महेंद्र प्रताप, मरकाम, जया, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहोदरी बाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई, चंद्रपाल, मरावी, लक्ष्मी, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य, मेघा मस्कीन, महाराष्ट्र से संतोष, सुनैना, सुकन्या, सविता, सीतामणि, बिहार से मसरत, जहानाज, तलहत, फरहत, रिफत, नुजत, शाजिया, शाहीन नाज और नाजिया नूरीनाज, चिरमिरी, कुरासिया कॉलरी से इंद्रवान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंदी लहरे। और तेलंगाना से हमारे साथी हैं मोहम्मद बुराउद्दीन, मोहम्मद यूसुफुद्दीन, राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, पटियाला से मुकेश और नीलम बत्ता, जगराओं से सुनील पाठक, कमल, दीपका, काव्या, सुच्चा सिंह पाठक, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, पीयूष कुमार, रोहित राज, पंजाब से हरजिंदर, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। और इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है मेरठ केंट से दिग्दर्शन कविता कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन ने। तो इन सभी की पसंद पर लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू की युगल स्वर में,

0: मजबूरी। बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: श्रोताओं, ईमेल करें, गीत सुने। इस कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए पेश है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के युगल स्वर में विजय फिल्म से। शब्दों के मोती पिरोए हैं निदा फाजली ने और संगीत से सवारा है इस गीत को शिव हरि ने। ईमेल के जरिए जिन श्रोता साथियों की पसंद हम तक पहुंची है उनके नाम हैं राजकोट से जूली जगदीश, प्राची प्रवीण, गाजीपुर यूपी से सुरेश उर्मिला, दीपक स्वाति जायसवाल, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल जगदीश, भिलाई नगर से अशोक, प्रमीला आसमा, लुथरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, लौगर ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह, कवर्धा से अशोक कुमार, लीलेश्वरी, ललिमा, खुशांत, निशांत, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, ऐद रिफा नवाज, चाहत, पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, पुनाराम, कृष्णा, लुथरा खमरिया से ही अकरम अमीन, अर्श आतिका, डोंडी लोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव और अलकबीर, सरगांव बाजार से हमारे साथी हैं नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद, इरफान मोहम्मद, बाग बहरा से पन्नालाल सेन, खुशबू तारा, कौशल सेन, दिल्ली शहर से आसमा परवीन, आमना परवीन, वली भाई, सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश, कंचन, माही सेन, बरकाकाना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी साइनी, मोहम्मद अफजल मलिक, हिंगोली महाराष्ट्र से शाजी, नंदा और हनुमान।

टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम विश्वकर्मा, आशीष। लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति। हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। पंजाब से गगनदीप, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका, वाणी। मुंबई से अदीबा नाज, फातिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी। पूर्णा जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना और चेतन भगत। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय नमन अपार। बलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल, यशस्वी, अन्नपूर्णा वर्मा। कवर्धा से हमारे साथी हैं राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय, शंकर पांडे। इन सभी की पसंद पर लीजिए पेश है विजय फिल्म का ये गीत।

0: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए पेश है अलका याग्निक और मुकुल अग्रवाल की आवाज में, सपने साजन के इस फिल्म से। बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का है। ईमेल के जरिए जिन श्रोताओं की पसंद हम तक पहुंची है उनके नाम हैं

हिसार से राजकुमार प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र सिंह, रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र जोई, यामिनी उमा तिवारी, हांसी से राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू बबीता, सुभाष योगी, संबलपुर कांकेर से भागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग, धुरा बांधा भाटापारा से हमारे साथी हैं प्रमोद साहू, देव नवीन और युवराज साहू, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, दूल्हापुर यूपी से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष, सोनी मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष कोयल, नानक चंद्र मल्होत्रा, तेलंगा

से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य, सोनी मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद्र मल्होत्रा। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया। राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति, ख्याति कुमारी। महाराष्ट्र से अमोल, शोभा, दीपाली और श्लोक कुमार। जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम, राकेश कुमार। लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल और भारती बघेल। इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक परी, स्वाति। प्रयाग चौधरी, कुमारी देवी चौधरी, मालती चौधरी। भाटापारा से हमारे साथी हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चुवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु और भुवन कामरी। रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डॉली, पूर्वेश। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस, निर्मला, विशाल। पंजाब से सुभाष, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु। रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार। यवतमाल से जयराम, तिशांत, अर्पिता। और इसी गीत की मिली जुली फरमाइश लिख भेजी है। मोपका से सोनाली, रेणु, प्रियंका, मोना और श्रीजा ने। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, सपने साजन के। इस फिल्म से अलका याग्निक और मुकुल अग्रवाल की आवाज़ में।

0: हाँ बेटा,
1: आप ये अपने अटैची क्यों जमा रहे हैं?
0: मैं 10 दिन के टूर पर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो लौटते हुए मेरे लिए जीन्स और टॉप जरूर लाना।
0: अरे ये तो मैं तुझे यहीं से दिलवा दूंगा।
1: आप जा कहाँ रहे हैं?
0: बेटा वो जगह दूर जंगलों में है, वहाँ हमारे यहाँ जैसे बाजार नहीं है।
1: ओ, तो पापा आपने एक जरूरी चीज तो रखी ही नहीं।
0: जरूरी चीज? अरे वो क्या?
1: आप भी लाती हूँ।
0: पता नहीं क्या ला रही है।
1: ये भी रख लीजिए।
0: अरे ट्रांजिस्टर, मेरी अच्छी बिटिया, ला दे मुझे।
2: घर से दूर भी अपनों के साथ, जब हो रेडियो पास

0: ईमेल करें, गीत सुनें। ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इसके दूसरे भाग को आप सुन सकेंगे संध्या 7 बजे। फिलहाल संध्या के 6:45 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार रायपुर से रिले किए जाएंगे।
1: प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी का जो रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी

0: कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, बस्तर के कायाकल्प सहित विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने की दी मंजूरी। और लोक शिक्षण संचालनालय ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 1 से 12वीं तक की तिमाही और अर्धवार्षिक परीक्षाओं की समय सारणी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य भेंट कर छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, बस्तर के कायाकल्प तथा राज्य की महत्वपूर्ण अधोसंरचना और औद्योगिक परियोजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के समक्ष बदलते छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से बस्तर के विकास का रोडमैप प्रस्तुत करते हुए राज्य की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव में प्रस्तावित लगभग 10,500 करोड़ की गैस आधारित यूरिया परियोजना, बस्तर सहित संवेदनशील क्षेत्रों के 461 गांवों को स्थायी विद्युत ग्रिड से जोड़ने और रायपुर या बस्तर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना के लिए सहयोग करने का आग्रह किया। नई दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय ग्रामीण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर बस्तर संभाग के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में विशेष प्रावधान करने का आग्रह किया। चर्चा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ से जुड़े विषयों पर उनका सकारात्मक रुख है।
7: बस्तर जहां शांति है, वहां विकास की नई गाथा लिखनी है, और इसलिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के माध्यम से वहाँ सड़कें बने, उस पर विस्तार से बात हुई है। वहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंडों को थोड़ी छूट दे जाए, उस पर चर्चा हुई है। हम लोग सकारात्मक हैं। सिद्ध भारत जी राम जी के अंतर्गत उन्होंने 2 फैसले किए हैं, एक तो सारे मुक्ति धामों का तेजी से निर्माण और शौचालयों का निर्माण। कृषि से संबंधित विषयों पर भी RKVY कृषि उन्नति योजना, उसकी मदर सैंक्शन पहली जारी कर दी है। बहुत संतोषजनक प्रगति छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास के और कृषि मंत्रालय के कामों की है।
6: वहीं मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केंद्रीय मंत्री से मुलाकात सार्थक रही और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

0: आज केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से मुलाकात किए हैं और जिस तरह से हमारा बस्तर नक्सल मुक्त हुआ है वहां पर विकास की बहुत आवश्यकता है और अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फोर फेस में काफी सड़कें मिली हैं लेकिन वहां पर आबादी बहुत विरल है तो 100 आबादी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क पहुंचाना है उसमें कुछ छूट के लिए आग्रह करने हम लोग माननीय मंत्री जी के पास आए थे और उन्होंने उसमें पहल करने का उन्होंने आश्वस्त किया है।
1: इसके अलावा नई दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री जुएल ओराम से भी मुलाकात कर धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत बस्तर संभाग के 7 जिलों के 461 दूरस्थ और पूर्व नक्सल प्रभावित गांवों तक ग्रिड बिजली पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार से 435 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता का अनुरोध किया। प्रदेश की कटघोरा डोंगरगढ़ नई रेलवे लाइन परियोजना को रेल मंत्रालय और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से विकसित करने पर सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान कल केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर इस परियोजना के साथ ही प्रदेश में रेलवे अधोसंरचना के विस्तार को लेकर चर्चा की। बैठक के दौरान बताया गया कि लगभग 295 किलोमीटर लंबी कटघोरा डोंगरगढ़ परियोजना की रेल लाइन कटघोरा करतला मुंगेली कवर्धा और खैरागढ़ होती हुई डोंगरगढ़ तक जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में डिजिटल भारत निधि के तहत प्रस्तावित 2305 नए मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी है। इस सिलसिले में नई दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि तकनीक का लाभ केवल शहरों तक सीमित न रहे बल्कि सुदूर वनांचल और जनजातीय क्षेत्रों के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। मीडिया से बात करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 साल की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन मंजूर किया गया है। संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समरसता संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से पवित्र माटी युक्त कलश लेकर निकला भाजपा का प्रतिनिधिमंडल आज राजधानी रायपुर पहुंचा। बंजारी माता मंदिर से ये यात्रा शहर के प्रमुख स्थानों से होती हुई श्री राम मंदिर पहुंची जहां विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन कर कलश की स्थापना की गई। भाजपा प्रदेश महामंत्री और संत रविदास जयंती कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक अखिलेश सोनी ने बताया संत रविदास के समरस समाज के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह माटी युक्त पवित्र कलश अगले चरण में प्रदेश के सभी जिलों में जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
2: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे YouTube चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
1: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला कलेक्टरों पुलिस अधीक्षकों और संबंधित विभागों के अधिकारियों से संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी रखने तथा बाढ़ और जलभराव की आशंका वाले इलाकों में समय पर राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने को कहा है। इस बीच लगातार बारिश के चलते प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं और कई गांवों का सड़क संपर्क कट चुका है। बीजापुर जिले में लगातार बारिश के चलते इंद्रावती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने भोपाल पट्टनम क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। वहीं उसूर ब्लॉक में तालपेरू नदी में फंसे नवजात शिशु और उसकी मां सहित पर्यटकों को SDRF और राजस्व अमले ने सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला। इसी तरह बलौदाबाजार के तुरमा गांव में गुरुवार रात 4 ग्रामीण बाढ़ में फंस गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही नगर सेना की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। प्रदेश में खाद की कालाबाजारी करने के मामले में 470 से अधिक जगहों पर कार्रवाई की गई है। ये जानकारी कृषि मंत्री

0: रामविचार नेताम ने आज रायपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को गुणवत्ता वाले बीज और खाद देने में लापरवाही की शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि खेल मैदानों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाकर उन्हें तत्काल बच्चों के खेलकूद के लिए उपलब्ध कराया जाए। धमतरी में समीक्षा बैठक लेकर उन्होंने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों की दीवारों और प्रमुख स्थलों पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 लिखने के निर्देश दिए। प्रदेश के सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक की परीक्षाएं एक ही समय पर होंगी। इस वर्ष तिमाही परीक्षाएं 21 सितंबर से 30 सितंबर तक जबकि छमाही या अर्धवार्षिक परीक्षाएं 1 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच आयोजित होंगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने चालू शैक्षणिक सत्र के लिए परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी है। इसके साथ ही सभी जिलों में परीक्षा संचालन और मूल्यांकन की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर परीक्षा समिति गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए ऑनलाइन डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है। राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मिर्जा एजाज बेग ने बताया कि राज्य से 787 यात्रियों का चयन किया गया है जबकि 241 आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। चयन सूची हज कमेटी की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश में ज्वाइन BJYM सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि अभियान 23 जुलाई से शुरू हुआ है जो 20 सितंबर तक चलेगा। आगामी दिनों में प्रदेश में अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य में बिजली की दरों में कमी और स्मार्ट मीटर वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी कल 1 अगस्त से आंदोलन करेगी। ये जानकारी आज रायपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने दी। उन्होंने बताया कि बिजली दरों की बढ़ोतरी तथा स्मार्ट मीटर वापस लेने के साथ ही 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस आंदोलन करने जा रही है। राज्य की सहायक मत्स्य अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 की चयन प्रक्रिया और परीक्षा परिणाम को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में गंभीर कमी और अपने पूर्व आदेशों के अनदेखे पाए जाने के बाद पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से करने का आदेश दिया है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार विश्व स्तनपान सप्ताह पर यूनिसेफ की पोषण आहार विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा देशपांडे से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 1 अगस्त को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, बस्तर के कायाकल्प सहित विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने की दी मंजूरी और लोक शिक्षण संचालनालय ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 1 से 12वीं तक की तिमाही और अर्धवार्षिक परीक्षाओं की समय सारणी जारी की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। कार्यक्रम में सभी का एक बार पुनः स्वागत। लीजिए पेश है लता मंगेशकर और इला अरुण की आवाज़ में लम्हे फिल्म का गीत। आनंद बख्शी की रचना है, शिवहरी ने संगीत से इस गीत को संवारा है और ईमेल के जरिए जिन श्रोता साथियों की पसंद हम तक पहुंची है उनके नाम हैं महाराष्ट्र से रुपेश, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश, यवतमाल से राहुल, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र साहू, यवतमाल से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता लोखंडे, महाराष्ट्र से सोपान, वसंतराव, निवृत्ति, नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह। धरनी सरगांव से चंदूलाल पटवार।

सुनीता, हर्ष, विनित, कृष्टि पटवा, पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, अडार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, प्रिंस, एकांश, पैठन से सुरेश, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया, नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकम्मा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश, मोहम्मद शादाब खत्री, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता, जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र, आदर्श, सार्थक, अलौकिक, राजगढ़ से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, यवतमाल से पंजाब, यशोधरा, श्रव्या, बठेना पाटन से परमेश्वरी साहू, राजबत्ती, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश, रेशमा साहू, करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन, लचनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार, राजनंदगांव से बल्लू साहू, बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या, राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल और पूजा, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, रोनी, ऋषिकेश, जीविका, और इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है, खतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेहांश, कान्हा, आदित्य देवांगन ने, बुड़गहन से हमारे साथी राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, कुरगीरत, गुरशब्द सिंह, जालंधर से संदीप, ज्योति, मन्नत, कमल, कंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन, सहारनपुर से सुरेश, आशु, सोनाली, बरेली कैंट, चनहेटी से विनेश कुमार, रागिनी, मुस्कान, सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन, पल्लवी और राजेश्वरी, ग्वालियर से सुरेश, किरण, लाव्या, आरव और एस के पप्पी, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी, नीरज, शुभम, सौरभ रावत, बिलासपुर से शनुलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रजन साहू, हेमंत, धर्मदास, वाधवानी, नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु, भिलाई से नौशाद, अहमद सिद्दकी, हमीदुन, जीशान, शाहनवाज, अहमद सिद्दकी, उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह बैंकरा, गुरनी, करिश्मा, सुमार साय, कलेश्वर, सुखराम, हीरामणि, ऐश्वर्या पैकरा, महाराष्ट्र से विजय रतन, ओम कुमार, करजत मुंबई से अहमद भाई पुलवाले, दुखनी सदफ, जूही इकबाल, इमरान, आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया, मंतशा, आशु, अहमद फूलवाले, दिल्ली से प्रमिला, हेमा और अंतरा सिंह, डुमराव से वली उल्ला अंसारी, सोनम वली और आसमा वली ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो ईला अरुण और लता मंगेशकर के युगल स्वर में लीजिए पेश है लम्हे फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं ईमेल करें, गीत सुनिए। ये कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर में नमक हलाल फिल्म से। रचना अनजान की है और धुन बनाई है बप्पी लाहिड़ी ने। पसंद ईमेल के जरिए जिन श्रोताओं ने भेजी है उनके नाम हैं तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश, सौरभ शाइना, मैंडी शर्मा, दूल्हापुर यूपी से मोहम्मद फरहान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव, भानुप्रिया, माधुरी, किरण, हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मंजू भाटिया और प्रियंक भाटिया, हरियाणा से जसबीर सिंह, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत, नागपुर से विशाल, शैलेश, टुक टुक प्रिंस, एकांत, सुमित, ध्वनि, पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो, तिलहारा से प्रकाश नर्मदा सुजाता, मुंगवाल से भारत राम पटौडी, जयंती हेमंत उमंग मोक्ष पटौडी, करनाल से सुधीर

0: नूतन, संदीप, जगमोहन, प्रतिभा, इशप्रीत, कालेगांव, जाफराबाद से सुधाकर राजे, प्रशांत राजे, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वत देशमुख और सानवी देशमुख। दिल्ली से अजीम वकार, मायरा अजीम, नगमा अजीम। गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ, ऋचा देवांगन। रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ सिंह। अकोला से रमेश, वैशाली, धनंजय। दिल्ली से सोनम, सना, अदीबा। मालोट से रमेश कुमार, गीता देवी, गगनदीप, आरजू, गुड्डू। दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्वनी, विपुल कामड़े। जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां और उनके साथी। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी। इन सभी की पसंद पर लीजिए पेश है नमक हलाल फिल्म का ये गीत।
1: अरे अरे अरे ना ना ना, ना।

श्रोताओं, किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल स्वर में नमक हलाल फिल्म का गीत अभी आपने सुना। रचना अनजान की थी और धुन बनाई थी बप्पी लाहिड़ी ने। और इस अंतिम गीत के साथ ही ईमेल करें, गीत सुने, ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। संध्या के इस वक्त 7:20 होने को हैं। चलिए श्रोताओं, अब रुख करते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा की ओर।

ग्राम सभा के सुनैया जम्मो संगवारी मनला नंदू भैया के राम राम जय जोहार। संगवारी हो देखो खेती किसानी के काम बूता बढ़िया चलत है और पानी कांजी जौन है ना तेन बेरा बेरा में घलाव बढ़िया ले रिमझिम रिमझिम गिरत है। किसान मनला भूया के देवता कहे जाते संगवारी हो और किसान मन के हित मा भारत सरकार द्वारा बढ़िया योजना चलाते संगवारी हो जिला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम ले जाने जाते और गोट बात करबो हमन यही के ये योजना ला 2019 में शुरू करे गए रही संगवारी हो। एकर उद्देश्य यही हवा है कि किसान मन ला आर्थिक सहायता प्रदान करना है जेकर ले किसान भाई मन खेती किसानी करत है तो ओकर बर बीजा की व्यवस्था कर डारे खातू माटी है तो ओकरो बर कीटनाशक जौन लगते खेती किसानी में तेकर बर सिंचाई और दूसर आवश्यक कृषि कार्य के जौन खर्चा है तेला आसानी ले बढ़िया उठा सके ऐसे करके किसान सम्मान निधि योजना निकाले है भारत सरकार है। संगवारी हो बात करबो तो ये योजना के अंतर्गत जौन पात्र किसान हवाए तीन किसान परिवार ला प्रति वर्ष 6,000 रूपया के सहायता दे जाते और ये राशि हर 2,000 रूपया 3 समान किस्त में सीधा किसान मन के बैंक के खाता में जाते संगवारी हो। ये प्रक्रिया के प्रत्यक्ष लाभ ला अंतरण करे बर यानी जो डीबीटी है ओला कह

0: जाते जेकर ले पैसा हर बिना कोनो बिचौलिया के सीधा किसान मन तक पहुंच जाते। संगवारी हो, ये योजना के लाभ लेहे बर किसान मन लचेत रखना है कि आधार कार्ड रहे उनकर पास, बैंक के खाता रहे और ई केवाईसी करवाना बहुत जरूरी होते। काबर के बैंक खाता और ई केवाईसी में त्रुटि है थोड़ थार तो ओकर ले किस टाइम में परेशानी हो सकत है। एकरे से तीर बेरा बेरा मा अपन दस्तावेज के जांच ला जरूर करवावे। और किसान सम्मान निधि के लाभ बढ़ कन्हे संगवारी हो, ये योजना के लाभ ले किसान मन ला खेती के मौसम मा आर्थिक सहायता मिलते। एकर ले किसान के जौन आर्थिक स्थिति हवे तेन हर बढ़िया मजबूत होते और खेती मा आत्मनिर्भरता घलो हर बढ़ते। कहूं कोनो किसान मन ला ये योजना के संबंधित जौन भी समस्या हवे तो वो मन अपन निकटतम हवाई कृषि विभाग, कॉमन सर्विस सेंटर हवाई, जन सेवा केंद्र हवाई, वहां जाके बढ़िया ले संपर्क कर सकत है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ ले सकत है। संगवारी हो, गोट बात तो बढ़िया करें, फिर अवाव संदेशा घलो बढ़िया वाला सुना था।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना।
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: संगवारी हो, देखो बढ़िया संदेशा सुनेन, गोट बात करेन और हमन आप मन बर बढ़िया गीत लाए हन और ओकर पहली गोठियाबो के सावन आया खुशिया लाया कही के धरती माँ का हुई हरियर बगरीच, रिमझिम रिमझिम जौन बरसे पानी और महके खेत और बगिया रानी कही के पेड़ माँ झूला कस झूलते। संगवारी हो, लईका मन हंसते गीत गाते और मयूर हर नाच के पंख ल फैलाते, बादर जौन हे तेन हर बढ़िया गाते और नभ माँ आते। और आवाओ संगवारी हो, ऐसने हमन गाना सुना थन जौन तोर आगे गुंगवा थे कही के नकुल जाय सवाल सावित्री कहार जी मन के स्वर में।

सिर तो बात है संगवारी हो, देखो सावन लगे हवाए तो आगी पानी जोन हवाए ओमा गुंगवाए लगते और सुघर गुत्तूर गीत मा बढ़िया से भाव भंगेमा में रहीज नकुल जायसवाल जी सावित्री कहार जी मिन के स्वर मा। और देखो संगवारी हो गोठ बात हमन करबो तो आप मन भर हमन बढ़िया बढ़िया जानकारी लेके आथन जेमा हमन आज के जौन फोन इन कार्यक्रम है तेमा लेके आए हवन। और ओकर विषय हवे संगवारी हो के शरीर में होवैया तिल मस्सा हवे, तिल मस्सा होए लगते ना तो ओहर कैंसर में परिवर्तित घलव हो जाते संगवारी हो। तो ये कर लक्षण कैसे होते, कैसे जानबो, कैसे चिन्हबो है ना, तो वही बारे में हवे पहचान और निदान और उपाय के बारे में घलव बताए हवे विशेषज्ञ मन हवे संगवारी हो डॉक्टर अजय पांडे जी मन चर्म रोग विशेषज्ञ है बिलासपुर में। और संचालन में हवे जित्तू भैया मन, तो आवाओ ये गोठ बात ला फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से आप मन तक पहुंचा था।

0: त्योहार फोन इन कार्यक्रम में आप जम्मू किसान भाई और समस्त श्रोता मन के हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमन आपन बर लेके आथन फोन इन कार्यक्रम और सुघर सुघर विषय होते। आज के हमर विषय है शरीर में होए वाले तिल और मस्सा के कैंसर में परिवर्तित होए वाले लक्षण के पहचान, निदान और ओकर उपचार। और इस सुघर विषय ऊपर जानकारी दिए बर हमारे बीच बैठे है बिलासपुर के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे जी। मन सबले पहली हमर पहुना के स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब आपन ला राम राम, जय जोहार।
1: राम राम जीतू जी।
0: जैसे हमर आज के विषय है, हमर जिन किसान भाई है, हमर श्रोता मन है, उमन के जिन भी समस्या हो ही उला आप मन सो

0: फोन के माध्यम से रखें। पहली ये विषय ऊपर चर्चा कर लेथन, ये तिलो मस्सा होते का सबले पहली हमन ला बतावा, हमर शरीर में हर जगह देखे जाते।
1: देखिए तिल और मस्सा दो अलग अलग चीजें होती जी। ये एक नहीं होती। तिल क्या होता है? तिल रंग बनाने वाली कोशिकाएं जिन्हें हम मेलानोसाइट कहते हैं उनका गुच्छा तिल कहलाता है, जबकि मस्सा चमड़ी की ऊपरी परत का उभार मस्सा कहलाता है। अब मस्से भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इन्फेक्टिव और दूसरा नॉन इन्फेक्टिव, मतलब कि एक जो कि किसी जीवाणु कीटाणु की वजह से होते हैं जैसे कि वाट या वाटर वाट मोलास्कम कंटाजियोसम। वाट अक्सर बड़े लोगों में और वाटर वाट मोलास्कम कंटाजियोसम अक्सर बच्चों में देखने को मिलते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मस्से के दो तरह होते हैं, एक जो कीटाणु से होते हैं और दूसरा जो बिना कीटाणु से होते हैं। ये उम्र और मोटापे की वजह से होते हैं। ये यूजुअली 30 से 50 साल के बीच में देखने को मिलते हैं, कांख में, आर्मपिट में, गर्दन में, चेहरे में। ये उम्र और वजन की वजह से होते हैं। ये नॉन इन्फेक्टिव होते हैं, मतलब कि ये एक से दूसरे को नहीं फैलते हैं, ये आपको किसी तरीके से परेशान नहीं करते हैं। हाँ, ज्वेलरी वगैरह पहनने के समय यदि फंस जाएं तो उस समय छिल कट जाते हैं तो दर्द और ब्लीडिंग करते हैं, बात अलग है। अदरवाइज ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते। हाँ, लेकिन जो इन्फेक्टिव मस्से हैं वो ज़रूर प्रॉब्लम करते हैं, उस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे।
0: मेरा आप मोटापा लाए कारण बताया, तो मस्सा पर मोटापा कारण काहे बनते एला थोकन बतावा।
1: जब आपका वजन ज्यादा होता है, आपका वजन होना कितना चाहिए, आप अपने हाइट को सेंटीमीटर में नापिए और यदि आप पुरुष हैं तो उसमें से 100 घटा दीजिए। जैसे आपका 105 फुट 6 इंच है, आपकी 168 सेंटीमीटर हाइट होगी तो उसमें से 100 घटा दीजिए तो बचा कितना? 68। आपका 68 वजन होना चाहिए यदि आप 5 फुट 6 इंच के तो, और महिलाओं के लिए 110 घटा दीजिए।
0: अच्छा,
1: तो ये आपका वजन आइडियल होना चाहिए। यदि आपका वजन इससे ज्यादा है तो ये ज्यादा वजन आपके लीवर के ऊपर प्रेशर डालता है,
0: ठीक,
1: और उस प्रेशर के फलस्वरूप लीवर से IGF-1 नाम का केमिकल निकलता है। ये IGF-1 नाम का केमिकल शरीर में जहां तहां मस्से करवाता है, न सिर्फ मस्से बल्कि गर्दन या जहां पे भी शरीर मुड़ता है जैसे जांग कान गर्दन, वहां पे वेलवेटी काला रंग करवाता है। वो भी इसी के कारण होता है। और देर सवेरे ये आपको शुगर नाम की बीमारी गिफ्ट कर देता है
0: जी। मतलब अत्यधिक जिन चर्बी होते मोटापा होते तिन हमारे लीवर के ऊपर प्रेशर डाले और अलग अलग प्रकार की बीमारी हमन ला गिफ्ट स्वरूप देते रही है ना। आगो बढ़बो जिन हमर विषय रहे से, कैसन मस्सा ला हम जाने या उमा का बदलाव देखे ला मिलते जेखर से हमन ला डराए के जरूरत है और डॉक्टर से मिले के जरूरत है?
1: मैं फिर कहत हूँ कि तिल और मस्सा अलग अलग होता है। तिल रंग बनाने वाली कोशिकाओं का कलेक्शन होते हैं, तो तिल कैंसर में चेंज होते हैं, मस्से एक से दूसरे को फैलते हैं
0: जी।
1: तो अब अभी फिलहाल हम तिल में बात कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो
0: जी।
1: तिल जो है वो आप पैदाशी हो सकते हैं, पैदा होने के बाद हो सकते हैं। जो पैदाशी होते हैं उसको हम कंजेनाइटल तिल कहते हैं। तिल हमको 30 से 40 साल तक नए आ सकते हैं। तिल पैदाशी भी होते हैं और पैदा होने के बाद भी होते हैं। जो कुछ भ्रांतियां हैं वो मैं दूर कर दूं। आपको तिल सिर्फ बचपन मीन्स पैदा होते साथ ही नहीं होते, पैदा होने के 30 से 40 साल तक आपको तिल हो सकते हैं। अमूमन 30 से 40 साल तक आपको नया तिल हो सकता है। एक सामान्य व्यक्ति में 30 से 40 तिल का होना सामान्य बात है। और जो तिल होते हैं वो सिर्फ काले नहीं होते, वो नीला होता है, वो लाल होता है, वो स्किन के कलर का होता है, वो बाल वाला होता है, वो भूरा होता है, वो मस्से जैसा दिखने वाला भी होता है ना। तो अब हम आते हैं कि तिल को हमको कब ज्यादा सीरियस लेना चाहिए, जो हमारा मुख्य विषय है। तो जो तिल है उसके लिए आप एक शब्द याद रखें, ABCDE।
0: ओके,
1: मैं फिर से कहूंगा ABCDE। ए फॉर एसिमेट्री, इसको मैं हिंदी में ही बताऊंगा, ए फॉर एसिमेट्री, बी फॉर बॉर्डर, सी फॉर कलर, डी फॉर डायमीटर और ई फॉर इवोल्यूशन। तो जो कोई तिल होता है हमको कैसे पहचानना है कि ये तिल कैंसर में तब्दील हो रहा है? आप तिल के बीचों बीच एक सीधी रेखा कीजिए और रेखा के दोनों ओर के भाग यदि समान है, आधा दायां आधा बायां हो गया, यदि दोनों समान दिखते हैं मतलब कि वो सिमेट्रिकल तिल कहलाता है, वो तिल कैंसर में नहीं बदलेगा। बी फॉर बॉर्डर, सामान्य तिल जो रहता है उसके बॉर्डर मतलब की परिधि रेगुलर रहती है, गोल रेगुलर रहती है। यदि वो अनियमित सी हो जाए, इरेगुलर हो जाए, हैजी हो जाए, यदि सामान्य तिल भूरे या काले लगभग एक कलर का होता है, यदि उसके कलर में कोई अचानक से चेंज हो तो आप डॉक्टर से

0: डॉक्टर साहब हमर कॉलर जुड़ गए हैं, ले लेथन फिर गोठियाबो आप मन सर चर्चा ला आगू बढ़ाबो। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ आपके स्वागत है फोन इन कार्यक्रम में, बतावा कहाँ से बोला था, क्या नाम है आपके?
1: मेरा नाम नेहा शुक्ला है, मैं भिलाई से बात कर रही हूँ।
0: जी शुक्ला जी, आपके स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, क्या समस्या है, सवाल है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, बतावा।
1: मुझे कोई समस्या नहीं है, मेरा एक जनरल सवाल है कि आजकल एंटी एजिंग को लेकर के काफी महिलाएं चिंतित रहती हैं, तो उसके लिए क्या क्या स्किन

0: एंटी एजिंग को लेकर के काफी महिलाएं चिंतित रहती हैं, तो उसके लिए क्या क्या स्किन जो डॉक्टर हैं वो क्या सलाह देते हैं, क्या स्किन केयर करना चाहिए, अच्छा। क्या प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए और क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं इसके लिए।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब बैठे हैं आज हमारे बीच हैं, बिलासपुर के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे जी, आप मन के सवाल सुन लिए हैं, आप लोग बताते हैं।
2: नेहा जी, वैसे तो हम आज तिल और मसों पे चर्चा करने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी आपके प्रश्न का जवाब दे देते हैं। जहां तक हो सके जाड़ों में मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कीजिए और गर्मियों में सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए, और रात को विटामिन ए के का सीरम आता है उसका इस्तेमाल कीजिए मॉइस्चराइजर के साथ, तो ये काफी अच्छा एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। और एक रूटीन को फॉलो कीजिए, एक अच्छी नींद लीजिए, योगा कीजिए, और सही समय पे खाना और संतुलित खाना खाइए जिसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज्यादा हो, ये आपकी उम्र को और स्किन की ताजगी को बढ़ाएगा।
0: सर, मेरा एक और प्रश्न है आपसे कि जो तिल होता है क्या उसे होने से रोका जा सकता है, मसों को या तिलों को होने से रोका जा सकता है या होने के बाद ही इसका इलाज हो सकता है?
2: नेहा जी, हम तिल को होने से नहीं रोक सकते। हाँ, यदि तिल हो गए हैं तो हम उसको लेजर के माध्यम से जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ, होने से हम इसको नहीं रोक सकते। एक बात जरूर है कि तिल यदि हमारे शरीर में है तो हमको उस पर ध्यान देते रहना है कि उसमें ABCD वाले लक्षण ना दिखे, जैसा अभी मैं बात कर रहा था कि उसमें सिमेट्री हो, उसके कलर में कोई अचानक से चेंज ना हो, उसके बॉर्डर्स इरेगुलर ना हो। उसका यदि कोई तिल जो है वो 6 mm से बड़ा रहता है तो अमूमन उसके चांस कैंसर में बदलने के बाकी तिलों से ज्यादा रहते हैं। और यदि उसमें सडन कोई चेंज हो, जैसे दर्द, खुजली या जलन हो, उसमें ब्लीडिंग या क्रस्टिंग होने लगे, तो समझिए कि वो कैंसर में तब्दील हो रहा होता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी जानकारी को थोड़ा बढ़ाऊंगा कि जो स्किन का जो कैंसर है, जिसको हम तिल को सोचते हैं तिल ही कैंसर में बदल गया है क्या, नहीं, हमारे चमड़ी के जो कैंसर होते हैं वो बेसिकली जो सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर होता है वो बेसल सेल कार्सिनोमा होता है, जो अक्सर हमको एंगल ऑफ माउथ से कान के ऊपर वाले हिस्से में देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है और तीसरे नंबर पे मेलानोमा होता है, मतलब वो कोशिकाएं जो तिल बनाती हैं उनसे होने वाला कैंसर मेलानोमा कहलाता है। इसकी जो सबसे कॉमनेस्ट वैरायटी जो होती है, देखी जाती है इंडिया में, वो है एक्रल लेंटिजेंस मेलानोमा। ये हाथ और पैर के तलवों में अक्सर वृद्ध लोगों में देखने को मिलता है, तो यदि बुढ़ापे में हाथ और पैर के तलवे में कोई नया और तिल दिखे जो लगातार बढ़ रहा हो तो वो कैंसर हो सकता है, उसके लिए सतर्क रहे।
0: थैंक यू सो मच।
1: हेलो, फोन इन कार्यक्रम में आपके स्वागत है, कहाँ ले बोला था जी, बतावा।
3: हाँ भैया, मोर माया भरे राम राम, नवागढ़ कटाई ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया।
1: बतावा का प्रश्न है।
3: हाँ भैया, जैसे शरीर में मत्सा हो जाते और वो आप फूट जाते भैया तो फैलते भी, तो एक उपचार हमन कैसन ढंग ले करीन, ये कौन प्रकार के आए, यही जम्मो बात ला पूछे बर हमन है डॉक्टर भैया, मेरे फोन लगाए हमन भैया।
1: ठीक है डॉक्टर भैया, आपके सवाल ला सुन लिए हैं, आप ला बतावाते हैं, ले बात चेत लगा के सुनिए।
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि ये फैलने वाले मसों के बारे में थोड़ा बताइए। तो जैसा हमने शुरू में ही बताया था कि मसे दो तरह के होते हैं, एक जो एक व्यक्ति से दूसरे को नहीं फैलते वो उम्र और वजन की वजह से होते हैं और अक्सर कांख और गर्दन के पास होते हैं, और एक वो जो कि एक से दूसरे को फैलते हैं जो जीवाणु कीटाणु या वायरस से होते हैं। इसको जानना बेहद जरूरी है क्योंकि ये एक से दूसरे से फैलते हैं, ये आपसे आपके शरीर में भी फैलते हैं। जो दो कॉमन फैलने वाले मस्से हैं, एक को वॉट कहते हैं और दूसरे को मलास्कम या वाटर वॉट कहते हैं। वॉट लगभग सभी में देखने को मिलता है, बच्चों में, बूढ़ों में, यंग लोग में, सभी में। वाटर वॉट अक्सर बच्चों में देखने को मिलता है, ये पानी के दाने जैसे अक्सर चेहरे पे आते हैं और किसी बच्चे को है वो दूसरे बच्चे के साथ खेला तो उस फैल जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे इसकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है और ये वाटर वाले वॉट अक्सर अपने आप से चले जाते हैं। यदि नहीं जाए तो निकट के चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलकर आप इनका निदान ले सकते हैं। एक और जिसको हम बार बार कह रहे हैं वॉट, ये किसी भी उम्र में होता है, शरीर के किसी भी भाग में होता है और पैर से लेकर सर तक, जननांगों से लेकर हाथ पैर कहीं पे भी हो सकता है। ये फैलने वाले मस्से होते हैं, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होते हैं, ये आपसे आपको आपके शरीर में कहीं भी फैल सकते हैं और आपका यूज क्या हुआ टॉवल यदि कोई दूसरा व्यक्ति यूज करे तो आपसे उसको भी फैल सकते हैं। इसके बारे में हम जोर देकर विस्तृत तौर पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन हम इन मसों को ना देखें, और जोर इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि ये फैलने वाले होते हैं। यदि आप इसके बारे में अच्छे से जानेंगे तो आप अपने आप को भी बचा पाएंगे और अपने से अपने घर वालों को

0: भी बचा पाएंगे फैलने से।
1: ठीक।
0: तो होता क्या है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होने वाला ये जो मस्सा है, जो चमड़ी में एक उभार की तरह दिखता है, इसमें कोई दर्द और खुजली होती नहीं, इसलिए व्यक्ति इसको इग्नोर करता है। न तो खुजली होती, न दर्द, न जलन, न बुखार, इसलिए आदमी इग्नोर करता है। जब वो खराब दिखने लगता है तब वो हमारे पास आता है। और चूंकि इसकी कोई दवाई नहीं बनी है,
1: ठीक,
0: मैं फिर से बोलूंगा, इसकी कोई दवाई नहीं बनी है, इसलिए इसका एक ही इलाज होता है कि हम इसको निकालें। हम विशेषज्ञ चिकित्सक इसको लेजर की मदद से निकालते हैं। लोग गांव में इसको चूना या एसिड लगाकर झड़ाने या निकालने का प्रयास करते हैं।
1: हाँ, जो कि पान के पत्ता अभी सुनता हूं मैं।
0: हाँ, जो कि गलत है, चूना और पान का मिश्रण लगा के, जो कि गलत है, उससे चमड़ी जल जाती है और जल के झड़ जाती है। उससे आपको परमानेंट निशान पड़ जाता है। हमें बड़ा अफसोस होता है, कई बार गांव की यंग लड़कियां आती हैं और चेहरे पे मस्से को हटाने के लिए इस तरह के प्रयोग की रहती हैं और वो परमानेंट निशान छोड़ चुका होता है। हमें भी बहुत बड़ा देख के दुख होता है, इसलिए बार बार इस चीज को जोर देकर बता रहे हैं कि इस तरह का प्रयोग ना करें और कम से कम चेहरे पे तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके जो निशान रहते हैं वो परमानेंट पड़ जाते हैं। जबकि जब आप लेजर से निकलवाते हैं तो कोई निशान नहीं पड़ता। और एक और बात ध्यान देंगे कि जो छोटी छोटी जगहों पे मीन्स जो डॉक्टर्स हैं जो बहुत छोटी सी मशीनों से निकालते हैं उससे भी दाग पड़ जाते हैं, तो इसको अनुभवी चर्म रोग विशेषज्ञ चिकित्सक से ही निकलवाएं ताकि आपको एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी ना मिले। और एक और बात जोर देकर कहना चाहूंगा कि चूंकि इन मसों की कोई दवाई नहीं बनी है, इसलिए इनको हमको लेजर से कई बार निकालने की जरूरत पड़ती है। और साथ में हम आपको सलाह देते हैं कि आप तो इसको हर 15 दिन में निकलवाइए जब तक कि आपका पीछा ना छोड़े। साथ में ही कुछ ऐसी सलाह देते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं ताकि ये दोबारा ना हो। इनका दोबारा ना होना आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। और इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? जिंक की टैबलेट खाने से। सही पोषण, सही समय पे एक अच्छी नींद लीजिए, अच्छा संतुलित खाना खाइए, दिनचर्या को नियमित कीजिए, मानसिक तनाव कम कीजिए, योगाभ्यास कीजिए। इन सब चीजों से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, तो जो संक्रामक मस्से होते हैं वो आपको कम होते हैं। तो यदि संक्रामक मसों से बचना हो तो एक अच्छी दिनचर्या, पौष्टिक भोजन, एक अच्छी नींद, व्यायाम, इसको फॉलो कीजिए।
1: जी, लेजर चिकित्सक की आप बात करे हा, चेहरा मा मस्सा के समस्या होते तो कतको मनखे मन, कतको इंसान मन डरते भाई ओला काटे जाए या लेजर चिकित्सा होही। लेजर वैसे हम जानथन सुनथन की भाई दर्द रहित होते, तो का होते, मतलब यही पूछना चाहता हूँ कि दर्द होते माँ के नहीं हुए के मामले दर्द होते, ला हमार श्रोता मतलब बतावा।
0: देखिए, लेजर को बहुत सरल शब्दों में कहूँ तो एक तरह की लाल कलर का प्रकाश पुंज होता है वो, है ना, जैसे बच्चों को लेजर से खेलते हुए देखे होंगे ना, बस वैसी एक कोलाइटेड बीम होती है, कोलाइमेटेड कोहरेंट बीम होती है, लाल कलर की एक रोशनी होती है जो आपकी चमड़ी पे पड़ती है और अवांछनीय जो मस्सा रहता है या अवांछनीय चमड़ी का जो पार्ट रहता है उसको वो बर्न आउट कर देती है, जला देती है। तो इसे कोई नुकसान नहीं होता। लेजर का नाम सुन के अक्सर लोग डरते हैं कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, बहुत ही कैलकुलेटेड डिवाइस वो रहती है, है ना।
1: एक संग हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, ले लेथन। हेलो,
2: हेलो सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, आपके स्वागत है फोन इन कार्यक्रम में, बतावा कहाँ से बोला था, क्या नाम है आपके?
2: मो नाम सतीश नेगी है रे, मैं बिलासपुर से बोला था।
1: वाह, चला नेगी जी, आपके स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, क्या प्रश्न है?
2: मोर दो क्वेश्चन रही से, पहला क्वेश्चन ये है रे मोर लड़का वर कि आजकल जनरली छोटे छोटे लड़का है रे बरसात के दिनों में मन खिलत रहते होती होती तो वो कहा हो जाते मन के रेसेस आ जाते और वो बहुत परेशान से खुजलात रहते, तो एक बार का उपाय किया जाए, ये मोर एक पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन मोर खुद के बार हरे, मैं मोर हमेशा ना फुल शर्ट पहने लागते हैं, काबर की जैसे मैं बाहर जाता हूँ तो वो ना मोर हाथ वाथ में ना थोड़ा करिया सन हो जाते, तो मुझे समझ में नहीं आया का क्रीम लगाओ कैसे करो, तो डॉक्टर साहब ने थोड़ा उपाय जानना चाहते
1: हैं। डॉक्टर साहब आपके प्रश्न सुन लिए हैं और आपकी जिन भी समस्या है उसका निदान कराते हैं।
2: जी, धन्यवाद सर।
0: वैसे तो ये चर्चा तिल और मस्सों पे थी, लेकिन फिर भी आपके प्रश्न का उत्तरित करते हैं। देखिए, जब भी आप धूप में जाएंगे तो चमड़ी के जिस हिस्से पे भी धूप पड़ेगी उसका काला होना, टैन होना स्वाभाविक है। ये वैसा ही है जैसे आपने पानी में हाथ डाला और हाथ गीला हो गया, है ना। तो इससे यदि आपको बचना है तो फुल शर्ट पहनिए और सनस्क्रीन लगाइए, यदि आप हाफ शर्ट पहन रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाइए। और

0: जहां तक हो सके शर्ट शर्ट का कपड़ा उतना भी मोटा नहीं होता कि वो सन से प्रॉपर प्रोटेक्शन दे सके, तो सनस्क्रीन लगाइए एटलीस्ट 30 SPF की और फुल शर्ट पहनिए, और यदि आप फुल शर्ट नहीं पहन रहे तो फिर 50 SPF की सनस्क्रीन लगाइए। ये तो आपका बच्चे के लिए। जो आपने पूछा कि बरसात के मौसम में यदि बच्चों को हमको रैशेस होने से बचाना है तो फुल शर्ट, फुल पैंट और फुल शर्ट पहनाइए। वहां जहां पे ज्यादा कीड़े मकोड़े या गंदगी है वहां पे खेलने जाने से रोकिए, क्योंकि उड़ने वाले कीट, बरसाती उड़ने वाले कीट पतंगे जब शरीर को छूते हैं तो नाना प्रकार के रैश कराते हैं। तो फुल स्लीव्स का कपड़ा पहनाना है, गंदगी या गंदे पानी या जहां बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं वहां पे थोड़ा सा खेलने कूदने से बचना है।
1: बहुत सुग्घर आपके जिन जवाब रहे से हमारे कालर मनु पर। फिर कालर जुड़ गए, डॉक्टर साहब ले लेते हैं। हेलो
2: हेलो,
1: आपके स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बतावा।
2: मैं पुष्पेंद्र कुमार चंद्रा बोल रहा हूँ, घासीदास विद्यालय बिलासपुर।
1: चंद्र जी आपके स्वागत है, बतावा का प्रश्न है।
2: हाँ, मैं तो होना चाहता हूँ कि दिन हम था बहुत झड़ा था।
1: अच्छा,
2: डॉक्टर साहब से कुछ उपाय चाहिए कि मैं उपाय लगता था।
1: डॉक्टर साहब, हमर चंद्र जी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। एक सवाल ये है कि ईमन के बाल झड़े के समस्या है, वैसे तो विषय से हट के है लेकिन इखर समस्या ला देखत हुए हम ले लेथन, तो काय खर समस्या के निदान होला बतावा।
0: देखिए, बाल का जो झड़ना है वो मेल और फीमेल में अलग अलग तरह का होता है। मेल में बाल झड़ने का मुख्य कारण एंड्रोजिनिक एलोप्लेशिया होता है, तो वहीं फीमेल में टेलोजिनिक एफ्लुवियम होता है। तो अच्छा होगा कि व्यक्ति विशेष को देख कर और ये जज करके कि बाल क्यों झड़ रहा है और किस प्रकार का झड़ रहा है। बाल दो प्रकार के झड़ते हैं, एक तो वो जो वापस नहीं आते और एक वो जो वापस आते हैं, जिसको हम स्कारिंग और नॉन स्कारिंग एलोप्लेशिया कहते हैं। तो मेल है फीमेल है, मेल फीमेल है तो उसमें कौन सा पैटर्न है, स्कारिंग है कि नॉन स्कारिंग है, और कौन सी डिफिशियंसी हो सकती है, ये एज ग्रुप को भी देख के पता चलता है। जैसे मेंस्ट्रुएशन वाली एज ग्रुप है तो आयरन की डिफिशियंसी बहुत कॉमन है, यदि ऑफिस वर्कर हैं तो विटामिन डी की डिफिशियंसी कॉमन है। तो इन सबको देखकर जज होता है। एक मोटा मोटा कोई मींस सबके लिए एक ट्रीटमेंट बाल झड़ने का नहीं होता, पुरुषों में, महिलाओं में और बच्चों में, तीनों में अलग अलग होता है। फिर भी यदि आप कुछ कॉमन जानना चाहेंगे तो बाल की बहुत सारी मल्टीविटामिन टेबलेट्स आती हैं मार्केट में, उसे आप 1 से 2 महीने के लिए ले सकते हैं। एक बात जिस पे मैं जोर देना चाहूंगा महिलाओं के लिए, महिलाओं और वो महिलाएं खासतौर से जो कि 15 से 45 साल के बीच में हो, तो उनमें क्या होता है कि रिलेटिवली आयरन की कमी होती है, तो उनमें टेबलेट तो आपके डॉक्टर बताएंगे ही जब आप जाएंगे तो आपको जज करके, लेकिन फिर भी जो महिलाएं हैं 15 से 45 साल की, उनको खाने में सुबह शाम थोड़ा थोड़ा गुड़, अंकुरित मूंग, अंकुरित चना और मूंगफली और प्रोटीन वाली चीजें जैसे सोयाबीन, ये खाने से बाल में फायदा देखने को मिलता है।
1: जी, कुल मिला के अगर हमला कुछ समस्या हो थे तो हम उखर जड़ तक जाए, डॉक्टर से मिली और समस्या के निदान ला पाए। आज के सुघर विषय रही से शरीर में होए वाले तिल और मस्सा के कैंसर में परिवर्तित होए वाले लक्षण के पहचान, निदान और उपाय। डॉक्टर साहब बढ़िया फुरिया के बताए हैं कि मस्सा से कैंसर नहीं हुए, तिल के अनवांटेड जिन रूप रही थे बदलते पुरिया के बताए हैं उखर से संभावना बने रही थे। इस विषय ऊपर आप डॉक्टर साहब डॉक्टर अजय पांडे जी सुघर जानकारी दिया है। बिलासपुर के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे जी हमारे कार्यक्रम में जुड़े। श्रोता मन के भी सवाल आए, आनी बानी के सवाल रही से उखर निदान करें, आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जीतू जी और धन्यवाद आकाशवाणी बिलासपुर मुझे मौका देने के लिए।
1: तो किसान भाई हो और हमारे समस्त श्रोता हो, आप आज के हमारे जिन फोन इन कार्यक्रम रही से ही मेरे तक रही से, अगला हफ्ता फिर नवा विषय नवा विशेषज्ञ मनसो मिलबो। तब तक देवा कार्यक्रम ले विदा। जित्तू भाईला राम राम, जय जोहार।
3: संगवारी हो बढ़िया फोन इन कार्यक्रम सुनेन और आज के जौन विषय रही शरीर में होवैया तिल और मस्सा हर जौन कैंसर में परिवर्तित हो जाते तो ओकर का लक्षण होते, पहचान का है और निदान का है, उपाय का है, ये विषय में बढ़िया जानकारी देते हैं विशेषज्ञ मन आप मन रहो डॉक्टर अजय पांडे जी, चर्म रोग विशेषज्ञ हो बिलासपुर में, संचालन करते हैं जीतू भैया मन। और संगवारी हो देखो हम यही केवो के सावन हर केवल वर्षा बस नो है, जीवन के नौ संदेश आए, प्रकृति के हम मान बढ़ावे और हर आंगन जौन हवा उमा पेड़ लगावे, ऐसे कहे जाते। किसान मन खेत में बीज ल बोथे संगवारी हो, मेहनत ले भविष्य ला संजोथे और ओकर श्रम के हमन करीन सम्मान, यही देश के सच्चा पहचान। तो अवा मिल के हमन प्राण लिहीन, जल जंगल और धरती ल बचाइन, सावन के ये पावन त्योहार ला प्रेम प्रकृति और सेवा के उपहार ला बढ़िया ले मनाइन। संगवारी।

हो हमर जौन इशारा है ओहर गुत्तूर गीत कति हवय तो आवाओ सावन के बुंदिया पानी कस ये सुघर गीत ला आप मन तक पहुंचाथन दुखिया बाई मरकाम और संगवारी मन के स्वर में।

0: हाँ संगवारी हो, बढ़िया गुत्तूर गीत सुनेन। और ये गीत लगाते ही दुखिया भाई मरकाम होकर संगवारी मन। और देखो संगवारी हो, अभी के बेरा में हमन गोठ बात करबो जौन कृषि विभाग डहल ले आप मन ला सलाह दे जाते। अभी के बेरा में कहूँ धान के हमन बढ़िया बुवाई करत हन, सीधी बुवाई है, वो कतार बोनी हवे, तो वो बेरा में संकरी और चौड़ी पत्ता वाला जौन खरपतवार है, बंद कचरा आ जाते, तो ओकर बर हमन ला चेत करना है कि धान के बुवाई 20-25 दिन की भीतरी हो गए है, तो ऐसे में आवश्यकता अनुसार खरपतवार नासी हवे बिस्पायरी बेक सोडियम ओला 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर ले छिड़काव करथन तो बढ़िया रही। संगवारी हो, धानेज के बुवाई को ले ही विधि ले हमन करथन तो बीजा की दर 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर ले लेहे बर पड़ते। लगातार कहूँ पानी गिरा थे ना तो धान के अंकुरित बीजा के ला हमन खेत में छिड़कथन, छिड़क के हमन और चाहे ड्रम सीडर द्वारा हमन कतार में इला लगा सकत हन। तो ओ बेरा में हमन ला ध्यान रखना है कि बीजा के उपचार 10 लीटर पानी में 1.7 किलोग्राम सामान्य जौन नून रहते नमक के घोल ले उपचारित करके सफा पानी में हमन 2-3 पैत धो के 2.5 ग्राम ले कार्बेंडा जिम ले के प्रति किलो बीजा के दर ले उपचारित करत हन तो बने रहते। और संगवारी हो, इसने चेत रखना हवे भाई, गाय गरुआ के हमन पालन करथन, पशु पालन करथन, तो ओला गलघोंटू है, लंगड़ा बुखार है, ये बीमारी ले बचाव करे बर टीका लगाना एकदम जरूरी छोथे, तो चेत रखियो जी। पशु मन ला गीला चाहे पानी भरे वाला जगह में मत रखियो, जैसे हमन नहीं रही ना तैसे उहू मन ला चेत रखना हवे। पशु मन के जौन मुर्गी में हमन देखथन तो रानी खेत के बीमारी आ गए संगवारी हो, तो एक बचाव करे बर आप मन ला पहलिया टीका F1 ला 7 दिन के भीतरी देना हवे संगवारी हो। गोठ बात एक करत करत देखो बेरा हर कहते जाए के, तो हमन केबो के ग्राम सभा कार्यक्रम ले देवाओ नंदू भैया ला विदा। जय जोहार, राम राम।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में संसद समीक्षा का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।

में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विषय को लेकर आसन के निकट पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कई बार आग्रह किया है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय है और सदस्य का समय है, आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए, आप सदन को चलने दें। उन्होंने कहा कि आज प्रियंका गांधी का भी प्रश्न होना है और वे प्रश्न पूछने के लिए खड़ी हैं, लेकिन आप लोग सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। श्री बिड़ला का कहना था कि सदन के अंदर तख्तियां और बैनर लेकर आना संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ माननीय सदस्य जिस तरह भेष बदल बदल कर आते हैं, उन्हें मेरी चेतावनी है। कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर और मुझे लिखकर कहा है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए, आप संसद की पवित्रता और गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। शोर शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की

स्थिति जस की तस थी। हंगामे के बीच ही जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर अपने संशोधन भी पेश नहीं किए। बीते 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी और इसे 29 जुलाई को सदन में पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर दो स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और हम चाहते हैं कि सब सदस्य इसके भाग लें। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के साथियों ने विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया और अब उन्हें सदन से बाहर जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि विधेयक बिना चर्चा के क्यों पारित किया। श्री रिजिजू ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता आपसे जवाब मांगेगी। आप बाहर जाकर ये आरोप नहीं लगा सकते कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराया गया है, आपने अवसर गंवा दिया है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन में आगे आने वाले विधेयकों पर सहयोग करें और चर्चा में भाग लें। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने हंगामा कर रहे विपक्ष के साथियों से कहा कि सभी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधेयक पर सहयोग की बात कही थी, लेकिन यहां आप हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग के बिना विधेयक पारित करना पड़ा, ये सही नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोपों के मामलों में उनके लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान करने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति जेपीसी का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया गया। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन 2025 पर संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक का समय देने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे पहले समिति ने गत 17 जुलाई को अपनी मसौदा रिपोर्ट को अंगीकार करने की प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया था। समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि सदस्यों का मत था कि इस विषय पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। संयुक्त समिति का गठन 12 नवम्बर 2025 को किया गया था। गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले वर्ष मानसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में ये विधेयक पेश किए थे। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया था। आज सदन में लिखित जवाब में सरकार ने सूचित किया कि वह विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों के दौरान पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है।
मंत्री ने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। श्री सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद से बचाव के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को कई देशों ने सराहा है।

है। मंत्री ने ये भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर प्रस्तुत दस्तावेजों में भी दर्ज की गई है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज राज्यसभा की बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल केवल 15 मिनट ही चल पाया और केवल 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने शून्यकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा, आप रोज इसी तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आप हंगामा करते हैं और फिर सदन से बहिर्गमन कर जाते हैं। आप अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। श्री राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अब भी आपातकाल मोड में हैं। उन्होंने कहा कि आप आज तक आपातकाल मोड में हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात सुने लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते। ये तानाशाही है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व नहीं देना चाहते। सभापति ने कहा कि आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। मैं हर बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देता हूं लेकिन आप दूसरों की बात नहीं सुनते। सभापति राधाकृष्णन ने बाद में खड़गे को बोलने की अनुमति दी। कांग्रेस अध्यक्ष और उच्च सदन में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि उन्होंने नोटिस दिया है। श्री राधाकृष्णन ने पूछा कि नोटिस किस नियम के तहत दिया गया है। इस पर श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित कर एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। सभापति ने स्पष्ट किया कि नियम 267 के तहत कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पहले ही नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री खड़गे का नियम 267 के तहत दिया गया नोटिस अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं और धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित था। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग की। विपक्षी दल 20 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल सहित बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सभापति ने कहा कि शून्यकाल का गृह मंत्री से क्या संबंध है। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर सड़क छाप राजनीति करने और सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। श्री चौहान ने कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है और सदन की गरिमा से खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वे केवल हंगामा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अराजकता फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के आचरण की निंदा करते हैं। सभापति ने जब सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दों को उठाने के लिए कहा तब भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारे लगाए। भाजपा के 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। भाजपा के महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में जनगणना का मुद्दा उठाया।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना प्रक्रिया

0: केवल जनगणना ही नहीं बल्कि ये उत्तराखंड के भविष्य, उसकी पहचान और उसके समग्र विकास से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि 2027 की जनगणना देश की नीतियों, योजनाओं, तमाम संसाधनों का आधार बनाएगी, इसलिए इसका खास महत्व है। श्री भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना को पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि अपनी गणना अपना गांव जैसे जनभागीदारी के अभियान के रूप में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों से पलायन होने के कारण कई गांव खाली हो गए हैं, इसका असर जनसांख्यिकी पर भी पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड पर पलायन की गहरी मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों की सटीक गणना जरूरी है। भाजपा सदस्य ने कहा कि उत्तराखंड केवल राज्य ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है। उन्होंने मांग की कि राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी गणना अपना गांव अभियान के तहत जनगणना कराई जानी चाहिए। भाजपा के ही प्रदीप कुमार वर्मा ने रांची के CIP मानसिक चिकित्सालय का मुद्दा उठाया और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 1918 में स्थापित केंद्रीय मानसिक चिकित्सालय संस्थान में बड़ी संख्या में दूर दूर से मनोरोगी आते हैं और इनमें खासी संख्या गरीबों की होती है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की अवसंरचना के विस्तार की और उसके नवीनीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाना चाहिए। भाजपा के ही मनन कुमार मिश्रा ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का मुद्दा उठाया और कहा कि ये वकीलों की पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि अदालतों में दलीलें देने वाले वकीलों की जान को भी खतरा होता है और कई अधिवक्ताओं की हत्या भी हुई है। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग की। भाजपा के रायगा कृष्णा ने संसदीय चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही है। आज शुक्रवार होने की वजह से उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज नियत था, जिसके तहत 4 निजी संकल्प पेश किए जाने थे। साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा तथा पारित करने के लिए आज सदन में पेश किया जाना था, लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आज भी बाधित हो गई। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: श्रोताओं, संसद समीक्षा का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के इस वक्त 8:15 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी अंतरा का महकता हुआ सलाम।

श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के बीते दौर में अपनी चुलबुली अदाओं और नटखट अंदाज से अपना दीवाना बनाने वाली एक ऐसी फिल्म अभिनेत्री भी हुई हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी 1958 में आई फिल्म सोने की चिड़िया से। इस फिल्म में तारिका ने बाल अभिनेत्री के किरदार को बखूबी निभाया। इसके बाद अपने किशोरावस्था में ये नज़र आई वल्लाह क्या बात है इस फिल्म में, और आगे चलकर इन्हें हमने देखा स्त्री और सेरा जैसी फिल्मों में। ये दौर था 1960 का।

इस अभिनेत्री के फिल्मी सफर की शुरुआत भले ही छोटी सहायक भूमिकाओं से क्यों ना हुई हो, मगर बाद के दिनों में उन्होंने खूब तरक्की की और अपने समय की सुपरहिट नायिकाओं में अपने कला और काम को दर्ज करवाया। अब ये अभिनेत्री कौन है ये जानने के लिए आइए सुनते हैं उन्हीं पर फिल्माए गए इस खूबसूरत से गीत को।

श्रोताओं, आज मुमताज का जन्मदिन है, यानी मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को मुंबई में हुआ। मुमताज को 60 और 70 के दशक की लगभग हर दूसरी, तीसरी या फिर चौथी फिल्म में हमने खूब देखा है। अपने अभिनय के साथ साथ मुमताज की नृत्य प्रतिभा ने भी उनके चाहने वालों को सिल्वर स्क्रीन से लंबे समय तक जोड़े रखा है। 1969 में, या यूं कहें कि 70 के दशक में, राजेश खन्ना के साथ उनकी कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई। याद कीजिए रोटी, दो रास्ते, बंधन और आपकी कसम जैसी फिल्में। उन फिल्मों में उस समय की शीर्ष यानी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में बनकर मुमताज के नसीब में, या यूं कहिए करियर में, ये फिल्में मील का पत्थर साबित होती रहीं। वैसे मुमताज को याद करने के लिए एक लंबी फहरिस्त है फिल्मों की। याद कीजिए सच्चा झूठा, लोफर, झील के उस पार, चोर मचाए शोर, मेला, अपराध, नागिन, आपकी कसम, रूप तेरा मस्ताना, मेरे सनम, खानदान, प्यार किए चा, बूंद चुबन गई मोती, हमराज, सावन की घटा, ये रात फिर ना आएगी, सूरज, बहू बेटी, मुझे जीने दो और डॉक्टर विद्या जैसी अनगिनत सफल फिल्मों में नजर आई मुमताज अपने पूरे शोक अजा अदा नास और चुलबुले बांकपन के साथ। आज उनके जन्मदिन पर हम मुमताज की अच्छी सेहत की दुआ करते हैं और सुनते हैं वही दिलकश गीत जो सभी का फेवरेट हुआ करता है और लूप में हमेशा चलता ही रहता है।

श्रोताओं, रजनीगंधा के सफ़र की आज की हमारी सुपरस्टार अभिनेत्री हैं मुमताज़, जिन्होंने 1971 में आई फिल्म खिलौना में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और अपने समय की सभी दिग्गज कलाकारों के साथ पर्दे पर नजर आईं।

श्रोताओं, आज रजनीगंधा के पहले भाग में हर दिल अज़ीज़ अभिनेत्री मुमताज के फिल्मी सफ़र को हमने याद किया और उनके जन्मदिन पर उन्हीं पर फिल्माए गए कुछ गीतों को हमने साझा आनंद लेते हुए सुना। और अब चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में थोड़ा सा और आगे और सुनते हैं इस वक्त सदी के महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया एक बेशकीमती गीत।

है समा, बड़ा नटखट है समा, हर नजारा है जवां, छा गया चारों तरफ मेरी आँख।

उनकी आत्मा का गीत हो जो उनकी आवाज़ की ज़मीन पर हर एक शब्द के साथ एक जीती जागती तस्वीर बनकर उभरता रहा। उनकी आवाज़ की रूह गहराइयों में समाकर सुनने वालों को अपने मोहपाश में बांध लेती है। उनकी आवाज़ सुकून की लौ जगाने वाली आवाज़ बनकर बरसों से हमारे साथ चलती रहती है और दिलासे देती है, हमारे भीतर उम्मीद जगाती है।

वाली आवाज बनकर बरसों से हमारे साथ चलती रहती है और दिलासे देती है, हमारे भीतर उम्मीद जगाती है।

श्रोताओं, अनगिनत फिल्मों में गाए गीतों के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को अलग अलग तरह के अनेकों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1965 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2016 में मोहम्मद रफ़ी की याद में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अद्भुत विस्तार मौजूद है, जिसका उस दौर के संगीतकारों ने खूबी से गीतों के निर्माण में इस्तेमाल भी किया। पूरी 3 पीढ़ी तक अपनी आवाज़ के नूर को बरसाने वाले मोहम्मद रफ़ी का कहना था कि आवाज़ तो खुदा की देन है। स्वभाव से बेहद उदार मना मोहम्मद रफ़ी साहब की आज याद का दिन है। 31 जुलाई के दिन उन्होंने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहा, लेकिन कलाकार कभी मरते नहीं। वो तो अपनी कला के जरिए शताब्दियों तलक जिंदा रहते हैं। आइए सुनते हैं शहनशाह तरन्नुम।

0: श्रोताओं, रजनीगंधा के आज के इस अंक में हमने अभिनेत्री मुमताज के जन्मदिन पर और सदी के श्रेष्ठतम पार्श्व गायक मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि पर उनके फिल्मी सफर के विषय में बातें की और उनके गीतों को सुना और सुनाया भी। रजनीगंधा का आज का ये सफर इतना ही। दीजिए इजाजत आपकी अपनी अंतरा को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि के 8:45 हुए हैं। समाचार अब दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
3: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना

0: में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
0: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
0: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
0: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देश भर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु की सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वी

0: जी राम जी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वीबीजी रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए एसटीएफ की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
1: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आनंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की

0: भावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मापे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Center approves Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Also clears National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential. Union Cabinet gives nod to continuation of PM Kisan Samman Nidhi Scheme for next 5 years. Former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others get life term for murder of IB officer Ankit Sharma during 2020 Delhi riots. New Delhi slams Islamabad over brutal crackdown against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Flood crisis deepens in Odisha, relief and rescue operations in full swing. And Asmita Day clinches India's first ever judo gold at Commonwealth Games. Indian boxers Preeti Pawar, Jasmine Lamboria, Arundhati Chaudhary and Ankush Pangal advance to final in their respective bouts. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt hour.
3: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। आज 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की

आलापों से है बजी आंसू में।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म फिलौरी से। आवाज़ें रोमी और पवनी पांडे की थी। गीत के बोल अनविता दत्त के और संगीत शाश्वत सचदेव का।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत चेहरा और अदाएं कुछ ऐसी कि बिजलियां गिरा दें।

0: मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम था अब्दुल सलीम अशकरी। वो एक ईरानी थे और सूखे मेवों का कारोबार था उनका। जिंदगी की राहों में आगे चलकर यूं हुआ कि मुमताज की माता और पिता एक दूसरे से अलग हो गए। ये तब की बात है जब मुमताज महज 16 साल की थीं। जाहिर है कि जिंदगी कठिन राहों पर चल पड़ी। पिता ने दूसरी शादी कर ली और माँ फिल्मों में एक्स्ट्रा के रूप में काम करती रहीं। चूंकि घर का खर्च ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए माँ ने सोचा कि क्यों ना बेटियां भी फिल्मों में काम करें और इस तरह से जिंदगी पटरी पर आ जाए। तो मुमताज की माँ ने अपनी दोनों बेटियों यानी मुमताज और मलिका को फिल्मों में संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। इसका नतीजा ये हुआ कि 11 साल की छोटी उम्र में मुमताज ने बतौर बाल कलाकार फिल्मों में अपनी पारी शुरू की। पहली फिल्म थी सन 1958 में आई सोने की चिड़िया। इस फिल्म के हीरो थे तलत महमूद और हीरोइन थी नूतन।
1: सच बता तू।

0: सच बता तू मुझ पे फिदा।
1: इसके बाद बतौर बाल कलाकार मुमताज नजर आईं यास्मीन और लाजवंती जैसी फिल्मों में।

और इस तरह से छोटे मोटे रोल उन्हें भी मिलते रहे और उनकी बहन को भी मिलते रहे। जब मुमताज थोड़ी बड़ी हुई तो 1960 के आसपास उन्होंने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था स्त्री। इसके बाद आई वल्लाह क्या बात है और 1963 में आई सेहरा। ये वो दौर है जब मुमताज न बच्ची थी और ना बड़ी हुई।

इसके बाद एक दौर ऐसा आया जब मुमताज को बतौर सहायक अभिनेत्री काम मिला। ओपी रलहन एक फिल्म बना रहे थे गहरा।

इसके बाद एक दौर ऐसा आया जब मुमताज को बतौर सहायक अभिनेत्री काम मिला। ओपी रलहन एक फिल्म बना रहे थे, गहरा दाग। इस फिल्म में मुमताज ने हीरो की बहन की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म चल निकली, जाहिर है कि मुमताज की एक खास पहचान बन गई। 1963 में आई फिल्म मुझे जीने दो, इसमें भी मुमताज की एक छोटी सी भूमिका थी। एक अभिनेत्री के तौर पर मुमताज अपनी मुकम्मल पहचान कायम करने की जद्दोजहद में लगी थी। दिल में कुछ बड़ा करने के ख्वाब थे, मौके सामने आ नहीं रहे थे, इसलिए जिस तरह की फिल्में आईं, मुमताज उन्हें मंजूर करती चली गईं। सन 1962 के आसपास की बात है। जाने माने पहलवान और हीरो दारा सिंह फिल्म किंग कॉन्ग के हिट होने के बाद अपनी दूसरी फिल्म फौलाद के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे। क्योंकि दारा सिंह की फिल्में स्टंट फिल्में होती थीं, बहुत सारी नामचीन हीरोइंस ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। सबकी अपनी अपनी वजह थीं। पर इन्हीं दिनों में मुमताज अपनी बहन मल्लिका के साथ एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर गईं। दारा सिंह ने मुमताज को देखा और उन्हें लगा कि मुझे अपनी फिल्म की हीरोइन मिल गई है। मुमताज को भी एक बड़े ब्रेक की जरूरत थी, तो बस यहाँ से शुरू हुआ हिंदी सिनेमा का एक दिलचस्प इतिहास। हीरो दारा सिंह, हीरोइन मुमताज।

अगले 6 साल तक एक के बाद एक स्टंट फिल्में आती चली गईं। दिलचस्प बात यह है कि इन फिल्मों की कुल तादाद बनी 16। जी हाँ, मुमताज और दारा सिंह ने 16 फिल्मों में काम किया है। वीर भीमसेन, हरक्यूलिस, सैमसन, आंधी और तूफान, टार्जन और किंग कॉन्ग, टार्जन कम्स टू दिल्ली, राका, सिकंदर आजम, रुस्तम ए हिंद और डाकू मंगल सिंह जैसी फिल्मों में काम किया मुमताज और दारा सिंह ने।

इस दौरान मुमताज ने कुछ और सहायक भूमिकाएं की, जैसे फिल्म राम और श्याम में। ये फिल्म 1967 में आई थी। आदमी और इंसान 1969 में आई। इन दोनों फिल्मों के लिए मुमताज को फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया।

यहां तक आते आते मुमताज की किस्मत पलटने वाली थी। हुआ यूं कि राज खोसला अपनी एक फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे और उन्हें अचानक नजर आई मुमताज। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ इस फिल्म के लिए मुमताज को साइन कर लिया। ये फिल्म थी दो

दो रास्ते ने न केवल राजेश खन्ना को एक जोरदार पहचान दी बल्कि मुमताज भी बतौर नायिका छा गई लोगों के दिलों पर।

सन 1969 में दो रास्ते के अलावा एक और फिल्म आई राजेश खन्ना के साथ मुमताज की। ये थी नरेंद्र बेदी की फिल्म बंधन। मुमताज का करियर अब चढ़ाव पर था। उनकी खूबसूरती, उनके अभिनय, उनकी अदाओं की लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। यानी जिंदगी में जद्दोजहद के दिन अब कम हो रहे थे और कामयाबी उनकी राहों को चूम रही थी। दो रास्ते के बाद मुमताज और राजेश खन्ना की जोड़ी जोरदार तरीके से जम गई। एक के बाद एक इन फिल्मों के गाने अब आपकी नजर। सन 1970 सच्चा झूठ

न केवल ये फिल्में हिट हो रही थीं, बल्कि इनके गाने लोगों की जबान पर सज रहे थे। दिलचस्प ये था कि राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी को लेकर फिल्में लिखी जा रही थीं, निर्देशकों की लाइन लगती थी इन्हें बतौर हीरो हीरोइन साइन करने के लिए। इसी दौरान मुमताज ने एक हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म की, 1970 में आई खिलौना।

ऐसा नहीं था कि मुमताज के हाथ ये कामयाबी एकदम अचानक आ गई हो। उन्होंने अपने हिस्से का संघर्ष किया था। आपको बताएं कि एक दौर ऐसा था जब बहुत सारे नामी नायकों ने मुमताज के साथ काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो ये मानते थे कि ये लड़की तो बी ग्रेड की हीरोइन है। ऐसा ही एक किस्सा आपको बताते हैं। 70 के दशक में शशि कपूर एक कामयाब अभिनेता थे। 1970 में फिल्म बन रही थी सच्चा झूठा, जिसमें बतौर नायक उन्हें साइन किया जा रहा था और बतौर नायिका मुमताज को। पर शशि कपूर ने ये फिल्म करने से इनकार कर दिया और बाद में ये फिल्म आई राजेश खन्ना के हाथ। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी तो हिट हो ही रही थी, लेकिन आगे चलकर शशि कपूर को अपनी गलती का एहसास हुआ। 1974 में फिल्म चोर मचाए शोर में उन्होंने ये सिफारिश की कि उनकी हीरोइन के तौर पर मुमताज को साइन किया जाए, और यहां शशि कपूर और मुमताज एक साथ नजर आए।

0: मुमताज की खासियत ये है कि बहुत कामयाब, बहुत नामी और बहुत बड़ी हीरोइन बनने के बावजूद उन्होंने किसी नए हीरो के साथ काम करने से इनकार नहीं किया। ऐसा ही एक किस्सा आपको सुनाते हैं। 5 फुट 7 इंच का एक नौजवान फिल्मों में संघर्ष कर रहा था। उसकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थी। सन 1973 में मुमताज को ये कहा गया कि क्या आप इस अभिनेता के साथ काम करेंगी। मुमताज ने फौरन हाँ कह दिया। ये फिल्म थी बंधे हाथ और अभिनेता थे अमिताभ बच्चन।
1: तो

उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के अभिनेताओं के साथ काम किया, जैसे देव आनंद के साथ उनकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म है हरे रामा हरे कृष्णा, और देव के साथ वो तेरे मेरे सपने में भी नजर आई।

मुमताज शम्मी कपूर के साथ फिल्म ब्रह्मचारी में काम कर रही थी। उन्हें बहुत शानदार तरीके से मॉडर्न डांस करना था और वो भी साड़ी पहनकर। पारंपरिक साड़ी से काम नहीं चल रहा था। उस जमाने की

की जानी मानी फैशन डिजाइनर भानु अथैया ने आइडिया लगाया और उन्होंने उस जमाने में पहली बार स्टिच्ड साड़ी यानी सिली हुई साड़ी तैयार की। इसे पहनकर मुमताज ने इस गाने में नृत्य किया। न केवल मुमताज छा गई बल्कि मुमताज साड़ी भी छा गई। जी हाँ, स्टिच साड़ी आगे चलकर मुमताज साड़ी के नाम से मशहूर हुई। एक कामयाब हीरोइन वो होती है जो अपने फैशन स्टेटमेंट्स जनता तक पहुंचाए। मुमताज ने ये बखूबी किया।

0: क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो।
1: फिरोज खान के साथ मुमताज नजर आई फिल्म मीला में, इसके बाद आई अपराध और फिर आई नागिन।

मुमताज के करियर का विश्लेषण करें तो उन्होंने तकरीबन 100 फिल्में तो की होंगी, जिनमें से 60 फिल्में हिट या सुपरहिट रहीं। एक फिल्म ऐसी थी जिसमें उन्होंने डबल रोल किया, ये फिल्म थी रूप तेरा मस्ताना।

विकास का करियर शिखर पर था, एक से बढ़कर एक रोल उन्हें ऑफर किए जा रहे थे। राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी इतनी हिट थी कि फिल्मों के ढेर लगे हुए थे। साल 1974 में एक दिन अचानक खबर आती है कि मुमताज ने मयूर वाधवानी से शादी कर ली है और फिल्मों को अलविदा कह दिया है। यकीन मानिए, न जाने कितने दिल टूटे, न जाने कितने लोग उदास हो गए। एक हीरोइन का शादी करके घर बसाना उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत तो है, लेकिन जब लोग ये मानते हैं कि आगे फिल्में नहीं आएंगी तो उदास भी हो जाते हैं। लोगों को यूं लगा मानो कारोबारी मयूर वाधवानी ने उनकी प्रिय हीरोइन को उनसे चुरा लिया है, उनसे जुदा कर दिया है।

मुमताज शादी रचा के फिल्मी दुनिया से दूर हो गईं, पर कुछ फिल्में थीं जो उनकी शादी के बाद आईं, जैसे प्रेम कहानी। सन 1977 में उनकी आखिरी फिल्म आई आईना। इसके बाद मुमताज बरसों बरस तक फिल्मी परिदृश्य से गायब रहीं। फिर 13 बरस बाद यानी 1990 में मुमताज नजर आई पहलाज नेलानी की फिल्म आंधिया में। आपको बता दें कि मुमताज के परिवार में उनकी दो बेटियां हैं। एक बेटी नताशा की शादी फिरोज खान के बेटे फरदीन खान के साथ हुई है। साल 2022 में ये खबर आई कि मुमताज को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है।

उन्होंने इस बीमारी को पूरे साहस के साथ पछाड़ा। आज मुमताज फिल्मी दुनिया से दूर अपनी जिंदगी बिता रही हैं, लेकिन बीच बीच में वो अपने चाहने वालों से मुखातिब होती हैं। जब वो पत्रकारों को इंटरव्यूज देती हैं या किसी टेलीविजन शो में नजर आती हैं, आज भी दर्शकों का मन उन्हें देखकर झूम उठता है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री मुमताज पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुति तेजश्री काबिल। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: श्रोताओं, विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, 10 बजने वाले हैं। संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग का प्रसारण अब दिल्ली से कुछ ही पलों में रिले किए जाएंगे।

0: श्रोताओं, रात्रि के 10:01 हुआ है और इस वक्त हम जुड़ेंगे विविध भारती से।
1: छाया गीत कार्यक्रम सुनने वालों को पूनम त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। चल पड़े साथ ऐसे हम बनके जन्म जन्म के साथी, चल पड़े साथ ऐसे हम बनके जन्म जन्म के साथी। तुम कहते रहो मैं सुनती रहूं और ये बरखा की रात यूं ही बहती रहे। दिल ने दिल

मस्ती से बहती पवन झूम झूम के डोले, जब बरखा की हर बूंद तन में हलचल सी कर जाए, काली घटाएं बादल बन बरसे, जब बावरा ये मन झूम झूम के गाए।

सावन बहका है, बूंदों पर है खुमार, मनवा भी बहका है, बागों में मेले हैं, झूलों के मौसम में साथी अलबेले हैं, शायद सावन भी कुछ कहता है।

करे श्रृंगार, मोती बरसाता गगन, सोना उगलती धरा। नए रंग के ये ऋतुएं मनमोहक आलम सी है छटा। चारों ओर छाई मदहोशी, सावन की

बहती हवा ने तेरी खुशबू बिखेर दी, रिमझिम फुहारों ने जब तेरे जुल्फों का साथ छोड़ा, भीगी रात में तेरा करीब रहना, ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसों में तेरी सांसों का

बूंदों में झलकती है उनकी तस्वीर, सावन की बूंदों में झलकती है उनकी तस्वीर, आज फिर भीग जाने को हम हैं बेकरार, तुझे पाने की चाहत में।

श्रोताओं, विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। रात्रि के 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार के लिए एक बार फिर से हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की ओर रुख करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इस महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल में अधिक

0: अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों के कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा काटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Renuka. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया। 102 गीगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है। 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: In order to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme, Samudra Manthan, with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. The Union Cabinet has given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan Scheme, from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnaw said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for this scheme during the period of 5 years. Both Houses of Parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment, the presiding officer, Dilip Sekia, took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home, Nityanand Rai, removed the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus. Foreign Secretary Vikram Misri concluded his two-day official visit to Bhutan today. During his visit, Mr. Misri co-chaired the 5th India-Bhutan Development Cooperation talks for the 13th five-year plan of Bhutan. During the 5th plan talks, both sides reviewed the overall progress and implementation of Government of India support of 10,000 crore rupees for Bhutan's 13th five-year plan. A Delhi court today sentenced former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others to life imprisonment for the murder of Intelligence Bureau IB officer Ankit Sharma during the 2020 Delhi riots. Additional Sessions Judge Praveen Singh pronounced the sentence to all 5 accused after hearing arguments on the quantum. In Jammu and Kashmir, one non-local labourer was killed and another injured in a terrorist attack in the Kilam Devsar area of Kulgam district this evening. Speaking to Akashwani News, IGP Kashmir V.K. Birdi said one labourer died while the other is undergoing treatment at a local hospital after unidentified terrorists opened fire on the duo. The IGP said